शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महकते हुए प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम एंड अगेन मैंने ये बात कही है कि ये प्रोग्राम मजाक नहीं है, ये प्रोग्राम फन नहीं है, ये प्रोग्राम हम अपने को समझने के लिए करते हैं। दिस इज सीरियस। वी शुड डाइव इनटू आवर ओन एग्जिस्टेंस एंड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अवर गॉड। Whosoever is he, आप किसी भी डेटी को चाहते हैं, पूछते हैं, we all respect that. But the very first thing is, अपने को तो पहचानिए, who are you? So, हम लोगों को इस दुनिया में जीने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए, चाहे तो कह लें प्रोटोकॉल हो या सिस्टम हो या ऊपर कोई शक्ति है या एक संभावना कह लीजिए या व्यवस्था कह लीजिए, उन्होंने कुछ चीजें बनाई, उन्हीं को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं ललिता लक्ष्मी नारायण मैम से। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, साधुवाद देता हूं ललिता मैम का, वेलकम करता हूं, जो उन्होंने हमारी बात मानी, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैं ललिता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं, आप कहाँ हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू समीर जी फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज टू बी इन दिस शो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनिशियली मेरा जन्म पुणे में हुआ, एजुकेशन लिविंग एवरीथिंग वाज इन पुणे, गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन मुंबई फॉर 20 इयर्स। उसके बाद पति के जॉब के वजह से वी ऑल ऑफ अस शिफ्टेड टू बेंगलुरु। एट प्रेजेंट हम सब बेंगलुरु में हैं, बच्चे लोग यही हैं। एंड पर्सनली आई ऑलवेज वाज अ होममेकर, दैट इज अ वेरी वेरी रिस्पांसिबल जॉब। एंड थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाती भी थी, जो अगल बगल में थे वो आते थे। एंड मेरे साथ किया, थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो भी कर लेते हैं। So generally, I am leading a very peaceful life now, retired life. I pursue my passion and happy with my life. And now I have got this privilege of coming to a radio show. That's also a big blessing from that Almighty.
1: Wow. Thank you so very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Seriously, पिछले दो सालों से, ढाई सालों से मैं रेडियो स्टेशन को चलाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे खुशी होने लगी है कि आप जैसे प्रबुद्ध और समझदार लोग, इंटेलिजेंसिया हैज स्टार्टेड कमिंग ऑन माय रेडियो टॉकिंग टू मी, और आप लोगों की जो बातें हैं वो अब लोगों तक पहुंच रही हैं। तो चलिए, खैर एनीवेज, इस विषय में बात करते हैं जिस विषय के लिए आज हम आपको इन्वाइट किया है हमने। सो ललिता मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म,

0: क्या मतलब है इसका? What exactly do you understand about spirituality?
1: आध्यात्मक, it starts with something to do with आत्मा. आत्मा जो हमारे अंदर है, that is the life force in our body. And we have to always think inwards, that is आध्यात्म. Go inside you and अपने thoughts को समझना. बाहर एक समझ में आता है, लेकिन अंदर जो होता है वो हमको खुद समझना चाहिए. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है. That answers and all you will get from within you if you go into spirituality. For example, suppose somebody hurts you with their words or with their actions, instead of directly blaming them, ऐसा सोचो, उनके जगह में खड़े रहो और सोचो क्यों ऐसा कर रहा है. Then you will get an answer for their behavior. And that keeps you in peace. शांति से जी सकते हैं. That is actually आध्यात्मिक in my parlance. It may be different for different people. And it is just search peace, calm, rather than hunting for it outside you. वो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक वो है समीर जी.
0: ठीक है मैम, मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आया और हमारे सुनने वालों को भी बिल्कुल समझ में आया होगा कि जो मेरे को मिला अभी तक आपने जो कहा उसमें, कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत कर रहा है या जैसा भी वो बिहेव कर रहा है, मे बी इरिटेटिंग, मे बी डिस्कस्टिंग, मे बी यू नो अपमानजनक कुछ हरकत है या कुछ बदतमीजी है, आपने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. शांति से सोचिए, व्हाई दिस पर्सन इज बिहेविंग इन दिस मैनर.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: अब मैम होता क्या है कि हम, मैं अपनी बात करूं एक सेकंड के लिए, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं और मुझे कोई इस तरह से करे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर गुस्सा ना कंट्रोल नहीं होता मैम. तो क्या होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है करके, उसके साथ क्या कंडीशन है, मे बी दूसरा व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब होगा, माइट बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू हर्ट मी. लेकिन मैम मैं नहीं समझ पाता तो मैं गुस्से में फिर रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ, मैं उसको भी दो गाली दे देता हूँ, लड़ जाता हूँ. सो वहां पर हम क्या करें मैम, मुझे ये प्रैक्टिकल बताइए ना, व्हाट शुड आई डू.
1: हाँ ठीक है, अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं ना तो बाद में आपको गिल्ट आता है,
0: आएगा,
1: पछतावा
0: आएगा.
1: तो पछतावा अगर नहीं आना है तो यू हैव टू वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, थोड़ा शांति से वो बकने दो, जो बकते हैं बकने दो. जस्ट लिसन टू दैट एंड आफ्टर सी इट इज अ वेरी क्लोज पर्सन लाइक योर फैमिली मेंबर, फिर जाके उनको बोल सकते हैं, सी आई डिडंट लाइक व्हाट यू आर टेलिंग बट देयर मे बी सम रीजन दैट यू हैव टोल्ड. सो बाय दैट टाइम वो जो घर वाले हैं वो शांत हुए रहेंगे तब तक, एंड देन दे विल गिव अ प्रॉपर कन्विंसिंग आंसर फॉर इट. Then everything is solved. But if it is an external person whom you are not very close to और वो बोलता है, तो बोलने दो, वो बोलने दो, उसकी अपनी सोच करके छोड़ देना है. That is my way of responding. It keeps you cool. वो guilt जो होता है ना, पछतावा होता है, that is very very hurting. तो पछतावा से अलग रहना है तो you think. That is why you need that internal thinking. हम शांत रहे, why should I spoil my mood because somebody is telling that, I feel that. हर एक आदमी होने हो, that comes with some spiritual knowledge because you learn to be compassionate, you learn to be good in your words, deeds, everything. And most of the things, all these things we respond not because they are hurting us. We may be having some tension or stress and at that moment we can't decipher wo kyun bol rahe hai, hum immediate react karna hai, wo hamara soch hai, not the opposite party. To ye guilt se avoid karna hai and to proper thinking, it will give us an exact thinking, the way how we should proceed with that. दैट कम्स विद आध्यात्मिक नॉलेज. नॉर्मल मैन वो नहीं आगा, इट कम्स विद स्पिरिचुअलिटी.
0: ओके, आई गेट इट, आई गेट इट मैम. प्लेन एंड सिंपल, I'm really sorry. I would like to apologize here with my most sincere efforts. मुझे आपने जो अभी बताया उसमें मुझे मेरे काम की एक बात सुनाई दी. देखिए, मैं एक्चुअली बहुत ही नॉर्मल रूटीन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरे रेडियो पर. तो मुझे सुनाई दिया कि अगर किसी तरह से कोई आदमी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, सो आई शुड नॉट रिएक्ट इमीडिएटली. आई शुड जस्ट वेट. वेट, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को मेरे को दबा के पकड़ के बस थोड़ा सा वक्त गुजारना है. आई शुड जस्ट लेट दिस टाइम पास फॉर यू नो कपल ऑफ आवर्स मे बी, और कपल ऑफ मिनट्स मे बी, कपल ऑफ डेज मे बी.
1: करेक्ट.
0: एंड देन somebody would come to me and some situation would happen where the things would actually be explained to me ki aisa actually is wajah se ho raha tha, acha kiya aapne react nahi kiya. This thing sounds good to me ma'am, this thing sounds good to me. Ye ek achhi teaching mere ko mili. Thank you so much for that.
1: Thank you.
0: Okay, ab thoda sa aage badhte hain aur practical baat karte hain. Theoretically aapne hame bata diya.
1: Haan ji.
0: आपने तो इतनी प्यारी सी खूब बड़ी सी जिंदगी जी, और अभी बहुत बड़ी जिंदगी और आपके सामने है. तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी थी वो कहां से शुरू हुई? हु टोल्ड यू अबाउट स्पिरिचुअलिटी?
1: अच्छा, अभी ये ना, इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इजी पाथ. कम्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन विच फैमिली यू आर बॉर्न इन टू. ये मैं अपने जिंदगी के बारे में बोल रही हूँ, इट मे नॉट अप्लाई टू एवरी वन.
0: सॉरी,
1: बट इन माई केस इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम.
0: ओके.
1: मेरे घर में दादी माँ थी, पापा मम्मी, तो इन दैट फैमिली रोज पूजा पाठ करते थे. एंड जनरली समझ जी ऐसे सिखा देते थे घर में कि you must not hurt anybody, you must not do bad to anybody, kuch galat kiya to bhi ek sorry bol do. It is taught and it is not by example, because what the elders do a child learns from that looking at it.
0: Okay,
1: to wo seekh dekh dekh ke humne seekh liya. It is just plain seekhna, no questions asked, seekh liya. Phir bade hote gaye. Then we realize there are certain times when we hurt के बाद में sorry बोल देते हैं. But in spiritual knowledge you come to really seriously think of why we should not do that, why we should not hurt, why we should not tell a lie. वो spiritual knowledge से मिलता है. कभी कभी झूठ ना अच्छाई के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है.
0: बोलना पड़ता है.
1: नहीं, को महाभारत में अश्वत्थामा अतः बोला ना, अतः कुंज रहा. सो दैट वाज एक्चुअली अ लाइ व्हिच लॉर्ड कृष्णा टोल्ड, बट समहाउ ही हैड टू मेक द पांडवास विन.
0: करेक्ट.
1: तो वो हुआ. तो ऐसे जगह में हम बोल देते हैं, बट लेटर ऑन वी रियलाइज दैट वो झूठ, इट वाज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी एज सच. ठीक है, बोल दिया. अभी बहुत बार बोल देते हैं हम, सोचो समीर जी बोलना नहीं चाहिए. अभी किसी ने हमको बुलाया 8 बजे आओ, और हम 7:30 बजे तक घर में बैठे हैं. फिर वो लोग बुलाते हैं, बेचारे कहाँ हो, ऐसे झूठ मूठ बोल देते हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं. बोलते देते हैं, बट वो गिल्ट होते हैं, क्यों यार बोलना, बोलना था ना, देर से उठे, हुआ नहीं, सॉरी बोलना था. बट वो होता नहीं. इमीडिएटली वी टेल दैट व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन स्पिरिचुअलिटी वी लर्न कब झूठ बोलना है, विच झूठ इज नॉट हर्टिंग एनीबॉडी, और एंड व्हाई डू वी हैव टू से दैट. सच बोल दो ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ऑब्जेक्ट पर भी थोड़ा डांट लेंगे हमको. ये बंदा को टाइम पे आना नहीं होता है, उतना ही बोलेगा ना. बट वी विल बी फ्री ऑफ दैट गिल्ट, क्यों मैंने झूठ बोला. तो ये सब स्पिरिचुअल नॉलेज से आता है.
0: लेकिन मैम, मतलब मैं आपसे मतलब मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा था कि आपको कैसे मालूम पड़ा, वेयर डिड यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअलिटी, मॉम ने, मम्मी पापा ने बोला, रिलेटिव ने, या कोई गुरु कहीं पर मिल गया?
1: नहीं जी, नहीं जी, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला है. सी, व्हेन वी ग्रो ओल्डर वी कम अक्रॉस वेरियस पीपल एंड आवर लाइफ स्टाइल चेंजेस.
0: ओके,
1: अभी मम्मी पापा के घर में एक टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल होता है. शादी होने के बाद यू आर पुट इन टू अ डिफरेंट फैमिली ऑल टूगेदर. तो तभी यू मस्ट चेंज योर वेज ऑफ बिहेवियर, चेंज योर वेज ऑफ थिंकिंग. वो सब होता है, गुस्सा आता है, बट वी शुडंट शो अवर एंगर टू एनीबडी. वो तो सी, हमारे टाइम के लड़की लोग छोटे उम्र में शादी हो जाते हैं. यू हैव टू एडियर टू सर्टन प्रोटोकॉल्स आफ्टर मैरिज. तो प्रोटोकॉल बनते रहते, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेस. अंदर तो स्ट्रेस होता है ना, विच विल मेक यू अनहैप्पी, सैड, ऑल दीज थिंग्स. तो होता था, बट लेटर ऑन वी गॉट वन. हम कांदिवली में रहते थे, बॉम्बे में एक जगह है, वहां एक योगा मास्टर था.
0: ठाकुर विलेज या ठाकुर कॉम्प्लेक्स?
1: ठाकुर में नहीं, वेस्ट में थे हम.
0: अच्छा, ओके,
1: कांदिवली वेस्ट में.
0: ओके,
1: वो वहां तो योगा मास्टर के पास गए थोड़े दिन, हेल्थ रीजंस के लिए गए. बट देयर आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिटेशन, हाउ थिंकिंग, कंट्रोलिंग योर थॉट्स कैन डू वेरी मच गुड टू योर लाइफस्टाइल. तो उसमें आया, सो यू कंट्रोल योर थॉट्स, बी कूल, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और कामनेस आता है बॉडी में. तो उससे स्टार्ट हुआ. फिर बाद में आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स, फिलोसॉफिकल बुक्स, लाइक देयर वर ग्रेट सेंट्स लाइक शिरडी के साई बाबा. उनके उस सच्चरित्र में बहुत सारे वेज लिखे हैं वेयर यू कैन लीड अ वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ, नॉट मटीरियल थिंग्स, थॉट वाइज. सो इफ योर थॉट्स आर क्लीन, देन योर लाइफ विल बी वेरी पीसफुल. सो दैट इज हाउ आई केम इन टू दिस. एंड नाउअडेज आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. Not that some, see, वो क्या होता है, कभी कभी books read करते हैं, but to be frank, I don't follow anyone blindly. I apply it in my life. If it is really beneficial, then I adopt it. नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, ठीक है रेडी, क्या हो गया. So that is continued.
0: All right, all right. I get it, I get it. This is certainly a beautiful, beautiful journey in anyone's life. Lalita ma'am jo hai yahan par hame apni life ki story bata rahi hain, lekin hum sab relate kar pa rahe hain ki kahin na kahin hum bhi wahin the, humne bhi wo saman dekha tha, samaj dekha tha, aasman dekha tha, pareshaniyan jheli thi, meditation kiya tha, somebody came into our life and then is tarike se humko samajh mein aaya. I get it. चलिए ललिता मैं आपसे परमिशन चाहूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जिसे हम एक प्यारा सा भजन यहां पर सुन सकें और आपकी बातों पर मेडिटेट कर सकें, थोड़ा सोच सकें.

0: मैं किसी भी डेटी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भगवान पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें धर्म समझाइए मैम, धर्म क्या है और वो क्या आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, सेपरेट है, व्हाट अबाउट इट? मतलब स्पिरिचुअलिटी और धर्म, रिलीजन, दोनों को जरा एक बार कनेक्ट कीजिए मेरे लिए.
1: ओके. एक्चुअली वो एक नहीं है, लेकिन आप बोले ना वो कनेक्टेड है. धर्म इज मोर ऑफ रिचुअल्स एंड रूल्स. एक एक धर्म में एक एक रूल्स होता है. इस टाइप से पूजा करना चाहिए, इस हवन करना चाहिए, ये मंदिर जाना चाहिए, वो मंदिर के डीटी में ऐसा पूजा होना चाहिए. दीज आर ऑल फिक्स्ड रूल्स विच रिलीजन टेल्स अस. स्पिरिचुअलिटी हैज नो फिक्स्ड रूल्स. इट इज इंटरनल. यू गो इनसाइड एंड सर्च फॉर पीस. धर्म अपने आप में दे शो द रूट. वो राह दिखाता है, बट स्पिरिचुअलिटी राह दिखाता नहीं है. इट मेक्स यू गो इनसाइड एंड यू फाइंड आउट द पीस. व्हाट इज गिविंग यू द पीस? दैट इज धर्म. धर्म इज डेफिनेटली, आई डोंट से इट इज सेपरेट. बोथ लीड फॉर पीसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, दोनों एक ही है. बट both mean the same, but the road is different. Road of dharma is you follow good conduct, go to your mandir jana, havan jana, wo karna, ye karna, wo sab ek ek dharma wo bolta hai. Some dharma don't believe in idol worship at all. They only follow certain set rules. So dharma is more of a set of rules which you follow. Spirituality is the inner search for that truth. हम क्यों है, मैं कौन हूं, वॉट इज द एम ऑफ माई लाइफ, वाई एम आई हियर, तो वो स्पिरिट आता है. धर्म विल नॉट टीच यू दैट. इट इज बाय बर्थ यू बिलोंग देयर एंड यू फॉलो सर्टेन रूल्स. वो है स्पिरिचुअलिटी. यू कैन अडॉप्ट एट एनी टाइम. धर्म इज यू आर बॉर्न विद दैट.

ऑलराइट जी, आई गेट इट। बहुत ही सिंपल सी शब्दों में मैम ने जो चीज बताई है, दोस्तों देखिए मैं अपना इंटरप्रिटेशन साथ साथ यहां पर बताता चल रहा हूं, एक बिल्कुल साधारण मनुष्य होने के नाते मैंने क्या समझा वो बता रहा हूं। मैम ने बताया कि धर्म जो है रास्ता है एक अच्छी जिंदगी जीने का, और स्पिरिचुअलिटी है अपने अंदर झांकना, अपने को पहचानना। मैम ने कहा ना हम कौन है, यहां क्यों है, क्या कर रहे हैं हम, ये सब जो है ये स्पिरिचुअलिटी में आ गया, आध्यात्म में, और जीवन जीने का अच्छा तरीका, स्वच्छ सुंदर पावरफुल प्योर पायस तरीका जो है वो है धर्म। धर्म हमें बताता है, मैम ने बताया धर्म के साथ हम पैदा होते हैं और स्पिरिचुअलिटी हम कभी भी अपना सकते हैं। आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल, दिस इज क्यूट कि हम स्पिरिचुअलिटी कभी भी अपना सकते हैं, अमेजिंग। तब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात का एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहां पर आता है। मैम हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिकल बात करें जिससे साधारण लोगों को भी ये प्रोग्राम सुन के समझ में आए, उनको ऐसा ना लगे कि कोई साधु संत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, है ना। प्रैक्टिकल बात जो मेरे दिमाग में आई मैम, आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी हम जिंदगी में कभी भी अपना सकते हैं, ठीक है। धर्म हमारे साथ पैदा हुआ था, उसने हमें रास्ता बताया, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसकी, मैं आपकी बात सुनकर आज बहुत

0: फर्स्ट स्टेप.
1: ठीक है मैम.
0: नेक्स्ट स्टेप, सपोज यू नीड मनी. अभी मुझे मनी चाहिए चाहिए. ट्राई मीन्स ऑफ मेकिंग दैट मनी. फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट. भगवान ने सबको कुछ ना कुछ हुनर तो दिया ही है. उन्होंने किसी को ऐसे नहीं भेजा है. कुछ टैप दैट, फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, वो करो, मनी भी मिल जाएगा. तो एनीथिंग दैट डन विद पैशन एंड द एम, क्यों चाहिए ये, तो आपको वो भी अचीव होगा. मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल के बैठने से नहीं होगा. आई विल ट्राई टू मेक इट, आई विल वर्क हार्ड टू मेक. दिस आर स्मॉल स्टेप्स बिफोर यू रियली गो इन टू दैट स्पिरिचुअलिटी. सिट इन वन प्लेस एंड मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर. इन एनी फैमिली वन पर्सन कैन नॉट रन अवे एंड डू दिस, बट आधा घंटा तो मिल जाएगा ना दिन में. उसमें करते रहो. तो दीज आर स्मॉल स्टेप्स. कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन थिंग, डू एवरीथिंग विद पैशन. अगर आपको अच्छा नहीं लगा करना तो उस समय मत करना. देयर विल बी अ टाइम यू विल लाइक टू डू दैट, तब करना. हर बार मूड नहीं होगा करने के लिए. अभी बैठे रहो, आपको गाना गाओ बोलेगा तो नहीं गाएंगे, नहीं गा. इवन पोएट्री जो लिखते हैं ना, किताब लिखते हैं, उनको भी एक टाइम होता है. रात के टाइम पेंटिंग करते हैं, नहीं तो दे विल, वो मूड आते हैं तभी वो लोग, दे विल डू देयर बेस्ट. तो टू डू योर बेस्ट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन थिंग. तो वॉट आई डू इज, अभी मुझे नहीं करना है, आई विल गिव माई सेल्फ टाइम. अपने आप को मैं टाइम देंगी. आई वर्शिप माई सेल्फ. वर्शिप योर सेल्फ. बी हैप्पी विथ योर सेल्फ. डोंट वरी अबाउट वॉट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. लोग तो सोचेंगे, वाई शुड यू वरी.
1: राइट
0: समीर जी, ये सब मेरे उम्र में मैं बोल लूंगी, बट फॉर अ यंगस्टर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस. टू स्लोली स्लोली विथ स्मॉल स्टेप्स कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब. Do what you love to do, at least half an hour a day. Pura din mein aadha ghanta nikalo, apun jo bahut acha lagta hai, which gives you happiness, do that. Kisi kisi ko aise chupchap ek kursi mein baithe rahenge, kuch na karenge, unko aaram milta hai, they feel free, stress free, wo bhi karo. There is nothing wrong in it. So that is how it builds.
1: Okay, all right. आई गेट इट. सिंपल मैथड है. उनको ललिता मैम ने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन किया है दोस्तों, विच एक्चुअली मेक्स अवर थॉट प्रोसेस ईजी, सिंपल एंड क्लियर. जैसा उन्होंने कहा कि अपनी पसंद का कुछ भी काम, चाहे दिन में 5 मिनट भी मिले, करिए. इस बात को तो मैं भी बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैम. कई कई मित्रों को बोलता रहा जो लोग गाते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, गुनगुनाते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ अरे यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आज की दुनिया में पूरे दिन काम करते रहते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, फिर भी अपने लिए 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट यार. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट 5 आवर्स, 5 मिनट किधर पे भी कोने में ऑफिस में बैठ जाओ एंड देन डू व्हाट यू लाइक. मे बी सिंगिंग है ना, थोड़ा सा गुनगुनाइए, बस उतना ही बहुत है.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: और आई मस्ट थैंक यू ललिता मैम टू यू नो एनलाइटन मी फॉर दिस रीज, फॉर दिस यू नो थिंग, बिकॉज आई एम हैप्पी अबाउट इट. मेरे को जो पसंद है ना मैम, मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन करता हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू द पीपल लाइक यू.
0: एब्सोल्युटली,
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई एम मेकिंग रेडियो प्रोग्राम्स एंड टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू देम, लर्निंग समथिंग न्यू.
0: So, and also, yeah. समीर जी मैं बोलती हूँ, मेरी बेटी तो बहुत सारी चीज करती है. उसने बोला अम्मा आप करोगी ये, बोले हाँ बिल्कुल करूंगी. एंड विदाउट एनी थॉट बिल्कुल करूंगी बोल दिया. फिर बाद में आई टू वर्क टुवर्ड्स इट, बिकॉज क्या पूछने वाले हैं आपको, तो मुझे समझना आना चाहिए. एंड अनदर थिंग लैंग्वेज, देन शी सेड नहीं अम्मा हिंदी यू नीड नॉट टॉक फुल्ली इन हिंदी, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात कर लो चलेगा. सर ओके होता है, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलीव्ड. सचमुच समीर जी आपसे बात करके बहुत हल्का महसूस करती हूँ मैं.
1: वाओ थैंक यू. अच्छा मैम सीरियसली आई एम गेटिंग अ मैसेज इन योर मैसेज फ्रॉम यू कि

0: अगर मेरे से बात करके कोई भी थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहा है, रिलीव हो पा रहा है, थोड़ा सा पीसफुल हो पा रहा है, देन आई कंसिडर माई लाइफ इज वर्थ इट. हो गया.
1: एब्सोल्युटली.
0: बाबा भोलेनाथ ने मेरे को सही जगह दे दिया. ओके, आई एम डन. थैंक यू. चलिए.
1: थैंक यू.
0: मैम थोड़ा सा रुकते हैं. विल टेक अ पॉज एंड विल लिसन टू दिस ब्यूटिफुल काम पीसफुल भजन. विल कम बैक.
1: श्योर.

0: बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच. आपने हमें आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन बताया, धर्म का डेफिनेशन बताया, दोनों के डिफरेंसेस बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी बताए धर्म का और आध्यात्मिकता का. देन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की बेबी स्टेप्स बताने के लिए कि हम स्पिरिचुअल कैसे हो जाएं, वो भी आपने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करें. एंड देन यू एक्चुअली मेड अस फ्री. किसी भी आपने मेरे को प्रोटोकॉल में बांधा नहीं. आपने कहा जब भी दिन में फील करो कि ये करना है उधर करो.
1: बिल्कुल.
0: गरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है स्पिरिचुअल होने के लिए, है ना. बी अ नॉर्मल रूटीन पर्सन, काम पीसफुल पर्सन. गुस्सा आए उसको थोड़ी सी देर के लिए पोस्टपोन करो. ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मेरे को समझ में आ रही है. आई रियली लाइक इट. एंड दोस्तों, आप लोगों के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 3-4 प्रैक्टिकल एडवाइसेस जो ललिता मैम ने दी हैं, दीज आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल टिप्स टू लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली. अब एक और वर्ड आ रहा है मैम मेरे दिमाग में, जो आपने अभी भी थोड़ी सी देर पहले बोल भी दिया, तो आई वांट टू नो अबाउट इट. मेडिटेशन, ध्यान. ठीक है, मेडिटेशन ध्यान हो गया, हम ओम ओम ओम करके बैठ जाएं, वो भी एक, आई मीन आई डोंट नो, अभी आप मुझे बताएंगी. एंड प्रेयर, प्रार्थना करना, है ना, आरती गाना या कीर्तन करना या जो भी है. सो मेडिटेशन और प्रेयर में अंतर बताइए मैम. एंड क्या ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है, व्हाई?
1: ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. प्रेयर जो है वो भगवान से बातें करना है. एक्चुअली इट इज प्रेयर. प्रेयर में हमारे स्कूल में सिखाया, इट इज अ कॉन्वर्सेशन विथ योर गॉड. अभी भगवान को कौन सा, अभी प्रेयर को एक भाषा नहीं होता है. You always talk to the Lord in your comfort language. अभी my mother tongue is Tamil. But भगवान से जब बात करते हैं तो इंग्लिश में ही बात करते हैं.
0: Wow. Okay.
1: God give me this. God hope everything goes well. Uh-huh. इंग्लिश में आता है, तमिल में नहीं आता है. Because education इंग्लिश में हुआ है ना, तो वो भाषा आता है. And we hardly realize भगवान का भाषा क्या है. Does भगवान have a भाषा? No. We just put our thoughts, our feelings, सब भगवान के पास. Whenever we go to the Lord, most of the times before, see, stage comes when first you thank the Lord for everything.
0: Correct.
1: नहीं तो हमेशा बचपन से क्या है, you go only for asking something. बच्चे लोग परीक्षा में easy paper आना चाहिए, pass होना चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, घर में सब सुख शांति होना चाहिए. वी ओनली कीप आस्किंग. सो प्रेयर इज जस्ट टॉकिंग टू द लॉर्ड, गिव योर फीलिंग्स टू द लॉर्ड, वो है. एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस वो भगवान बेचारा वो सुन लेगा. एंड ही विल वर्क टूवर्ड्स इट, शांति देगा. एंड वी गेट दैट पीस, दैट कॉन्फिडेंस दैट भगवान हमको ठीक करेगा. दैट इज प्रेयर. यू आस्क द लॉर्ड, ही इज जस्ट लाइक अ बेचारे. तो वैसा है भगवान के साथ बात करना. द कॉन्वर्सेशन विद द लॉर्ड इज प्रेयर फॉर मी.
0: ओके.
1: मन दुख हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो जस्ट दिया जला और भगवान को बोलो, भगवान ये हुआ है, वो है प्रेयर.
0: ओके.
1: मेडिटेशन जो है वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, हम अपने अंदर के थॉट्स को खोज लेते हैं. Research. Why these things happen? Why we have to do certain things? And then we only of mind when we meditate, because we are concentrating only on one thing. अभी हमारे मन बहुत चंचल होता है, वो एक बार अमेरिका में होता है, अभी इधर होता है. So it is a very very चंचल बोलते हैं ना, you can fickle. But if you meditate, that fickleness will go away. You will start thinking only on one point.
0: Okay.
1: So slowly, slowly it will go on increasing.
0: Mm-hmm.
1: Meditation aaj 5 minute karo, 10 minute karo, but it will lead you to the same happiness and peace and all these things as a prayer. But dono alag tarike hain jo shanti khoj karte hain na, jo shanti. Abhi prayer na, aaj subah mein pray karo, dopahar mein jaake jhagda bhi kar sakte hain. होता है।
0: ओके
1: इन मेडिटेशन पीपल हु आर रियली मेडिटेटिव स्पिरिचुअल वो नहीं करेंगे। अपने आप में अंदर से एक कूल काम बिहेवियर आ जाता है हमें, तो उन लोग उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। प्रेयर में ऐसा नहीं होता है, सुबह वो बगल में छुरी मुंह में राम राम की जगह है, प्रेयर करेंगे पूजा करेंगे फिर बाद में
0: झगड़ा करेंगे,
1: नॉर्मल लाइफ दे विल बी। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट, इट इज मच मच डीपर थिंग है, बहुत बहुत अंदर खोज करना पड़ता है। एंड इन स्पिरिचुअलिटी इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ये है लाइफ चेंज,
0: ओके
1: इट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्रेयर इज मोमेंटरी, अभी प्रे करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, इट इज मोमेंटरी। अभी खुश होते हैं, दो दिन खुश रहते हैं, देन यू विल नीड दैट सेम भजन एंड कीर्तन एंड प्रेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड शांति। मेडिटेशन इज नॉट दैट, अंदर से आता है ना, तो आप अंदर से ठीक हो जाएंगे। यू डोंट नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर टू और सम मटेरियल टू मेक यू हैप्पी, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी एंड प्रेयर।
0: ओके अमेजिंग, फाइन गुड। अगेन दोस्तों, आपने अगर गौर किया हो, ध्यान से सुना हो, तो मैम ने अगेन बहुत प्रैक्टिकली बात कही है। कोई माथे पर बहुत सारा त्रिपुंड लगाकर और टीका लगाकर बैठकर और बड़ा बड़ा धूप बत्ती जलाकर बात करने की बात नहीं की है कि प्रेयर क्या है एंड मेडिटेशन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, बड़ी प्यार से ढंग से उन्होंने बताया कि प्रेयर में हम मांगते हैं भगवान हमें ठीक कर दो, भगवान हमें ठीक कर दो एंड सो मैनी थिंग्स। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, मेडिटेशन बहुत प्यारे बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने शब्दों को कहा कि प्रार्थना इज अ डायलॉग टू द गॉड। मुझे उस बात से मैम याद आया कि वन ऑफ माय फ्रेंड लॉन्ग बैक, हिज नेम इज आनंद श्रीनिवासन अय्यर, तो वी यूज टू लिव इन वेल इन दैट टाउन, कानपुर में रहते थे, तो वहां पर एक टेम्पल था। सो वो कभी भी परेशान होता था, गुस्सा होता था, कुछ फ्रस्ट्रेशन होता था, वो जाके उस टेम्पल में बैठ के एंड भगवान के ऊपर, अब कौन सा भगवान उसको जाने दीजिए, इट्स नॉट वेरी यू नो रेलेवेंट हियर, वो भगवान के ऊपर खूब गुस्सा करता था, वो खूब चिल्लाता था कि बस कर लिया, आर यू हैप्पी नाउ, मेरे को परेशान कर दिया ना, अब बड़ा मजा आ रहा होगा ना आपको। सो अभी मेरे को ख्याल आ रहा है जब आप कह रही हैं दैट ही एक्चुअली हैड बीन कम्युनिकेटिंग विद द गॉड, वो बात कर रहा था, कह रहा था मैं आपका बच्चा हूं, आई एम सैड नाउ, आर यू हैप्पी, मेरे को दुखी देख के आपको मजा आ रहा है, क्या कर रहे हो आप, व्हाई डोंट यू यू नो, आई मीन ही वाज टॉकिंग। तो मुझे अभी
1: करेक्ट और समझिए, ये बोलो जब ना वो शांत हो जाएगा,
0: राइट,
1: तो ही दैट इज द मीडियम ऑफ letting out
0: correct
1: वो है,
0: that's the beauty, अभी मेरे को समझ में आ रहा है। Oh God, amazing, that's so beautiful। तो दोस्तों बस एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, एक छोटा सा भजन के मुखड़े सुनते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू ललिता मैम हियर।

0: अमेजिंग, ब्यूटिफुल। तो फाइन, यहां तक हम लोगों की बात हो गई स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की, प्रेयर की, मेडिटेशन की, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। मैम बस अब हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिरी पादान पे हैं, लास्ट स्टेज में हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि चलते चलते हमें, हमारी बात शुरू हुई थी ना मैम अध्यात्म की, यानी कि आत्मा का अध्ययन, रीडिंग अवर सेल्फ, स्टडीइंग अवर सेल्फ, हाउ वी आर वगैरह वगैरह। तो लास्ट में बस मुझे ये बताते चलिए कि आत्मा क्या है, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड बाई आत्मा। कोई ऐसा अंदर टॉर्च है या दिया है या इज देयर अ पावर व्हिच विल जस्ट गो अवे व्हेन आई डाई, क्या है आत्मा, इज व्हाट?
1: ओके, आत्मा, आत्मा जो है वो अनंत है। एक्चुअली इट इज अ लाइफ गिविंग फोर्स इनसाइड एनी बॉडी। अभी इंसानी ने सब जीव में आत्मा होती ही है, होता है। ओके, so that atma is a life force.
0: Okay, okay,
1: within a body life is there. When the atma leaves, there is no life. So it is just a life giving force which moves from one body to another body. So it, as learned people said, I have read somewhere, the atma knows how long it has to stay in one body.
0: Oh, okay.
1: So wo jab it will decide when I can leave this body. अगर वो decide कर लिया ये time में मैं body छोड़ दूंगा, so it will go and that person is no more.
0: Okay.
1: सिर्फ body रह जाता है, आत्मा चले जाता है. But it will never die. It will search for another body.
0: Oh, all right.
1: So आत्मा है. That is आत्मा. It is a life force with which every body moves, it runs, it works, it operates. That is आत्मा.
0: I get it. I get it. सच में मैम, ऑन अ लाइटर पार्ट ऑफ इट, लेकिन एक साधारण इंसान को समझने के हिसाब से बोल रहा हूं, आई एम रियली रिलीव्ड एंड आई एम रियली हैप्पी टू लिसन टू दिस, दैट आत्मा इज अजर अमर, इट इज नॉट गोइंग टू डाई, इट विल एक्चुअली सर्च फॉर अनदर बॉडी, राइट?
1: करेक्ट।
0: सो आई एम रियली हैप्पी दैट समीर गोयल विल ऑलवेज लिव।
1: यस, डेफिनेटली वी समीर गोयल विल लिव।
0: Wow.
1: But with another name. Samir Goyal's Atma will live with another name, okay, and another body.
0: Good. तो दोस्तों, take this message. आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है, आत्मा है. So you're not going to die. You'll always, always be here. अब इस पूरे प्रोग्राम को सुनकर, ललिता मैम की सारी बातें सुनकर, आप क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व जो हमेशा जीने वाला है या कुछ और? डिसीजन आपके हाथ में होगा. ललिता मैम से तो सारी टीचिंग्स हमने ले ली, हम उनके बारे में सोचें, गुने, मेडिटेट करें एंड देन डिसाइड. ललिता मैम बहुत बहुत आभार है आपको, साधुवाद, थैंक यू सो मच. बहुत प्यारे ढंग से, बहुत प्यारी प्यारी सिंपल तरीके से आपने हमें चीजें बता दी. थैंक यू.
1: आपको सब सिंपल तरीके से मैं बता पाई, दैट इज व्हाई आई एम सो हैप्पी. आई कुड स्पीक आउट माय हार्ट आउट, माय माइंड आउट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई केम टू दिस प्रोग्राम. आई एम सो हैप्पी टू इंटरेक्ट विद यू समीर जी. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर ऑलवेज.
0: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू.
2: ओम भास्कराय नमः.
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
1: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
0: ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए
1: कहिए कहिए,
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए।

0: क्या कदाली वृक्ष एक औरत की राख से जन्मा था?
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछती हूं। आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में पूजा के समय केले के पत्ते क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? मंडप के चारों तरफ केले के पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? और कई धार्मिक अनुष्ठानों में केले को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ एक फल है या इसके पीछे कोई कहानी छुपी है? एक ऐसी कहानी जिसमें गुस्सा है, पछतावा है, प्रार्थना है और सबसे बढ़कर मुक्ति है। आज की कहानी हमें ले जाती है पुराने उस युग में, जहां एक औरत की एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और फिर उसकी राख से जन्म हुआ एक ऐसे वृक्ष का जिसे अब भी आज भी हम पवित्र मानते हैं। ये कहानी है महर्षि दुर्वासा की पत्नी कंदाली की। अब महर्षि दुर्वासा का नाम आते ही सबसे पहले क्या याद आता है? उनका गुस्सा, उनका क्रोध, उनका श्राप। पुराणों में कहा गया है कि दुर्वासा ऋषि का क्रोध इतना भयंकर था कि देवता भी उनसे संभल कर बात करते थे। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी दुर्वासा के गुस्से की नहीं है, बल्कि कंदाली के स्वभाव की है। कंदाली बहुत सुंदर थी, बहुत दयालु थी, बहुत कोमल हृदय की थी। लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी सेवा भाव की तारीफ करते थे। लेकिन हर इंसान की तरह उसमें भी एक कमी थी, और एक ऐसी कमी जो धीरे धीरे पूरी पहचान बन गई, उसकी जुबान। कंदाली को गुस्सा जल्दी नहीं आता था, लेकिन जब वो कुछ कहती उसके शब्द कड़वे होते, तीखे होते, चुभने वाले होते। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बोलते वक्त उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके शब्द सामने वाले को कितना दुख दे सकते हैं। कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कभी कभी सालों तक रहता है। दुर्वासा ऋषि कंदाली से प्रेम करते थे, और शायद इसी प्रेम की वजह से उन्होंने एक वचन दिया। उन्होंने कहा, कंदाली तुम चाहे जितनी गलतियां करो, मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ करूंगा। सोचिए कितना बड़ा वचन था ये, एक ऐसे ऋषि की तरफ से जिन्हें दुनिया उनके क्रोध के लिए जानती थी। दिन बीतते गए, गलतियां होती रहीं, और दुर्वासा ऋषि माफ करते रहे। 1, 2, 10, 50, 90, 100। और फिर एक दिन आया जब कंदाली से 101वीं गलती हो गई। क्या गलती थी? पुराणों में उसका विस्तार से वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि उस दिन उसके कड़वे शब्दों ने सीमा पार कर दी थी, और फिर दुर्वासा का क्रोध फूट पड़ा। वही दुर्वासा जिनके क्रोध से देवता भी कांप उठते थे। उन्होंने एक श्राप दिया, कंदाली इसी क्षण तुम भस्म हो जाओ। और अगले ही पल कंदाली राख बन गई। कहानी यहीं समाप्त हो जाती तो शायद ये सिर्फ दुखद कहानी होती, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कहते हैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में कंदाली ने भगवान से एक प्रार्थना की थी। उसने कहा था, हे प्रभु, मुझसे गलतियां हुई होंगी, मेरे शब्द कड़वे रहे होंगे, लेकिन मेरा मन कभी बुरा नहीं था। कृपया मुझे इतना पवित्र बना दीजिए कि मैं किसी के काम आ सकूं। दोस्तों, कितनी सुंदर प्रार्थना है ना। हम अक्सर भगवान से मांगते हैं धन, सुख, सफलता, यश, लेकिन कंदाली ने क्या मांगा? किसी के काम आने का वरदान। और शायद भगवान को इससे सुंदर प्रार्थना और क्या लगती। कहते हैं भगवान विष्णु की दृष्टि उस राख पर पड़ी और विष्णु जी ने कहा, कंदाली, तुम्हारे शब्द कड़वे थे लेकिन तुम्हारी आत्मा पवित्र थी। और फिर एक चमत्कार हुआ, राख से एक नया जीवन निकला। वही कंदाली कदाली बन गई। कदाली यानी केले का वृक्ष। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि आज के बाद कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी मांगलिक संस्कार कदाली के बिना पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए आज भी विवाह मंडप में केले के वृक्ष लगाए जाते हैं। पूजा में केले के पत्ते का महत्व होता है। भोग में केले के फल चढ़ाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश केले के पेड़ से भी बड़ा है। ये कहानी हमें शब्दों की ताकत सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं बस बोला ही तो है, लव्स ही तो है, लेकिन कभी कभी एक लव्स रिश्ता बना देते हैं और वही एक लव्स रिश्ता तोड़ देते हैं। एक लव्स किसी का हौसला बढ़ा देते हैं और एक लव्स किसी का पूरा दिन खराब कर देता है। इसलिए कहा गया है, बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि निकले हुए शब्द और छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आते। लेकिन कहानी यहाँ एक और बात सिखाती है। गलती करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी आदमी की आदतें बुरी होती हैं, उसका दिल नहीं। कंदाली की कहानी हमें यही बताती है कि अगर मन पवित्र हो तो भगवान भी एक दूसरा मौका जरूर देते हैं। और शायद इसीलिए केले का पेड़ सिर्फ एक वृक्ष नहीं है, एक प्रतीक है परिवर्तन का, शुद्धता का, और इस बात का कि एक गलती या एक कमी पूरे व्यक्ति को परिभाषित नहीं करती। तो दोस्तों, आज जब भी आप किसी पूजा में केले का पत्ता देखें या मंडप के पास खड़ा केले का वृक्ष देखें, तो सिर्फ पेड़ मत देखिए, एक कहानी याद कीजिए। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कड़वे शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन किसी इंसान को उसकी एक कमी से कभी नहीं पहचानना चाहिए। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलूंगी फिर आपसे एक और रोचक कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पत्नी ने अपने पति से कहा, आदमी के मरने के बाद स्वर्ग में अप्सरा मिलती है, तो भला बताइए औरतों को क्या मिलता है। पति ने हंसते हुए कहा, औरतों को स्वर्ग में बंदर ही बंदर मिलते हैं। पत्नी ने कहा, ये तो सरासर नाइंसाफी है, तुम्हें यहाँ भी अप्सरा वहाँ भी अप्सरा, हमें यहाँ भी बंदर वहाँ भी बंदर।

जयगढ़ फोर्ट का खजाना, सोना नहीं पानी। एक ऐसी कहानी जो राजस्थान की पहाड़ियों से निकलकर आज भी हमें हैरान कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक अफवाह से, एक ऐसी अफवाह जिसने पूरे देश को उत्सुक कर दिया था, ऐसी अफवाह जिसके बारे में अखबार लिख रहे थे, लोग चारों तरफ बात कर रहे थे और राजनीतिक गलियों में उसकी चर्चा हो गई। कहानी है साल 1976 की और जगह है हमारा अपना गुलाबी शहर, जी हाँ जयपुर। कहते हैं कि उस साल भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक खबर मिली। खबर ये थी कि जयपुर के जयगढ़ फोर्ट के नीचे राजपूतों का एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जो शायद पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और अनमोल दौलत। बस फिर क्या था, आर्मी भेजी गई, तलाशी शुरू हुई, लोगों की नजरें जयगढ़ की पहाड़ियों पर टिक गईं। सब सोच रहे थे अब कुछ बड़ा मिलेगा, अब कुछ बड़ा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जो हम ढूंढने निकलते हैं उससे कहीं ज्यादा कीमती चीजें मिल जाती हैं, और जयगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खजाना तो नहीं मिला, ना सोने की पेटियां, ना हीरे जवाहरात, ना राजसी संदूक, लेकिन जो मिला उसने इंजीनियर्स को हैरान कर दिया, इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया और हमें अपने पुरखों की बुद्धिमता पर गर्व करने का एक और कारण दे दिया। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, राजस्थान की तपती गर्मी, 45 डिग्री से ऊपर का तापमान, दूर दूर तक रेगिस्तान, पानी का नामो निशान मुश्किल है, और उसके बीच एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ एक विशाल किला, जयगढ़ फोर्ट। अब सवाल ये है कि पहाड़ी के ऊपर पानी आया कहां से? ना कोई नदी, ना कोई झील, ना कोई झरना, ना कोई वॉटरफॉल, और फोर्ट में रहने वाले सिर्फ 10 या 20 लोग नहीं थे, हजारों सिपाही, उनके घोड़े, उनका रसोई घर, उनकी रोज की जरूरतें। सोचिए, अगर दुश्मन ने फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया हो और पानी खत्म हो जाए तो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार पक्की है। लेकिन इतिहास बताता है कि जयगढ़ फोर्ट में पानी की कभी कमी हुई ही नहीं। अब सवाल और गहरा हो जाता है, आखिर कैसे? क्या ये जादू था, क्या ये कोई रहस्य था, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हमने भुला दिया? जब पुरातत्व विभाग और इंजीनियर्स ने इस रहस्य को समझना शुरू किया तो उनके सामने एक अद्भुत सच आया, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को दुश्मन नहीं अपना साथी बना लिया था। जहां हम आज बड़े बड़े पंप्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाते हैं, करोड़ों रुपए के ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाते हैं, वहां उन्होंने सिर्फ दिमाग और प्रकृति का इस्तेमाल किया। फोर्ट से कई किलोमीटर दूर तक पहाड़ियों पर छोटे छोटे चैनल्स बनाए गए, पतली पतली नालियां, सोची समझी ढलान और बहुत ही सही एंगल्स। जब बारिश होती थी तो पानी यूं ही बहने नहीं दिया जाता था,
हर बूंद को पकड़ा जाता था और उसकी दिशा बदली जाती थी और उसे धीरे धीरे फोर्ट की तरफ मोड़ दिया जाता था। आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलकर वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, लेकिन लगता है हमारे पूर्वज ये काम 400 साल पहले कर चुके थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बारिश का पानी साफ थोड़ी होता है, उसमें मिट्टी होती है, पत्ते होते हैं, पत्थर होते हैं, कचरा होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम बना दिया। पानी सीधा टैंक में नहीं जाता था, पहले ज़िगज़ैग रास्तों से गुजरता था, जहां भारी मिट्टी नीचे बैठ जाती, पत्थर अलग हो जाते और धीरे धीरे पानी साफ होता चला जाता, बिना किसी मशीन के, बिना किसी केमिकल के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ साइंस, प्योर साइंस और समझ। और फिर पानी पहुंचता था फोर्ट के अंदर बने विशाल अंडरग्राउंड टैंक्स में। अब टैंक भी कोई आम टैंक नहीं थे, सबसे बड़ा टैंक इतना बड़ा था कि उसमें लगभग 17 लाख गैलन से भी ज्यादा पानी स्टोर किया जा सकता था। सोचिए कितना पानी होगा वो। और उससे भी बड़ी बात, उन टैंक्स को ऊपर से ढक दिया गया था। आज हम रेफ्रिजरेटर्स में पानी ठंडा रखते हैं, लेकिन उस जमाने में जमीन के अंदर बने टैंकों में पानी महीनों तक ठंडा और सुरक्षित रहता था। ना इवेपोरेशन, ना कंटामिनेशन, ना वेस्टेज। कितनी दूर की सोच थी ना। कभी कभी लगता है हम अपने पुरखों को सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनकी इंजीनियरिंग देखें तो लगता है कि वो भी अपने जमाने के इनोवेटर्स थे, रिसर्चर्स थे, प्रॉब्लम सॉल्वर्स थे। और फिर 1976 में जब टैंक्स खोले गए, दीवारें देखी गई, जमीन खोदी गई, तो लोग खजाने की तलाश में थे, लेकिन असली खजाना तो सामने ही खड़ा था। 400 साल पुरानी इंजीनियरिंग, 400 साल पुरानी प्लानिंग और 400 साल पुरानी सस्टेनेबिलिटी। हम सोना ढूंढ रहे थे और हमें समझ मिली, हम हीरे ढूंढ रहे थे और हमें विज्ञान मिला, हम दौलत ढूंढ रहे थे और हमें ज्ञान मिला। तो दोस्तों, आज दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, वाटर क्राइसिस की बात कर रही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात कर रही है, लेकिन शायद कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे देखना पड़ता है। हमारे पूर्वज प्रकृति को जीतने की कोशिश नहीं करते थे, वो उसके साथ चलना जानते थे, और शायद इसीलिए उनके सॉल्यूशंस भी ज्यादा जिंदा थे। जैगर फोर्ट की ये कहानी सिर्फ एक किले की कहानी नहीं है, ये कहानी है सोच की, ये कहानी है प्लानिंग की, ये कहानी है उस भारत की जो सिर्फ तलवारों और युद्धों का देश नहीं था, बल्कि विज्ञान, जल प्रबंधन

आपको एहसास होगा कि कभी कभी असली खजाना सोना नहीं होता, असली खजाना होता है ज्ञान, सोच और वो विरासत जो सदियों बाद भी हमें प्रेरणा देती है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर आपसे एक और कहानी के साथ, जहां बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: दोस्तों, एक बार सोनू और उसकी पत्नी किसी दोस्त की शादी में जा रहे थे, तो सोनू ने बोला, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। उसकी पत्नी ने बोला, तो फिर मेरी तारीफ में एक शेर कहिए ना। सोनू ने बोला, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर ही लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी।

जब एक मधुमक्खी ने की महादेव की पूजा और जन्म हुआ मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछती हूँ। क्या कभी आपने किसी मधुमक्खी को फूलों पर मंडराते देखा है? जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मधुमक्खी का संबंध भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग से भी हो सकता है? क्या एक मधुमक्खी की भक्ति इतनी पवित्र हो सकती है कि उसकी याद में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का नाम ही अमर हो जाए? सुनने में कहानी सी लगती है ना, लेकिन शिव पुराण में वर्णित ये प्रसंग हमें ये बताता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए शक्ति या आकार नहीं, सिर्फ भक्ति जरूरी होती है। और आज की कहानी हमें ले चलती है त्रेता युग में, एक ऐसे समय में जब देवता भी डरे हुए थे। कहते हैं त्रेता युग में एक असुर था अरुणासुर, बहुत शक्तिशाली, बहुत तपस्वी और बहुत महत्वाकांक्षी। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, वर्षों तक इतनी कठिन तपस्या कि आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो अरुणासुर, क्या चाहते हो? और असुर ने सोच समझकर एक वरदान मांगा। हे प्रभु, मुझे ना कोई दो पैर वाला प्राणी मार सके और ना कोई चार पैर वाला। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और यहीं से शुरू हुई समस्या। जब शक्ति मिलती है और उसके साथ विनम्रता नहीं होती तो शक्ति अहंकार बन जाती है, ये तो हम सभी जानते हैं। अरुणासुर भी धीरे धीरे अहंकारी हो गया। उसने देवलोक पर हमला कर दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, यज्ञ रुक गए, प्रार्थना रुक गई, धर्म कमजोर पड़ने लगा। देवता घबरा गए, सबने मिलकर विचार किया, क्या किया जाए, कौन बचाएगा हमें? और फिर सबकी नजर गई जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती पर। सब माँ के पास गए, प्रार्थना की, विनती की। माँ ने सब सुना और मुस्कुराई। कहते हैं जब माँ मुस्कुराती हैं तो कहीं ना कहीं कोई लीला जन्म लेती है। माँ ने सोचा, अरुणासुर ने दो पैर वालों से सुरक्षा मांगी, चार पैर वालों से भी सुरक्षा मांगी, लेकिन छह पैर वालों का क्या? और फिर आदि शक्ति ने एक अद्भुत रूप धारण किया। माँ बनी भ्रामरी देवी, मधुमक्खियों की देवी। अचानक आसमान में गूंज उठने लगी, लाखों करोड़ों अनंत मधुमक्खियां। पूरा आकाश काला पड़ गया, सूरज की रोशनी धुंधली हो गई और वो सारी मधुमक्खियां एक साथ अरुणासुर पर टूट पड़ी। ना तलवार काम आई, ना गदा, ना सेना और ना कोई वरदान। जो असुर देवताओं को हरा चुका था वो एक माँ की रचना के सामने टिक नहीं सका। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म जीत गया, देवताओं ने राहत की सांस ली। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। युद्ध के बाद माँ पार्वती के मन में एक ही विचार था, अब मुझे अपने महादेव से मिलना है। माँ कैलाश पहुंची लेकिन शिव वहां नहीं थे। तीर्थों में गई, वहां भी नहीं मिले। पर्वतों पर खोजा, नदियों के किनारे खोजे, लेकिन महादेव कहीं नजर ही नहीं आए। तब किसी ने कहा,
हे माँ, महादेव श्री शैलम के वनों में हैं। माँ तुरंत चल पड़ी। घने जंगल, पहाड़ियां, प्रकृति की गोद, और फिर एक दृश्य, एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर माँ की आंखें नम हो गईं। एक विशाल अर्जुन वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग विराजमान था। ना कोई शोर, ना कोई भव्य मंदिर, ना कोई राजसी सजावट, सिर्फ प्रकृति, शांति और महादेव। उस शिवलिंग के चारों तरफ खिले हुए थे मल्लिका के फूल, यानी चमेली के फूल। उनकी सुगंध हवा में घुल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं महादेव की सेवा कर रही हो। माँ पार्वती कुछ देर तक देखती रही, प्रेम से, भक्ति से, आदर से। और फिर माँ के मन में एक भाव आया, आज मैं भी महादेव की पूजा करूंगी। लेकिन कैसे? तब माँ को अपना भ्रामरी रूप याद आया और माँ फिर से मधुमक्खी बन गई। वो चमेली के फूलों पर बैठी, उनका मरकंद लिया और शिवलिंग के चारों तरफ मंडराने लगी, गुनगुन गुनगुन गुनगुन। कहते हैं मधुर ध्वनि में ओम की अनुगूंज थी, उसमें प्रेम था, भक्ति थी, समर्पण था। मधुमक्खी के रूप में माँ पार्वती और शिवलिंग के रूप में महादेव। शिव और शक्ति का ये मिलन इतना पवित्र था कि उस क्षण एक दिव्य ऊर्जा ने जन्म लिया और उसी दिव्य क्षण में उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। मल्लिका यानी चमेली के फूल, अर्जुन यानी अर्जुन वृक्ष। और तब से श्री शैलम का ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कहानी की सबसे सुंदर बात ये है कि भगवान के पास पहुंचने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं। एक मधुमक्खी भी महादेव को प्रिय हो सकती है। एक छोटा सा फूल भी पूजा का माध्यम बन सकता है। एक कोमल सी गुंजन भी मंत्र बन सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति के लिए बड़े मंदिर जाना चाहिए, बड़ी पूजा करानी चाहिए, बड़े अनुष्ठान करने चाहिए। लेकिन भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है एक सच्चा मन, और यही तो माँ पार्वती ने दिखाया। युद्ध जीतने वाली शक्ति जब भक्ति करती है तो मधुमक्खी बन जाती है। कितनी सुंदर बात है ना? शक्ति में विनम्रता, बल में प्रेम और जीत में समर्पण। तो अगली बार जब आप किसी फूल पर मंडराती हुई मधुमक्खी देखें, तो बस शहद मत सोचिएगा। एक कहानी याद कीजिए, एक ऐसी कहानी जहाँ एक छोटी सी मधुमक्खी भक्ति का प्रतीक बन गई और उसकी गुंजन में ओम की अनंत ध्वनि समा गई। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे तनुषा। मिलूंगी फिर आपसे एक और रोचक कहानी के साथ, जहाँ बातें होंगी इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: भैया कहते हैं कि एक सामान्य आदमी के शरीर में 70% पानी होता है, यानी कि अगर इसे भौगोलिक दृष्टि से देखें तो मोटे लोग तो बाढ़ग्रस्त हैं और पतले लोग सूखाग्रस्त।
1: What the

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर आएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं, और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी, और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: बदलवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बदलवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बदलवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इस खोने लगे तो पूजा पाठ कर लेना। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हों, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए, तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है

उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 1000 रुपए जानकर तो वो हैरान ही रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरे इनके पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था, सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह हैं वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से, बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
6: लुई पास्चर।
7: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
8: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
7: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया,
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
8: चलो चलो चलो चलो
9: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
8: लोहा गर्म हो रहा है।
9: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
3: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
3: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन

0: 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ।
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
5: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
5: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
5: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
5: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
6: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अब
6: मेरा
3: अच्छा,
6: बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, always working towards the improvement of the human condition.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: विज्ञान गीत

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बाबा आमटी

कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंद वन। आनंद वन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई। बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति

उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। ये कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे
इन पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

बाबा आमटे के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंदवन सचमुच आनंद का।

बाबा आंटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी
2: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
5: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
4: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
5: हाँ, अब बन गई रेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे अरे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
5: दादाजी, आप भी हमारे संग खेलिए ना।
6: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
4: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
6: चलो रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
4: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
6: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
4: अच्छा
6: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
5: दादाजी, मैंने देखी है।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
5: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
6: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
4: अरे वाह,
6: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
4: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
6: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
7: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
6: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
7: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
6: बैठो बैठो, जल्दी करो जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो।

0: चलो चलो चलो उतरो बच्चों जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
1: रानी जल्दी चलो नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
0: हाँ हाँ उतरो बेटी।
2: बच्चों रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
3: दादाजी यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
4: हाँ बच्चों कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा। कुछ जाने वाले हैं।
3: अच्छा तो ये बात है।
4: अच्छा बच्चों वो देखो वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
1: दादाजी ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
4: हाँ बच्चों देखा ये है सचमुच की रेलगाड़ी, वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
3: दादाजी वो देखिए एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
4: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
3: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
4: हाँ हाँ बच्चों चलो चलो वापस घर चले।
3: हाँ हाँ दादाजी चलिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण में नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टंटियाभील 90.8 FM के खेती बाड़ी कार्यक्रम से आप सभी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते हैं। साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये खेती बाड़ी कार्यक्रम है, उससे न केवल आप लाभ लें, परंतु अपने साथी किसान साथियों को भी अपने नवीनतम कृषि के बारे में बताएं। साथ ही आपकी जो भी समस्याएं हैं, उसे भी आप रेडियो टंटिया भील के एप्लीकेशन के माध्यम से और रेडियो टंटिया भील के मोबाइल नंबर पर भी आप समस्याओं को लिख के हमें भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि केविकी के माध्यम से आप तक अच्छी से अच्छी उत्तम फसलों वाले बीजों को आप तक पहुंचाएं, साथ ही आप तक जो नवीनतम कृषि पद्धति है उसको भी आप तक पहुंचाएं। आप और हम सभी किसान साथ भाई यह अच्छे से जानते हैं कि लगातार रासायनिकों का प्रयोग हम जो हमारे खेतों में कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी जो मिट्टी है वो बंजर होती जा रही है, इसीलिए किसान साथियों, हमें हमारा रुख करने की आवश्यकता है प्राकृतिक खेती के ऊपर और जैविक खेती के ऊपर। किसान साथियों, अलग अलग विधियों के माध्यम से हम जीवामृत है, जैविक खाद है, केचुआ खाद है आदि हम बना सकते हैं, और इससे न केवल हमारा वातावरण बल्कि हमारी जो मृदा है जो बंजर हो चुकी है उसमें भी पुनर्जीवन आ सकता है। तो किसान साथियों, आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को, कैसे हम हमारी मृदा को बचा सकते हैं, हमें कौन सी फसल करके अधिक से अधिक मुनाफा लिया जा सकता है, और हमें किस तरह कृषि को करना चाहिए। साथ ही अगर हमारी कृषि में कौन सी नवीनताएं आई है, और हम अगर हमारा जो किसान है वो किस ओर अपना रुख करे तो उसे अच्छे से अच्छी और मुनाफे वाली कृषि मिल सके, इन सभी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: ना आके उसे कमजोर, ना है वह कमजोर, जब नारी में है शक्ति सारी, फिर क्यों कहे उसे बेचारी। किसान साथियों, आप और हम यह बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो नारियां हैं वह एक परछाई की तरह हमारे साथ लगी होती है। हमारे खेतों में जो उनका जो योगदान है वह अमूल्य है। वह बोने से लेकर निंदाई गुड़ाई, खेत का कचरा साफ करना, बाकी सारे कामों में जो हमारी नारियां हैं वह हमें बहुत ही हमारा बहुत ही साथ देती है। साथ ही किसान साथियों, आज हम इस खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कुछ महिलाओं के ऊपर जिन्होंने खेतीबाड़ी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो किसान साथियों, आइए इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
5: जीवन यापन का सबसे महत्वपूर्ण घटक कृषि है। 2011 के जनगणना के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या का करीब 70% हिस्सा गांव में बसता है। और इन लोगों की आमदनी और जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। गांव में कृषि कार्य हो या पशुपालन, महिलाओं की भूमिका पुरुषों के मुकाबले अग्रणी है। कृषि क्षेत्र के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूरों के तौर पर और 48% स्वनियोजित किसानों के तौर पर कार्य कर रही हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। फसल की पैदावार के हर महत्वपूर्ण काम में महिलाओं का अहम योगदान रहता है। इतना ही नहीं, पशु प्रबंधन में भी महिलाएं प्रमुख योगदान दे रही हैं। गाय और भैंसों के पालन में महिलाएं रोजाना 3 से 6 घंटे तक श्रम करती हैं। किसानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। खेतीबाड़ी में महिलाओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 6 वर्षों में सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कुल 30% हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से भी महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। यानी सरकार की ओर से महिला किसानों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पूरे देश में 645 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में किसानों को खेतीबाड़ी, पशुपालन और खेती से जुड़ी नई तकनीकों और शोधों की जानकारियां दी जाती हैं। स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए महिलाओं के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी महिला किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने, उनके विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसके साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, रुक कर लेते हैं सबसे पहले डॉक्टर सुनेजा का। डॉक्टर सुनेजा, रिपोर्ट में भी हमने देखा, शुरुआत में भी हमने जिक्र किया कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनका जो स्थान है काफी अहम हो जाता है। और आज हम जहां बात कर रहे हैं हमारी महिला किसानों की ही, तो आपसे शुरुआत में यही जानना चाहेंगे कृषि के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर आप क्या कहेंगी।
6: अदिति, आपने ठीक कहा कि 80% आर्थिक रूप से जो महिलाएं कार्यरत हैं कृषि में वो हमारी किसान बहनें ही हैं, और कृषि का सारा काम हमारी महिला किसान करती हैं। बुआई से लेकर फसल कटाई, निराई गुड़ाई, खरपतवार हटाना, उसमें उर्वरक डालना, और यहाँ तक कि कटाई उपरांत जो प्रसंस्करण क्रियाएं हैं वो भी हमारी किसान बहनें करती हैं। यहाँ तक कि विपणन का काम भी किसान बहनें ही करती हैं। तो किसान बहनों का कृषि में भागीदारी की बात की जाए और यदि आंकड़ों की बात की जाए तो खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में 55-60% महिलाएं कार्यरत हैं। वहीं पर पशुपालन के क्षेत्र में 93% तक महिलाओं की भागीदारी है।
7: जी।
6: इसी तरह से मछली पालन में 24%, कृषि वानिकी में और जो वन आधारित लघु उद्योग हैं उनमें हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अपूर्व रही है और उत्सराहनीय रही है।
7: जी बिल्कुल, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए, चाहे बात हम खेतों में कार्य करने की हो, फसल की कटाई के उपरांत जो हमारे प्रबंधन कार्य होते हैं, कृषि कार्य करने होते हैं, विपणन की ही बात कर लें तो तमाम कार्यों में हमारी महिलाएं सम्मिलित होती हैं, और जो पशुपालन है, अन्य जो कृषि संबंधित व्यवसाय हैं उनमें भी हमारी महिलाएं एक बहुत ही एक स्तंभ के रूप में खड़ी होती हैं और अच्छी तरह से कार्य करके कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं और अच्छी आय अर्जित करने में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, और अब डॉक्टर श्रीवास्तव आपका रुक करना चाहूंगी, आपके संस्थान के बारे में मैं यहां पर बात करना चाहूंगी। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान की हम बात करते हैं तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबन के लिए किस तरह के कार्य आपके यहां पर किए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें जागरूक किया जा रहा है?
8: ये हमारे संस्थान के लिए भी बड़े गौरव की बात है, क्योंकि हम लोग हमेशा महिलाओं के लिए ही काम करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस मीटिंग के माध्यम से कि हमारा संस्थान जो है सबसे पहले 1996 में बना, जब इसकी स्थापना की गई तो ये दो वैज्ञानिकों से शुरू हुआ था, और उस समय इसका नाम था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। उसके बाद महिलाओं की भागीदारी को खेती में देखते हुए इस संस्थान को 2008 में फिर से अपग्रेड किया गया और इसका नाम रखा गया डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर। और धीरे धीरे जो वैज्ञानिकों का काम था इस संस्थान में वो आगे बढ़ता गया और महिलाओं की भागीदारी भी खेती में बढ़ती गई। उसको देखते हुए पुनः 2014 में इस संस्थान को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर के रूप में दर्जा दिया गया। और अभी हम फिर इसी बीच में जो हमने ये ड्यूरेशन दिया 96 से लेके 2014 तक, इसी बीच में हमारे दो नेशनल कंसल्टेशन और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर दिल्ली में आयोजित हुए।
7: जी।
8: तो वहां पे जो हमारे माननीय अयप्पन साहब थे उस समय, भूतपूर्व डीजी साहब, तो उन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पूछा 117 देशों के लोग उसमें पार्टिसिपेट कि आप लोगों के यहाँ सारे देशों में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो कोई संस्थान ऐसा है जो पार्टिकुलरली कृषि में महिलाओं के लिए काम कर रहा हो
9: जी।
8: तो वहाँ पे जवाब मिला कि नहीं ऐसा कोई संस्थान हमारे यहाँ नहीं है, जनरली जेंडर पे वार हम लोग काम करते हैं लेकिन पार्टिकुलरली कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करने के लिए किसी देश में कोई इस तरह के संस्थान नहीं है। तो उस टाइम से फिर हम लोग पहले बोलते थे ये इंस्टीट्यूट साउथ

0: एशिया में है। और उस टाइम से हम लोग इसको बोलने लगे कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूनिक अकेला है। और अभी हमारे संस्थान को इसी 2020 में बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर अवार्ड भी मिला है।
1: जी
0: तो ये हमारे संस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है। और हम सबसे बड़ी जो खास विशेषता है इस संस्थान की कि हमारा संस्थान एक सिंगल विंडो के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। अगर धान के लिए कोई समस्या किसान बहनों की है तो वो यहाँ पे आएंगे तो उनको धान की बात या समस्या का समाधान मिलेगा। मछली की समस्या का कुछ समस्या है वो
1: जी
0: इस संस्थान में आएंगे तो मछली के बारे में भी हम उनको बता पाएंगे। उनको खेती किसानी के बारे में है, पशुपालन के बारे में है, बकरी के बारे में है,
1: जी
0: मुर्गी के बारे में है, तो अगर उनकी कोई भी समस्या है तो इस संस्थान में आने से उनकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो जाएगा।
1: जी तो कुल
0: बाकी
1: मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपका जो संस्थान है पूर्ण रूप से हमारी महिला किसानों को समर्पित है और उनकी किसी भी तरह की समस्या हो खेती बाड़ी को लेकर आप उनका समाधान उन तक पहुंचाते हैं। और जब हमारी महिला किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर सहूलियत हो जाएगी और आसानी से वो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगी और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम जरूर बढ़ा पाएंगी। बिल्कुल, हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सके इसके लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सरकार भी कई तरह के हम योजनाएं कहें वो भी ला रही है ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर मैं डॉक्टर रश्मि का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रश्मि, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हैं, आपके संस्थान के जरिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी महिलाएं, महिला किसानों की ही नहीं साथ ही साथ मैं ग्रामीण क्षेत्रों की हर महिला की बारे में यहां पर बात करना चाहूंगी कि उन्हें और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
2: हमारे संस्थान में महिलाओं का योगदान जो है वो पहले से डॉक्यूमेंट किया गया है, उस पर शोध किया गया है। उसके लिए हम अलग तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो हमारे जो विभिन्न संभाग हैं उनकी अपनी अपनी तकनीकें हैं, उनको अपना के हम महिलाओं को ट्रेनिंग दे के उनके द्वारा कुछ उद्यम भी हमने शुरू कराए हैं। दिल्ली के आसपास के काफी गांवों में हमने ये कार्यक्रम लागू किया है और काफी महिलाएं इसके लिए बहुत उनकी अपेक्षाएं थी और वो इसमें आगे भी आई हैं। उन्होंने बहुत सारे स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं, फेडरेशन बनाए हैं, कुछ ने तो अपनी कंपनियां भी लॉन्च करी हैं। और क्योंकि ट्रेडिशनली जो पहले से महिलाएं करती रही हैं वो कटाई उपरांत जो क्रियाएं हैं वो करके उनको मूल्य संवर्धित उत्पाद बना के वो बेचती रही हैं। अगर आप देखें तो इम्फाल में जैसे महिलाओं द्वारा एक मार्केट ही है, महिलाओं द्वारा संचालित आयोजित, सिर्फ महिलाएं उसको ऑपरेट करती हैं इम्फाल में। उसी तरह से ट्रेडिशनली चलता आया है, लेकिन इसको एक आज के परिपेक्ष में उद्यम की तरह से, कंपनी की तरह से, किसान महिलाओं द्वारा संचालित कंपनी या सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालित करके, तो उससे बड़ी उनकी आत्मनिर्भर पर भरता बड़ी है। वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो पाई हैं।
1: जी
2: अचार है, मुरब्बे हैं, पापड़ हैं, बड़िया हैं, सोयाबीन से निर्मित उत्पाद हैं और मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं। जिस तरह से हमारे साथ में पूजा शर्मा है, ये भी बताएंगे आपको डिटेल में, ये हमारे संस्थान से जुड़ी रही हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस तरह के स्वयं सहायता समूह। और हमारा जो केवीके है शिकोपुर में, वहां के तो तीन, जैसे एक तो क्षितिज है जिसको ये पूजा शर्मा संचालित करती हैं, एक प्रयास ग्रुप है, एक आरजू ग्रुप है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने उत्पाद रखे हैं।
1: जी बिल्कुल, तो महिलाओं को आप लोग प्रशिक्षित करते हैं हर स्तर में, केवल खेती किसानी के कार्यों तक ही नहीं बल्कि उसके पश्चात क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, उद्यम शुरू किए जा सकते हैं, इन तमाम जरियों के जरिए हमारी जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो एक अहम भूमिका उसकी भी रही है हमारी महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचाने में। और एक ऐसी ही सफल किसान, महिला किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूजा शर्मा जी, उनसे ही जान लेते हैं किस तरह से उनकी इस सफर की शुरुआत हुई। पूजा जी क्या कहेंगे आप?
3: मैं 2013 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी और वहां से मैंने प्रशिक्षण लिया। बचपन से ही खेतीबाड़ी और पशुपालन किया था तो सोचा क्यों ना मतलब कुछ ना कुछ किया जाए, अपने लिए तो हर कोई करता है। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को साथ लेके और उनके साथ मिलके कुछ काम करूं और 2013 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में जाके 7 दिवसीय प्रशिक्षण लिया और सोया नट्स का हमने प्रशिक्षण लिया। फिर हमने काम शुरू किया, हमने स्वयं सहायता समूह बनाया। समूह बनाने के बाद जैसे ही हमने काम की शुरुआत की तो काफी सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन शुरुआत में जो दिक्कतें आती हैं उनके बाद तो आगे बहुत अच्छा मतलब काम हो जाता है। समूह में मिलके हमने जैसे ही सोयाबीन का प्रशिक्षण तो लिया, मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जैसे बचपन से किसान भाई हैं, खेतीबाड़ी हमने भी की थी भाइयों ने के साथ मिलकर, तो क्यों ना हम उन्हीं चीजों को बना के मार्केट में दें ताकि हमारे किसानों का भी फायदा हो। जैसे कि आज हमारे मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय डबल होनी चाहिए। मेरा मानना है कि 2022 से पहले हम किसानों की आय डबल कर सकते हैं। जैसे बाजरे से हमने खिचड़ी बनाई, फिर बाजरे से हमने लड्डू बनाए और आज मतलब एक एनजीओ की हेल्प से बेकरी ऑन लगने की वजह से आज हम बाजरे के बिस्किट बनाते हैं, ज्वार के बिस्किट हम बनाते हैं, रागी चना मतलब कोई भी मोटा अनाज हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके हमने बिस्किट नहीं बनाए।
1: जी बिल्कुल, तो फसल उत्पादन तक ही सीमित ना रहकर आप प्रसंस्करण करती हैं, मूल्य संवर्धन करती हैं जिसके चलते आय काफी अच्छी अर्जित होती है। और अगर ऐसी ही कदम हमारी अन्य महिला किसान भी उठाएंगी तो निश्चित पर जो हमारी सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, उससे पहले ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बस जरूरत है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो विभिन्न संस्थान हैं उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको जानने की, उनको समझने की। जब जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, आप मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द हो पाएगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर सुनेजा के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर सुनेजा, हमारी सरकार जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमारी महिला किसानों के लिए खासतौर पर कई तरह की योजनाएं भी चलाए हुए हैं और उससे उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है, तो किस तरह की योजनाएं हैं ये आप इस पर प्रकाश डालिए।
4: अदिति, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ये लक्ष्य रहा है कि उत्पादन और उत्पादकता के साथ हम लोग ये सुनिश्चित करें कि मंत्रालय द्वारा लाभार्थी उन्मुखी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा महिलाओं तक अवश्य पहुंचना चाहिए। यद्यपि 80 के दशक में शुरुआत की गई थी महिला विशेष कार्यक्रमों से जिसमें कि केवल महिलाओं को फोकस करके वो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, लेकिन अब मंत्रालय का कि ये धारणा है कि महिलाओं को कृषि की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस तरह से महिलाओं को कृषि की मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहले मंत्रालय ने नीतिगत निर्णय लिए। जो राष्ट्रीय किसान नीति बनाई गई उसमें 4 चीजों पर बल दिया गया। एक कि घरेलू और कृषि भूमि जो है उस पर महिलाओं के संयुक्त पट्टे जारी किए जाएं, किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएं, फसल और पशुधन की जो उन्नत पद्धतियां हैं वो महिला अनुरूप और महिला अनुकूल बनाई जाए और साथ ही कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं हैं उसको वो आजीविका के रूप में किस तरह से ले सकती हैं। इन 4 स्तंभों पर कृषि नीति में ये जिक्र किया गया है और उसी के आधार पर सरकार ने एक चहुमुखी रणनीति तैयार की है जिसमें सबसे पहला जो विशेष निर्णय है और रणनीति है वो ये है कि जितनी भी मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो मिशन है, जो योजनाएं हैं, उनमें कम से कम 30% धनराशि का आवंटन महिलाओं के लिए किया जाए। दूसरा स्तंभ और रणनीति ये है कि महिला समर्थित कदम उठाए जाए, प्रो वुमेन इनिशिएटिव दिए जाए ताकि इन स्कीमों का फायदा अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके।
1: जी बिल्कुल, बताएं।
4: तीसरा स्तंभ उन्होंने मंत्रालय ने अपनी रणनीति में ये रखा कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाकर महिलाओं के उन्हें उनका क्षमता निर्माण किया जाए, उनके कौशल ज्ञान में वृद्धि की जाए। और चौथा स्तंभ ये है कि जितने भी निर्णय लेने वाले निकाय हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिसके आधार पर प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, ब्लॉक एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, उनमें महिलाओं का नामांकन और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इन चार स्तंभों के अराउंड मंत्रालय ने अपनी रणनीति तैयार करके आज ये अचीव कर लिया है कि जितने हमारे कार्यक्रम हैं, लगभग एक दर्जन मंत्रालय के मिशन कार्यक्रम और किसान कल्याण के कार्यक्रम हैं, उनमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
5: जी हाँ, तो हमारी महिला किसान बहनों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं, अलग अलग प्रकार की रणनीतियों के द्वारा हमारी जो कोशिश की जा रही है कि हमारी जो महिला किसान है वह कैसे आगे आ सके, और इनका भी जैसे हमारे पुरुष किसान है वैसे उसी तरह के से हमारी महिलाओं को भी उतना सम्मान मिले, उतना उनको भी उन योजनाओं का जो है फायदा मिल सके। साथ ही किसान साथियों, कैसे हमारी जो महिला किसान है वह कैसे अपना विकास कर सकती है, इन्हीं सारी चीजों को आगे हम जानेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइटिया व्हील 90.8 एफएम के साथ।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टाइटिया व्हील 90.8 एफएम। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: है छाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM छाबुआ की आवाज। किसान साथियों, हम महिला किसान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: तो जैसा आपको विदित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहुंच मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है। हम हर गांव तक, हर हमारे जो कार्यक्रम है उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जितने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम है, राज्य सरकारों के सहयोग के साथ में इनका क्रियान्वयन बखूबी किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग महिलाओं को सीधी बहुत ज्यादा ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं या उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्यों ना हो, जिसमें कि करीब 67% हमारी महिलाएं जो हैं आज ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको लाभ मिला है, लाभान्वित हुई है। उसी प्रकार से मनरेगा में भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी महिलाएं आज इस समय में, स्पेशली कोरोना के टाइम में, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मेजर इश्यू हो गया, तो हमारी महिलाओं को मनरेगा के माध्यम से भी बहुत रिलीफ मिली है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाएं सीधी भागीदारी कर रही हैं। मैं उनमें से कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बोलना चाहूंगी मनरेगा में भी, क्योंकि कई हम लोग केवल इसमें ही विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ आज हमने एक काम किया और कल आगे बढ़ गए। हमारा प्रयास ये है कि हम सस्टेनेबल अथवा ऐसे कार्य ले जिनका की परिणाम दूरगामी हो। जैसे न्यूट्री गार्डन का एक प्रोग्राम हम लोग देते हैं, ना केवल जिसमें हम जो न्यूट्री गार्डन है या ऐसे फल पौधे लगाते हैं जिससे कि लोगों को आमदनी मिले, बल्कि एक इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि हमारी महिलाओं को इसमें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल सके। दूसरा, हम लोग कुएं बनाने का बहुत सारा काम करते हैं, वो इसलिए जिससे कि सिंचाई के स्रोत हमको उपलब्ध हो पाए। खेतों में काम करने का काम लिया जाता है मनरेगा में, जिससे कि उन्नत खेती हो सके। साथ साथ में बागवानी के अन्य कार्य भी दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम है, पशुपालन शेड बन रहे हैं जिससे कि लोग जो एनिमल हस्बेंड्री में या दुग्ध उत्पादन में अपने जो जानवर दे रहे हैं उनको सेफली रख सके। कुक्कुट पालन के लिए भी शेड्स बनाने का कार्यक्रम इन सभी योजनाओं में, इस योजना में रखा गया है।
3: जी बिल्कुल।
2: दूसरी तरफ में हमारा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हम लोग सीधे सीधे महिलाओं के साथ में ही कार्य करते हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी पहुंच 7 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ में है। हमारा सीधा सीधा कार्यक्रम उनके माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है। हम लोग स्वयं सहायता समूहों को तैयार करते हैं और स्वयं सहायता समूह एक ही गांव के एक जैसे लोगों के समूह होते हैं, जिसमें कि महिलाएं इकट्ठा होकर अपने दिनचर्या के बारे में बात करती हैं, अपने किस तरह से जीविका उपार्जन बढ़ाया जाए उसके बारे में बात करती है। एक तरीके से समूह को संगठित करने का कार्यक्रम लिया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का ये कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले कई सालों में उनके समूहों को संगठित करने का बहुत अच्छा काम किया और अब हम आजीविका की ओर अपना ध्यान देकर जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाओं को, जो हमारी ये 7 करोड़ महिलाएं हैं, उनको हम आजीविका का कोई ना कोई साधन उपलब्ध करा सकें।

0: तो हमारे सारे प्रयास पोस्ट
1: जी। तो ये तमाम प्रयास हैं जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं ताकि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी, क्या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
0: मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगी कि पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का प्रारंभ किया
1: जी।
0: और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए, कई राज्यों में इसकी परियोजनाएं ली गई और इस परियोजना के माध्यम से हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज ये कि हम इस बात को समझे या समाज इस बात को समझे कि महिलाओं की भागीदारी कृषि में बराबर की है और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 70% महिलाएं जो है वो एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन के साथ में जुड़ी हुई है। तो हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग ऐसी प्रकार की खेती जिसमें की लागत कम हो, जिसमें की वातावरण को उतना नुकसान ना हो और इकोलॉजिकली जो साउंड प्रैक्टिसेस है हम वो उनको एडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी कृषि सखियां तैयार हुई, हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, ऐसे लोग जो कि समुदाय से ही आते हैं, समुदाय के बीच में रहते हैं और समुदाय में जाकर कुछ ट्रेनिंग हम उनको देते हैं और फिर वो जाकर उस ट्रेनिंग को वहां पर रेप्लिकेट करवाते हैं या दूसरे लोगों को और ट्रेन करते हैं, जिससे कि ज्यादा ज्यादा लोगों को इन एग्रीकल्चर इकोलॉजिकली प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता लग पाए। तो ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का हमारा कार्य चल रहा है, इसमें कई महिलाएं हमारे साथ में, करीब 60 लाख महिलाएं हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है और निरंतर जुड़ती जा रही है महिलाएं। जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया तो उसके साथ साथ में अब ये हुआ कि हम लोगों कृषि विभाग के साथ में मिलकर कुछ और गतिविधियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो अब हम लोगों का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है कि हम अपनी कृषि सखियों को और ट्रेन करें और ज्यादा अपनी महिलाओं को ट्रेन करें, दीदियों को ट्रेन करें, कृषि सखी बनाए, जो कि कृषि की जो बातें हैं, जो सूझबूझ की बात है कि किस प्रकार का बीज उपयोग किया जाए, किस प्रकार की खाद उपयोग की जाए, उसके बारे में उनको जानकारी हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात होती है, सॉइल टेस्टिंग की बात होती है, हम उनके साथ में मिलकर ये काम करें। एक इसमें बहुत अच्छा एक हमारा अनुभव रहा है, हम लोगों ने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए, क्योंकि क्या होता है गाँव में जो हमारी दीदियां हैं उनके पास में इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स होते हैं लेकिन वो उनके पास में नहीं होते। तो कस्टम हायरिंग सेंटर हुआ, यानी कि गांव में एक ऐसा समूह बनाया गया जहां पर कि एग्रीकल्चर औजार या इम्प्लीमेंट्स रहे और लोग अपना इसको थोड़े से फीस के साथ में या किराए के साथ में ले जाएं, गांव में लोग इसका उपयोग करें। सो हमारी सबसे बड़ी भागीदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पे शुरू हुई, उनकी जो एक आत्मा परियोजना है, योजना है, उसके तहत हम लोग फाइनेंसिंग इन स्वयं सहायता समूह को किया गया। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बहुत अच्छा काम हुआ है और आज जो ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स है वो रेवेन्यू अर्न करने की स्थिति में भी आ गए हैं।
1: लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें इन तमाम नीतियों का या फिर कहें योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ मिल सके, इसके लिए उन्हें किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: बहुत, ये तो सबसे बड़ा मूल मुद्दा यही है कि किस तरह से इन हम महिलाओं को बता सके कि ये योजनाएं हैं और अब आप इनका फायदा उठाए। इसमें दो चीजें, एक तो हम प्रोजेक्ट मोड में कर रहे हैं जिसमें कि हम नीचे जाकर इन महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, हम लोगों ने कुछ प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस भी बनाए, बड़ी कंपनियां बनाई है, करीब 6 कंपनियां हमने पहले आज से 2-3 साल पहले प्रवृत्त की थी जो कि सभी आज रेवेन्यू अर्न करने की स्थिति में आ गई है। 6 प्रोड्यूसर कंपनीज हमने इस साल भी प्रमोट की है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारी सब महिलाएं ही भागीदार है और आगे भी इस प्रकार की 40 तो बड़ी कंपनियां हम बनाने वाले हैं और इन कंपनियों में किस प्रकार का काम होगा, क्या प्रोडक्ट होंगे, ये इन महिलाओं के सहभागिता से हम लोग काम करें, मतलब कि ये प्रोजेक्ट मोड पे है। लेकिन जो हमारी आम महिलाएं हैं, आम बहनें हैं जिन तक हमें पहुंचना है, यानी हमारा उद्देश्य तो हर महिला तक पहुंचने का है, उनके लिए हमारे जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं, हमारे फार्मर ट्रेनिंग स्कूल्स जो विलेज लेवल पे फील्ड फार्मर ट्रेनिंग स्कूल हम इनको बोलते हैं, हमारे कुछ आरसेटी के माध्यम से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हर जिले में है उनके माध्यम से हम प्रशिक्षण के कार्य ले रहे हैं, और हमारा जो एक चैनल बना हुआ है जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं 10-15 महिलाएं होती हैं, उसके ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, 10-15-20 के ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, और फिर ऐसे ही 15-20 विलेज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, जो कि ज्यादा करके एक ब्लॉक में 2 या 3 होते हैं या कहीं पर एक भी है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये जो फेडरेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो विभिन्न चरण है या विभिन्न स्टेजेस हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के, इनके माध्यम से ये हमारी बड़ी मजबूत कड़ी है। हम इनके तक पहुंचते हैं, हम इनको बातें बताते हैं, और फिर वो नीचे कैस्केडिंग इफेक्ट से हमारी महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास करते हैं।
1: अंतिम सवाल मैम आपसे करना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर को निश्चित किया गया है कि महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाए, तो ऐसे में हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में ये कदम कितना कारगर साबित होगा, और इसके जरिए आप हमारी जो महिलाएं कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें किस तरह का संदेश देना चाहेंगी?
0: देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में जब हम सभी लोग ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, उस समय में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही ऐसी है जो कि किसी तरीके से खड़ी रही। आपको मालूम है ग्लोबल सप्लाई चेन हमारी ब्रेक हुई, लेकिन लोकल सप्लाई चेन ने उनको सप्लीमेंट किया। आज हम लोगों के पास में शहरों में जो भी चीजें आ रही है वो लोकल सप्लाई चेन से आना शुरू हुई। इसमें जो हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है, या प्रधानमंत्री जी ने जो एक अवधारणा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, उसमें हमारी सब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारा देश गांव में रहता है, हमारी महिलाएं अधिकांश, हमारे पूरी पॉपुलेशन का करीब 69% 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। हमारी जो महिलाएं हैं जिनके लिए कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं, उनको ये भी देखा गया है कि आज की तारीख में कृषि पर बड़ी तरीके से निर्भर है। यदि कृषि पर हमारी निर्भरता है तो हमें जरूरत है कि आज जो बहुत सारे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनका फायदा लेते हुए उन्नत कृषि की ओर, उन्नत या डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स लेकर, और दूसरा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, यानी कि जहां पर कि ना केवल गेहूं और चावल हो बल्कि दालें भी हो, वहां पर सब्जी भी हो, वहां कुक्कुट पालन भी हो, तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज हो। और सभी को शुभकामनाएं महिलाओं को हमारे 15 अक्टूबर के लिए।
2: किसान साथियों, जैसा कि ये अभी आपने जाना कैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारी जो महिला किसान है उन्हें अग्रणीय करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, साथ ही अलग अलग प्रकार के उन्हें स्वसहायता राशि भी प्रदान की जा रही है, तो हमें बस मेहनत करने की आवश्यकता है, हमारी महिलाओं का हमें मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है और उन्हें आगे करने की आवश्यकता है। जो भी कार्य वो लोग कर रहे हैं उसमें हमें हमारा पूर्णतः उनके सहयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबील 90.8 FM के साथ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडियाबील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, हम ब्रेक पर जाने से पहले लगातार चर्चा कर रहे थे किस तरीके कैसे हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें अग्रणीय करने के लिए अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से यह प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी जो महिला का जो सशक्तिकरण है, क्योंकि हमारे ग्रामीण महिलाओं के का जो मूल आय का स्रोत है वह कृषि है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता राशि की मदद से उन्हें आगे लाने के प्रयास चल रहे हैं। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: हमारे संस्थान की प्रमुखता रही है, जैसा कि नीरज सुनेजा मैडम ने बताया, कि जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और फार्मर कल्याण मंत्रालय है
3: जी।
2: तो हमारे संस्थान का ये है कि जो नीतियां निर्धारित होती हैं केंद्रीय सरकार से, उसको उन सारी नीतियों को हम लोग मूर्त रूप देते हैं गांव में जाकर के किसानों के खेत पे उनके साथ भागीदारी करके। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा संस्थान एक सही विंडो सिस्टम है, हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक है जो हर क्षेत्र के माहिर है और वो किसानों के खेतों पे गांवों में जाकर के उनकी समस्याएं को खुद उनसे बातचीत करके लेके आते हैं और समस्याएं प्राप्त होने के बाद फिर अपना वो शोध कार्यक्रम बनाते हैं। उसके बाद शोध कार्यक्रम में हमारी प्राथमिकता ये है कि जो उनकी समस्या है उसको सोल्यूशन मोड में, कि हमको 2 साल में या 3 साल में उनको कोई सोल्यूशन देना, जिससे कि वो कृषि की धारा में मुख्य रूप से जुड़ पाए। और मैं अभी भारत सरकार की बात करना चाहूंगा तो ये ICR की, तो ICR एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी नेशनल लेवल पे कृतज्ञ कृषि तकनीकी ज्ञान की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये नेशनल लेवल पे है और जिसमें ये संस्थान को भी मौका मिला है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में एज ए मेंबर। तो इसमें पार्टिकुलरली ऐसी चीजों को ध्यान दिया जाएगा जो महिलाएं खेती किसानी में काम करती हैं और उनकी जो ड्रजरी है, कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़े और जो ड्रजरी है उनको काम करने के टाइम में जो उनको दुख तकलीफ होता है वो कैसे कम किया जाए। तो ये 5 जोन पे ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और उसमें फिर नेशनल लेवल पे इसमें अवार्ड की भी व्यवस्था की गई है और इसमें जो प्रथम पुरस्कार है 5 लाख रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का है और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का है और इसका जो घोषणा होगी ये 1st week of December में होगी। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था और उन्होंने अपने किसी संबोधन में आह्वान भी किया है कि हमारी कृषि में प्रमुखता ये होनी चाहिए कि महिलाओं की जो ड्रजरी है उसके लिए कौन कौन से तकनीकी ज्ञान है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो उनके कठिन कठोर साध्य क्रम को कैसे कम किया जाए।
3: तो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें कई तरह की सहूलियतें, यहाँ पर कहें कि आर्थिक रूप से भी सहायताएं मुहैया कराई जा रही है। शुरुआत में आपने जिक्र किया कि यंत्र जो हैं हमारी महिलाओं की आसानी के लिए बनाए गए हैं, उनको दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकें। क्या इसके लिए भी किसी तरह की सब्सिडी दी जाती है?
4: हाँ, इसकी भी सब्सिडी है और हमारा एक ICR का एक इंस्टीट्यूट है सिफिट, वहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं जो मतलब लो कॉस्ट भी हैं, उनमें से कई लो कॉस्ट भी हैं और जो जिनकी कीमत अधिक है उसके लिए भी सहायता सरकार से मिल सकती है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के को तो इस तरह की सब्सिडी मिलती है सरकारी संस्थाओं द्वारा।
3: जी बिल्कुल, तो हमारी महिलाओं को यहाँ पर अनुदान राशि भी दी जाती है ताकि हमारी महिलाएं तमाम तरह की जो कृषि संबंधित यंत्र हैं वो आसानी से ले सकें और उनका इस्तेमाल करके कृषि के कार्य और आसानी से कर सकें। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और पूजा जी का रुख करना चाहूंगे। पूजा जी, खेती किसानी का कार्य करें या फिर हम बात करें महिलाओं को कृषि के से संबंधित व्यवसायों में कार्य करने की, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं महिलाओं के सामने, इसके बारे में आप जिक्र करें ताकि आपके अनुभव हमारी महिलाएं सुन सकें।

0: जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, परेशानियां तो उनको आएंगी, क्योंकि वो गांव से जब बाहर निकलती हैं तो घूंघट पर्दे में होती हैं और पर्दे से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है लेकिन निकल जाती हैं महिलाएं, और निकलना पड़ेगा उनको क्योंकि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यही मतलब एक अच्छा मौका है। वो स्वयं सहायता समूह से जुड़े, और जैसे हमारी महिला किसान है, वो खेती बाड़ी में जो भी चीजें पैदा करती हैं उनको मूल्य संवर्धन करके मार्केट में दें, तो किसानों को मेरे हिसाब से मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही उनको मतलब रैली वगैरह में जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से
1: जी।
0: तो क्यों ना महिलाएं समूह में जुड़ें और काम करें।
1: आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सुनेजा का। डॉक्टर सुनेजा, अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, अगर हम खासतौर पर यहाँ पर बात करें या फिर साथी जो संबंधित व्यवसाय होते हैं जैसे पशुपालन वगैरह है, इसमें ज्ञान और कौशल के लिए वित्तीय जो हमारी व्यवस्था है उसके लिए क्या किया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा?
2: महिलाओं को कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सहायक धंधे, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, इन सब विषयों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए और वो वित्तीय सहायता विभिन्न स्कीमों में दी जा रही है कि उसका फायदा वो उठा सके, उसके लिए सरकार की एक आत्मा नामक एक योजना है जिसको कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है, आत्मा के नाम से बेहतर जाना जाता है। ये सब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक हिस्सा है। इस योजना में चूंकि महिलाओं की हर राज्य में, हर जिले में एक अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग तरह की उनको जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए, इसलिए एक महिलाओं की जो एक समर्पित पद, महिला समन्वयक का पद 2014 में जब मोदी सरकार ने आत्मा स्कीम का संशोधन किया था उसमें ये प्रोविजन किया गया था ताकि उस राज्य में, राज्य के हर जिले में और जिले के हर ब्लॉक में महिला विशेष समस्याओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। इसी के साथ साथ महिलाओं की क्या जरूरतें हैं ब्लॉक स्तर पर उसको कार्य योजना में शामिल करने के लिए जितनी भी ब्लॉक स्तर पर फार्मर एडवाइजरी कमेटीज बनाई गई हैं उसमें कम से कम 30% महिलाओं का नामांकन और भागीदारी आवश्यक है। किसी राज्य सरकार को तब तक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक इस आत्मा स्कीम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व इन समितियों में नहीं होता।

0: सरकार के जितने मिशन और उप मिशन है, जैसे खाद्य सुरक्षा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स ऑयल पाम है, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन है, पौध संरक्षण उप मिशन है, एग्रीकल्चर स्कीम ऑन मार्केटिंग है,
1: जी
0: तो उस कुछ स्कीमों में जो विशेष सब्सिडी महिलाओं को दी जा रही है जो पुरुषों से अधिक है, उसका फायदा भी उठाने के लिए आत्मा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और आत्मा के जानकारी
1: जी बिल्कुल। तो महिलाओं तक जानकारियां यहां पर पहुंचाई जा रही हैं और हम कहें यहां पर वित्तीय सहायता की तो महिलाओं को ये भी प्रदान की जा रही है ताकि वो स्वावलंबी हो सके। और ऐसी विषय में मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से जानना चाहूंगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने में राज्य सरकारों के योगदान पर आप प्रकाश डालें।
2: ये मैडम बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार जो काम करती है या केंद्र सरकार के जो संस्थान काम करते हैं, बिना राज्य सरकारों के सहयोग से किसान महिलाओं तक पहुंचना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसको लेकर के आए, जैसे मैं बात कर रहा था कि शेड्यूल कास्ट का प्लान, उसमें पूरे स्टाफ द पुअर वुमेन जो है उनको हम अपने संस्थान में लाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के लिए हमको ये शेड्यूल कास्ट का प्लान के अंतर्गत महिलाएं कहाँ से मिलेंगी, तो हम राज्य सरकारों के साथ संपर्क करते हैं ब्लॉक लेवल पे, और उनके पास एक शेड्यूल कास्ट का पूरा लिस्ट बना रहता है, वहां से हम सिलेक्ट करेंगे और उनकी जो समस्या होती है 20-20 के ग्रुप में हम समस्या वाइज उनको अपने संस्थान में बुलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और उनका जो क्रिटिकल इनपुट है जो उनको बहुत जरूरत है जिसकी वजह से वो अपने इनकम को दोगुना कर पाएंगे, उसको हम उनको क्रिटिकल इनपुट 100% देते हैं। और जहां तक सब्सिडी की बात है तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी ज्ञान है, इसको हम राज्य सरकार के साथ साझा करते हैं। हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एक हर महीने में एक बैठक होती है, स्टेट लेवल रिसर्च एंड एक्सटेंशन कमेटी की एक मीटिंग होती है, जिसमें राज्य सरकार के सभी उच्च पदाधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, वाइस चांसलर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होते हैं, प्लस ICAR संस्थान के सभी निदेशक होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं। तो उसमें यह चर्चा होती है कि आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीकी है, जो स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी कमेटी को हम लोग जिस शोध संस्थान के माध्यम से देते हैं, और स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी कमेटी उसमें से सिलेक्शन करके, वैलिडेशन करके, टेस्ट करके अपने यहाँ उसको रिकमेंडेशन में पॉलिसी एंड प्रोग्राम में डालती है, और उसके बाद कितनी सब्सिडी किस चीज पे दी जाएगी वो स्टेट डिसाइड करता है, और इस तरह से सब्सिडी मिलने के बाद वो टेक्नोलॉजी ग्रास रूट लेवल तक महिलाओं तक पहुंच पाती है। तो मैडम, ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बिना, योगदान के बिना हम लोग सीधे गांव तक पहुंच नहीं सकते हैं, या टेक्नोलॉजी या तकनीकियां हमारी कुछ हद तक तो पहुंच पाएंगी थोड़ा सा बोलने के लिए, लेकिन जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है या डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात है, तो हमको केवल 10-20 लोगों का नहीं करना है, पूरे देश के लिए करना है, पूरे देश की 50% महिलाओं के लिए करना है। तो हमें बहुत ही जरूरी है कि हम स्टेट के साथ अपना कोलैबोरेशन बनाएं और उनके माध्यम से ही हम ग्रामीणों तक पहुंचे।
1: जी, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं ताकि जमीनी स्तर पर जो तकनीकों की जानकारी है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके, और न केवल हमारे किसान बल्कि हमारी महिला किसान भी यहां पर आत्मनिर्भर बन सके।
3: जी हाँ, न केवल किसान बल्कि हमारी जो महिला किसान है वह कैसे सशक्त बन सके। महिला किसान सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है, साथ ही प्रशिक्षणों के माध्यम से भी हमारी जो महिला किसान है उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण देकर कैसे अपनी कृषि में वह बदलाव ला सके, साथ ही कृषि में जो उन्नत कृषि है उसे कैसे किया जा सके, और जो महिला जो हमारी महिला किसान है उनको आगे करने के लिए हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो भी जोरों शोरों से लगा हुआ है। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडा भील 90.8 FM के साथ छाबा की आवाज पर।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। दोस्तों, कुछ सफर कार्यों से शुरू होते हैं और कुछ सफर अपनी पहचान की तलाश से। आज हमारी मेहमान की कहानी भी कुछ बिल्कुल ऐसी है। सुजानगढ़ की मिट्टी से निकली, रेणुकूट की प्रकृति की गोद में पली बड़ी, बनस्थली विद्यापीठ की गोल्ड मेडलिस्ट, एक समर्पित माँ, रिसर्चर, गेस्ट फैकल्टी और जैन दर्शन की गहरी आध्यता, अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को परिवार को समर्पित करने के बाद उन्होंने दोबारा किताबों का हाथ थामा और PhD तक का सफर तय किया। जैन फिलोसफी, हेरिटेज, म्यूजियम्स और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस पर उनका काम न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि हमारी परंपरा को नए नजरिए से देखना भी सिखाता है। आज हम सब उनसे उनकी सिर्फ अचीवमेंट्स की बात नहीं करेंगे बल्कि उनकी सोच, उनके सफर और उनके जीवन के रंगों की बात करेंगे। तो बहुत ही गर्म जोशी के साथ हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अलका सिंघी जी का। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के जिंदगी अनप्लग प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप?
1: सबसे पहले थैंक्स आपको मुझे बुलाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे जुड़ने के लिए।
0: जी जी जी, हम SN रेडियो पे आपको इनवाइट करके बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आपकी जर्नी जानना चाहते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने हमारे श्रोताओं को बताया कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है और अपने पीक ऑफ द करियर में आपने सब कुछ गिव अप करके दोबारा से अपनी इनिंग्स शुरू करी है, तो वहीं से मैं अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी मैम। आप गोल्ड मेडलिस्ट रही और उस दौर में जब आप अपना करियर शुरू कर सकती थी, उसे पीक पर ले जा सकती थी और क्या नहीं हासिल कर सकती थी, तब सामाजिक सोच की वजह से आपको अपने सपनों को रोकना पड़ा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपने जीवन में, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके सपने सच में रुके या बस वो अपना सही वक्त का इंतजार कर रहे थे?
1: हाँ, 1997 में मैंने अपने दादाजी से अपने करियर के बारे में बात की थी, तो उन्होंने यह बोला और मुझे समझाया कि हमारे घर की बहु बेटियां काम काजी हो तो समाज घर को आर्थिक दृष्टि से कमजोर समझता है, तो मुझे मेरे सपनों को लगाम देना पड़ा। खैर, 2025 में मैंने अपनी PhD पूरी की, अपने सपने साकार किए, और मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो पाती हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और अपने सपनों को जरूर पूरा करना चाहिए। जीवन हमें मौका देता है, बस हमें उस मौके को पहचानना आना चाहिए।
0: क्या बात है मैम। आपको कैसा फील हुआ था जब आपको गोल्ड मेडल मिला था? आपको अपने ऊपर नाज हुआ था, अपने ऊपर यकीन हुआ था? उस समय गोल्ड मेडल लाना एक बहुत बड़ी बात होती थी क्योंकि उस समय मार्क्स इतनी इजीली नहीं मिलते थे। जो सच में मेहनत करते थे बच्चे, जो सच में आउटस्टैंडिंग बच्चे होते थे, उनको वो मेडल दिया जाता था। तो मैं बस एक एक यू नो एक फीलिंग जा, क्योंकि मैं भी एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लॉ में, बट मेरा जमाना अलग था. बट मैं उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत रेवरेंस से देखती हूँ जो उस जमाने में यू नो ये उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं. तो वो किस तरह का मंजर था आपके लिए?
1: हाँ, मुझे जब गोल्ड मेडल मिला तो मुझे, मेरा शादी हो चुकी थी मेरी, और मेरी ये न्यूज पापा के थ्रू आई थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी. नया नया घर था, ससुराल नया नया था, सब नए नए थे, तो मतलब वो खुशी शेयर किससे करूं समझ नहीं आ रहा था. हस्बैंड रात को 11 बजे आए थे.
0: जी जी. उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इससे?
1: हाँ, खुशी बहुत हुई थी
0: जी. और आपके हस्बैंड ने क्या कहा फिर?
1: अब इतनी पुरानी बात हो गई याद नहीं, लेकिन हाँ उनको भी बहुत खुशी हुई होगी.
0: जी जी. हाँ, उनको भी गर्व हुआ होगा आप पे. जी बिल्कुल. हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये मंजर रहा होगा आपके जीवन में. बहुत कंग्रेचुलेशन मैम आपको. आगे चलते हैं. आप नेचर से बहुत जुड़ी हुए हैं, आप बार बार नेचर की बात करते हैं, नेचर को बहुत बड़ा एक टीचर मानते हैं अपनी लाइफ में. तो अगर जंगल, पहाड़, प्रकृति बोल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, तो आपको वो आपके जीवन का कौन सा लेसन देते थे, अगर आप वो साझा करना चाहें?
1: हाँ, प्रकृति हमें धैर्य रखना सिखाती है, हर परिस्थिति को कैसे जीना है उसका सामना करना सिखाती है. वह यह भी सिखाती है कि जीवन निरंतर चलने और आगे बढ़ने का नाम है. और नेचर ने ही मुझे धैर्य रखना और निरंतर आगे बढ़ना सिखाया.
0: जी. कोई ऐसा वाक्य अगर आप साझा करना चाहें, आपके बड़े होते समय जब आप इन पहाड़ों और जंगलों के बीच बड़े हो रहे थे, तो कोई ऐसा एक पर्टिकुलर मंजर जो आप साझा करना चाहें, या कोई एक ऐसा वाक्य जो आज भी आपके जहन में ताजा है कि याद आता है तो खुशी भी होती है और यू नो नॉस्टैल्जिया भी हिट करता है?
1: ऐसा मतलब मेरी जब सगाई हुई थी, जब एंगेजमेंट हुई थी, तो नेचर को देख के ऐसे लगा कि हाँ, क्योंकि नहीं नहीं उस वक्त जब एंगेजमेंट होना और बात करने के लिए कम मिलता था, आप समझ सकते हैं. उस टाइम फोन होते नहीं थे, नहीं आती और जाती थी. तो मतलब ऐसे नेचर को देख के ऐसे लगता था कि हवा में उड़ रही हूँ. और जब शादी होके जब मैं आई तो मतलब दुख भी हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ, मतलब जैसे नेचर आगे बढ़ता है, एक नदी बिना रुके भी आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए.
0: क्या बात है, क्या बात है. कितनी ऑनेस्टी और कितनी सरलता से आपने इतनी इनोसेंट बात साझा की, बहुत ही खूबसूरत. कोई कोई पर्टिकुलर गाना जो आपके जहन में आता हो, जो आप गुनगुनाती थी उस समय?
1: मुझे मतलब बारिश में नहाना बहुत पसंद था.
0: वाओ.
1: ससुराल आके मेरा वो छूट गया.
0: अरे ओहो. और बारिश का कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो?
1: बस और अभी कुछ याद नहीं मुझे.
0: चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश का एक गीत जो ऑलरेडी एक हमारे पास है, जो आपने हमें रिक्वेस्ट की है, आपको बहुत पसंद है, तो अभी के लिए तो वही गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स और गिटार.

0: क्या खूबसूरत गीत है ये। इसने मेरी भी बहुत सारी यादों को ताजा कर दिया। मेरे बड़े होने के समय का गाना है ये और हम खूब गुनगुनाते थे इसको स्कूल कॉलेज में। तो थैंक यू मैम इतना खूबसूरत गीत की फरमाइश करने के लिए। आगे चलते हैं। आपने कई सालों बाद, जैसे अभी आपने बताया कि शादी के बाद आपने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की, और तब तक दुनिया बहुत चेंज हो चुकी थी, सब कुछ डिजिटल हो गया था, और डिजिटल दुनिया में पढ़ाई के मीडियम्स, पढ़ाई के मोड, पढ़ाई का तरीका सब कुछ अलग था। तो उस सब के बीच रहना, उसमें अपनी पीएचडी को पूरा करना, ये सफर कैसा था, कितना चैलेंजिंग था, ये कैसे आपने डिसाइड किया? और वो लोग जो आज अपने सपनों को दफना देते हैं डर के कारण, इन सब कठिनाइयों के कारण, इन सब चैलेंजेस के कारण, तो उनको आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे कि अपने सपनों को पोस्टपोन ना करें?
1: जब मैंने वापस स्टडी स्टार्ट की थी तो शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव आ चुके थे। प्रोजेक्ट बनाना, मतलब सब कुछ डिजिटल हो गया था। कुछ भी ढूंढना होता था ऑनलाइन ढूंढना होता था। मुझे ऐसे लगा एक बार कि मैं ऐसे कैसे करूंगी, फिर मुझे लगा नई चीज सीखने में तो मजा ही आएगा। तो मेरे बच्चे जब बड़े हो गए थे तो उनकी मदद से, मेरे साथ जो लोग पीएचडी कर रहे थे उनकी, वो थोड़े यंग बच्चे थे, उनकी मदद से मैंने काफी कुछ सीखा। प्रेजेंटेशन सीखी, वो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सब सीखा और बहुत मजा आया। और मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि उम्र तो एक नंबर है, सपने पूरे करने के लिए कभी देर नहीं होती। जीवन की राह बदलनी हो या अपने जुनून को पूरा करना हो तो जरूर करना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र हो गई है। और जीवन में मुश्किलें ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, बस उन्हें सॉल्व करना है और जीवन में अपने सपनों की तरफ बढ़ना है।
0: बिल्कुल, निरंतर बढ़ते जाना है। और बहुत ही खूबसूरत, अगेन आपने बात साझा की अपने जीवन से, बहुत प्रेरणादायक ये बात है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते वो चीजें जो उनके सपने रहते हैं, बट उनसे आगे बढ़ना और उन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना, उसी में आपकी जीत है। और उसके बाद जो जीत होती है उसका मजा ही कुछ और होता है। जब आपको पीएचडी अवार्ड हुई होगी तो वो किस तरह का एक खुशी का मोमेंट हुआ होगा आपके लिए, मैं इमेजिन कर सकती हूँ। आपने जैन फिलोसफी को भी बहुत ही गहराई से स्टडी किया है, म्यूजियम्स को, हेरिटेज पर, इन सब पर आपने बहुत रिसर्च की है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है ये। तो अगर जैन धर्म को सिर्फ एक रिलीजन नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ, जैसे एक तरीका जीने का, इस तरह के रूप में अगर आप हमारे श्रोताओं को समझाना चाहें तो थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट थ्रो करें, जैन धर्म के बारे में और आपके इसको परसीव करने के तरीके के बारे में।
1: हाँ, जैन धर्म एक रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, एक आर्ट है जो हमें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखती है। हमारी इच्छाएं व मन बहुत इधर उधर भागता है, पर हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये सिखाता है। प्रकृति को सेव करना सिखाता है। जीरो कार्बन लाइफस्टाइल जैन सिद्धांत सिखाते हैं, जिससे हम वर्तमान का जो समय है, इस समय में जितना प्रदूषण हो रहा है, हम वो सब रोक सकते हैं उस लाइफस्टाइल को फॉलो करके।
0: जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जीरो कार्बन जो आपने अभी वर्ड यूज किया, जीरो कार्बन।
1: हाँ, जीरो कार्बन लाइफस्टाइल का मतलब है,
0: जी
1: जैसे हम आजकल बहुत सारे क्लोथ पहनते हैं,
0: जी
1: आपने सुना होगा कि जीन्स बनने में कितने लीटर पानी
0: जी
1: वेस्ट होता है,
0: जी
1: या प्लास्टिक बहुत यूज करते हैं, वो हमारे लिए कितना हार्म होता है। तो जो जैन वे ऑफ लाइफ है, वो कहते हैं आप जितने कम चीजों में, उनका एक सिद्धांत है अपरिग्रह, मतलब आप कम से कम चीजों में अपनी जीवन चलाओ। अभी फॉरेन में एक मिनिमलिज्म करके थ्योरी आई थी, सेम इससे
0: मिनिमलिज्म।
1: मिलती जुलती है। हाँ, सेम मिलती जुलती है। और आप जैन कभी साधुओं को देखें, संतों को देखें, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, उनकी लाइफस्टाइल देखेंगे तो आपको लगेगा वो जीरो कार्बन मतलब प्रोड्यूस उनकी लाइफ है, क्योंकि जैसे दिगंबर तो वस्त्र पहनते ही नहीं है, खाना वो अपने लिए बनाते ही नहीं है, पानी भी उनका लिमिट है कि बस इतना ही यूज करना है, तो ये सेली मतलब एनवायरमेंटल को तो सेव करती ही है।
0: बिल्कुल, हम कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं, जीरो कार्बन लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो उसको ऑलरेडी एक हमारे देश में एक ऐसा धर्म है जो सालों से युगों से उसको जीता आ रहा है। ये बहुत ही एक गर्व फील करने वाली बात है। क्या मैम आपके जीवन में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप अपनाती हैं, मेडिटेशन हुआ या इसी तरह की कोई ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपके धर्म से रिलेटेड हैं, अगर आप वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें तो वो क्या होंगी, कुछ बेसिक चीजें?
1: मैं आपको बताती हूँ, मेरे कपड़े के नियम है, मैं साल में एक लिमिट कर रखी है, मैं उतने ही कपड़े खरीदती हूँ, उससे ज्यादा कपड़े नहीं खरीदती हूँ। सेकंड चीज मैं फॉलो करती हूँ कि मैं सन सेट के बाद, जब सूरज डूब जाता है उसके बाद मैं खाना न खाऊं, ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जो मैं रखती हूँ। ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी है थोड़े हेल्थ से भी रिलेटेड है, और थोड़ा नेचर सेव करना इसके लिए भी मैं सोचती हूँ। जैसे कुछ चीजें हैं कि जैसे मैं गार्डन में चलूँ तो मैं घास पे ना चलूँ, क्योंकि उनमें भी जीवन है, तो वो मैं बचना मतलब बचने की कोशिश करती हूँ।
0: बहुत इंटरेस्टिंग जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग मैं जिनको जानती हूँ वो जैन ना होते हुए भी आजकल सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं, और उनका रीजन भी वही है कि हेल्थ की वजह से, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स, डाइटिशियन सब लोग ही कह रहे हैं कि सनसेट से पहले खाना खत्म करें, इससे आपका डाइजेशन पूरा प्रॉपर हो जाएगा जब तक आप सोएंगे और वेट गेन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग मेरे सर्कल में इसको फॉलो करते हैं और मैजिकल चेंजेस हैं इसके, और जैन धर्म इसको सालों साल से प्रैक्टिस करता आ रहा है। तो वंस अगेन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल तरीका है जीने का, बट कभी ना कभी सरल चीजें ही सबसे डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आपका अगला फरमाइशी गीत फिल्म हाईवे से, माही वे।

0: वंस अगेन एक बहुत ही उम्दा गीत, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से। बहुत ही प्यारी चॉइस है मैम आपकी, थैंक यू सो मच इस गाने की फरमाइश करने के लिए। वंस अगेन मैं भी अपनी यादों में चली गई और बहुत ही मजा आया ये गाना सुन के। आगे चलते हैं, आपने हमें बताया कि आपने बहुत सारे राजस्थान के जैन मंदिरों, उनकी कला, उनके इतिहास, उनके दार्शनिक महत्व को बहुत गहराई से समझा है अपनी रिसर्च में। तो क्या कोई एक जैन मंदिर है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें, या कोई तीर्थ जिसको देखकर आपको लगा कि ये बस एक मंदिर नहीं है बल्कि एक जीवित ग्रंथ की तरह है, और कोई एक ऐसी सीख जो आपने वहां से सीखी हो जो आप साझा करना चाहें?
1: राजस्थान में कई जैन मंदिर हैं, जैसे रणकपुर जो अपने माउंट आबू के पास है, उदयपुर माउंट आबू के पास है, करौली में भी एक श्री महावीर जी मंदिर है। सभी टेंपल की बनावट और वास्तुकला बहुत ही बेजोड़ है, और रणकपुर तो विख्यात है मंदिरों के लिए, जैन मंदिरों के लिए। पर मैं इन सब में, मुझे अजमेर में एक सोनी जी की नसिया, जिसे लाल मंदिर भी कहते हैं, वो उसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। सोने का काम इतना सुंदर, इतना बारीक, ऐसे लगता है जीवंत हम अयोध्या नगरी देख रहे हैं, क्योंकि वो ऋषभ देव आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर जैन प्रथम तीर्थंकर हैं जो, उनके बना हुआ है। और उसमें अयोध्या नगरी का वर्णन मतलब इतना सुंदर तरीके से, कैसे उनके भगवान का कल्याणक, उनका जन्म कल्याणक, उनकी कैसे उनकी दीक्षा हुई, उनको केवल ज्ञान के सेवा, उनका सबका विवरण दिया हुआ है, और बड़े ही सुंदर में। और सबसे बड़ी बात वहां पे ये है कि राजस्थान की भंडारी भाषा में उस दीवारों पे जो लिखी हुई है कविताएं, या जो ग्रंथ साक्षात ग्रंथ लिखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान की लिपि या भाषा को उन्होंने वहां सेव कर रखा है, जिससे हमें लोकल चीजें पता चलती हैं। इस तरह से वो एक जैन ग्रंथ है, और मुझे मुझे वहां से एक सीख ये मिली कि हमें हमारी जड़ों से हमें जुड़ा रहना चाहिए, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, हमें हमारी भाषा को नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमारी भाषा कैसी भी हो उसको मतलब सीखना चाहिए। आजकल यूथ जैसे अपनी जो मदर टंग होती है, जैसे मारवाड़ी या बिहारी में मगधी चलती है, वो बोलना कम पसंद करते हैं, उनको इंग्लिश या हिंदी वाले भी हैं तो उनको हिंदी में बात करना नहीं पसंद है, उनको इंग्लिश में बात करना पसंद है। पर मैं ये कहती हूँ हमें हमारी मदर टंग को हमेशा हमें सीखनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए।
0: बिल्कुल, कोई ढूंढाड़ी में कोई गीत या कोई लोक गीत जो आपको बेहद पसंद हो, जो आप थोड़ा सा हमारे लिए गुनगुनाना चाहें, या कोई ऐसा ही वाक्य हमारे साथ साझा करना चाहें ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में?
1: ढूंढाड़ी भाषा में जो लिखा हुआ है, मैं मतलब मुझे याद नहीं, मैं पढ़ सकती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: याद नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: और अभी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं पढ़ भी नहीं सकती, मतलब वो मंदिर जी में ही जाके पढ़ सकती हूँ।
0: जी जी जी, कोई गीत अगर आप गुनगुनाना चाहें?
1: गीत में ढूंढारी भाषा में मुझे अभी तो नहीं मिल सकता।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड अगर आपको मन करे तो आप गुनगुना दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत प्रमोट करना चाहते हैं इस बात को कि सच में आपकी रूट्स बहुत जरूरी हैं, आपकी भाषा बहुत जरूरी है, आपकी भाषा, आपकी लोकल भाषा आपकी पहचान है। तो ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, हम इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं हैं, बट हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज कल के स्पेशली, क्योंकि हमारी जनरेशन तक तो लोग फिर भी कनेक्टेड थे, अब जो पिछले 10 सालों में बच्चे आए हैं वो बिल्कुल डिसकनेक्टेड हैं, और आगे आने वाले 10 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद उनको लोकल भाषाओं का नाम तक नहीं पता होगा, उन्हें बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो हम चाहेंगे कि अगर हम प्रमोट कर सकते हैं अपने रूट से जुड़ना, अपनी लैंग्वेज

से जुड़ना अपने रेडियो के माध्यम से, तो वो जरूर करें। तो इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, जो आप ही की फरमाइश पे है, ये जीवन है इस जीवन का, फिल्म पिया का घर।

0: जीवन के फलसफे जैसा ये खूबसूरत गीत। आगे चलते हैं, आप कम्युनिटी सर्विस से भी बहुत जुड़ी हुई हैं मैम, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई भी जो धर्म है उसकी असली पहचान सिर्फ मंदिर तक सीमित होती है या इंसान के व्यवहार और उसकी सेवा में नजर आती है?
1: धर्म का अर्थ एक तरह से कर्तव्य है। मनुष्य का आचरण व मानवीय मूल्य ही प्रमुख होते हैं। मेरे ख्याल से प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो समाज में आया है और उसने समाज और प्रकृति को अपने लिए प्रयोग किया है, तो वो तो उसे वापस धरती को समाज को देना चाहिए। जीवन सभी जी लेते हैं, पर जीवन का उद्देश्य धरती को कुछ देना हो या समाज के लिए कुछ काम करना हो तो करना चाहिए, और आपको यदि मौका मिल रहा है तो जरूर करना।

0: करना चाहिए, अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या सेवा करते हैं, किस तरह से जुड़े हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा साझा करना चाहें आपकी कम्युनिटी सर्विस के बारे में?
0: मेरे पास में एक कच्ची बस्ती में एक स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ते हैं। वो गवर्नमेंट से तो जुड़ी है, पर गवर्नमेंट ज्यादा, मतलब आप जानते हैं गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है। हाँ, तो मैं वहाँ पे हम फल आहार देते हैं जिससे बच्चे ज्यादा आए, और उन बच्चों की जब शादी होती है तो वो अपनी बच्चियाँ वो रोजगार अपना खुद कर सके, उसके लिए सिलाई मशीन, हम हर बच्ची को शादी में दहेज में एक सिलाई मशीन देते हैं जिससे वो अपना रोजगार चला सके, अपना घर चला सके।
1: बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया, और सच है कि किसी भी धर्म का अल्टीमेट जो मतलब है, मकसद है, वो इंसान को इंसानियत से मिलाना है, कृतज्ञ होना है, मृदुल होना है, और जीवन में कुछ छोड़ के जाना है किसी और के लिए। अपना जीवन तो हर कोई जीता है, जानवर भी जीता है, बट अगर आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते किसी और के लिए, किसी और का जीवन थोड़ा सा और सुंदर नहीं बना पाए, तो वो जीवन मेरे हिसाब से व्यर्थ है, और उस धर्म का भी कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, अंत कोई एक रीजन नहीं है उसकी टीचिंग्स का, उसकी लर्निंग्स का। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने साझा किया। आगे चलते हैं मैम, आपका एक बहुत खूबसूरत सा सपना अभी भी बाकी है, जहाँ पे आप चाहती हैं कि युवाओं के लिए एक जैन कल्चर के ऊपर बुक लिखें, जैन कल्चर उसकी फिलॉसफी से जुड़ी हुई एक बुक लिखें। तो इस किताब का पहला चैप्टर अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक सेंटेंस से शुरू होना हो तो वो क्या होगा?
0: हाँ, मैं यही कहूंगी कि मेरा पहला चैप्टर ये होगा कि अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कैसे करें, ये जैन धर्म कैसे सिखाता है।
1: जी, क्या आपने ये किताब लिखना शुरू की है अभी तक, या कुछ सोचा है कब तक लिखना चाहेंगी?
0: अभी अभी बस लिखने के लिए सोच रखा है, थोड़ा समय मिले फिर मैं लिखूंगी।
1: बिल्कुल, बहुत जल्दी आप लिख पाए ये हमारी आशा है, ये हमारी विश है आपके लिए पूरी एसएन रेडियो फैमिली की तरफ से। आज का मेरा आखिरी सवाल जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो ये है कि अगर जिंदगी को मौका मिले, आपको जिंदगी में आपको एक मौका दे जिंदगी कि आप अपनी 25 साल वाली अलका जी से मिल सकें, और सिर्फ एक मिनट के लिए उनसे मिलके उनसे कुछ कह सकें, तो क्या आप उन्हें ये यकीन दिलाना चाहेंगी कि उनके सपने बस अपना वेट कर रहे हैं, अपने मौसम का वेट कर रहे हैं और जरूर पूरे होंगे? और इसके अलावा आप उस 25 इयर्स की अलका से क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं यदि पीछे मुड़ के खुद से मिलूंगी तो मैं यही कहूंगी कि समय आएगा, हर चीज का समय आता है, वेट करो, हर इच्छाएं पूरी होगी। और मैं आज भी, मेरी काफी और भी है इच्छाएं, और बहुत सारी ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हो मैं बुक लिखूं और लिखूं, बस सही मौके का, सही वक्त का, या कुछ भी कहें वैसा इंतजार है, और बस यही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो सही वक्त जरूर आएगा। आपको जीवन में हर समय हर चीज समय पे मिली है, बट मिली बहुत खूबसूरत है, बहुत उम्दा है, तो ये भी जरूर होगा। अगर आप, जैसे मैंने कहा था, अब अगर कोई गीत गुनगुनाना चाहे, कोई सा भी, बड़ी ढूंढाड़ी में या हिंदी में, कोई भी आपका फेवरेट गीत, बिकॉज हमारा जो चैनल है, जो एसएन रेडियो का जो क्रक्स है, जो कोर है, वो गीतों से जुड़ा हुआ है, और हम चाहते हैं कि लोग गाएं, गुनगुनाएं और खुश रहें। तो अगर आप एक लाइन गुनगुनाना चाहें किसी भी गीत की, तो मैं, हमारे श्रोता भी बहुत खुश हो जाएंगे और मैं भी बहुत आभारी होंगी आप।
0: दो मिनट सोचती हूँ।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तुम बिना साथ मेरा हमने बात
1: जब जी मैं भी
0: याद नहीं आ रही हूँ।
1: जब कोई बात बिगड़ जाए
0: हाँ ठीक है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आए, देना साथ मेरा,
1: नवा, बिल्कुल,
0: बहुत
1: बहुत ही खूबसूरत नाम। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आप बहुत सरल हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत मेहनती हैं, जितना मैंने आपको जाना है। और मैं जरूर चाहूंगी कि आपके जीवन की सारी ख्वाहिशें, सारे ड्रीम्स पूरे हों, और वो किताब जिसकी आपने बात की है वो जरूर छपे, जल्दी छपे, ताकि एक बार फिर हम कनेक्ट हों और उसके बारे में खूब सारी बातें करें। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन रेडियो की पूरी टीम की तरफ से आपको कंग्रेचुलेशंस, धन्यवाद और बहुत आभार।
0: थैंक
1: दोस्तों, जैसे हमने अलका जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो ढूंढाड़ी में हमें कुछ दो लाइन सुना दें, तो उन्होंने प्रोग्राम के बाद हमें बहुत ही खूबसूरती से दो लाइंस रिकॉर्ड करके और उनका ट्रांसलेशन हमारे साथ साझा किया। मैं चाहूंगी कि अब आप वो दो लाइनें सुने और उनका जो क्रक्स है, उनका जो कोर है और उनकी जो खूबसूरती है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें।
2: सुगणा पाप पंक पर हरिए, पाप पंक पर हरिए, दिल स्यों वो सी रावे अध भार। यह विधि चीज आत्म निस्तार, प्राणातीत पात प्रथम अग अख्यो दूजो मिर सावाद। अदानत तित्तो अध कहिए, चौथो मिथुन विसात। इसका अर्थ है कि प्रथम पाप मनुष्य का अपने प्राणों का हनन करना है, दूसरा पाप झूठ बोलना है, तीसरा पाप अदाता दान, किसी को दान देने के बाद में पश्चाताप करना है, और चौथा विषाद देने वाला, मतलब अह ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन को तोड़ना।
1: अलका जी से आज की बातचीत में हमें ये एहसास हुआ कि सपने कभी पुराने नहीं होते। कभी कभी जिंदगी हमें थोड़ा सा रुकना सिखाती है, ताकि जब हम दोबारा चलना शुरू करें तो मजबूती और समझ के साथ आगे बढ़ें। अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने अनुभव, अपनी सोच और जैन दर्शन की इतनी खूबसूरत बातें हम सभी के साथ साझा की। दोस्तों, अगर आज की बातचीत ने आपके दिल को छुआ हो तो ये जरूर याद रखिए, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, सही वक्त पर वो खुद आपको आवाज देते हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ एसएन रेडियो पर। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान, एक नई कहानी और जिंदगी के कुछ नए रंगों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराइए, सीखते रहिए और दिल से जीते रहिए। नमस्कार।
3: सूरज।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: तस्वीरों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं, और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायणी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी, और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लेना, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है। उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 1000 रुपए जानकर तो वो हैरानी रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी ये किसी रामबाण से कम नहीं होता।
फिर

कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह है वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक

छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया, सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा, आप किस तरह के दोस्त हो, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए, उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं, आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों, वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी, वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली है। क्यों, ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचे, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं, भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों उनका मूल कारण पाप ही है, चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या, पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला, अद्भुत भगवान की कृपा है, भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं यही विचार किया होगा, कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

0: पंचायतों से।
1: आज ही मिले अपनी पंचायत से और फिर से जुड़े इस अभियान से।
0: मेरा गांव मेरी धरोहर है, मेरी आन है बान है शान है, मेरे गांव का एक इतिहास है, मेरा गांव मेरी ही पहचान है।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो वो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मीन्स एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भाग किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी, मेरा ट्रांसफर दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है,
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बजता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है। हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना। तो दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों, हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई,
1: थैंक यू।
0: लीजिए, पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना
1: दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: जब मैं ना रहूं तब तुम्हें यूं रुकना नहीं, जब मैं ना रहूं तब तुम्हें यूं रुकना नहीं। जीना है अपने लिए और खुद से ज्यादा मेरे लिए। जब तक हम दोबारा ना मिलें, एक और बार एक होने के लिए। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत खुशामदीद दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भील के आंगन से मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। मौसम की इस बदलती करवट के साथ वादों और उम्मीदों का एक नया सिलसिला लेकर एक बार फिर से आपकी दहलीज पर दस्तक दे चुकी हूँ। आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, आज की महफिल का मिजाज बड़ा ही रूहानी है। आज आपके सफर में जज्बातों का एक ऐसा कारवां शामिल होने जा रहा है जो सीधे आपके दिलों की गहराइयों को छुएगा। वक्त हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से चल रहा है, तो बिना देरी किए आइए सुरों के इस कारवां का आगाज करते हैं। प्रोग्राम की पहली पायदान पर आज की हमारी पहली पेशकश जो है वो बेहद रूहानी और तारीखी नज्म है। इस दिलकश नज्म को ख़ास तौर पर हमारी बेहद अजीज दोस्त रश्मि सिंहल की पसंद पर इस महफिल का हिस्सा बनाया जा रहा है। रश्मि जी की पसंद की इस नज्म को अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा था, जिसे गुजरे दौर में मलिका तरन्नुम मोहतरमा नूर जहां साहिबा ने गाकर अमर कर दिया था। और आज के इस नए दौर में इसी रूहानी कलाम को अपनी मखमली और पुरसर आवाज़ से नवाजा है गुलुकारा प्रतिभा सिंह बघेल ने। कलाम के बोल हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामांद। दोस्तों, ये शायरी सिर्फ हुस्न और इश्क की बात नहीं करती, बल्कि ज़िंदगी की तलखियों और मजबूरियों को बड़ी बेबाकी से सामने रखती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख़शा है हयात, यानी ज़िंदगी रोशन है, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, गमे दहर दुनिया के दुख दर्द। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, यानी टिकाव, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो आइए रश्मि की पसंद पर इस खूबसूरत इन खूबसूरत रंगों में सरोबार होते हैं और सुनते हैं प्रतिभा सिंह बघेल की आवाज़ में ये लाजवाब नज़्म आपकी नज़र।

अल्फाज से एहसास की अगली पायदान पर। दूसरी पेशकश सुफियाना कलाम की सरताज मोहतरमा आबिदा परवीन की उस पर पुरकशिश और बुलंद आवाज़ में है, जो सीधे सुनने के सुनने वालों के दिलों के पार उतर जाती है। इस बेहद मकबूल गज़ल को मशहूर शायर नसीर तुराबी साहब ने अपने ख़ास लफ्ज़ों से नवाजा है। दोस्तों, ये शायरी दिल के उस अफसोस को बयां करती है जहां लोग पूरी ज़िंदगी एक साथ तो गुजार देते हैं, मगर उनके दिलों के दरमियान वो गहरा तालमेल नहीं हो पाता। जुदाई ना होने के बावजूद भी एक अजनबीपन का जो एहसास जो आबिदा जी की आवाज़ में साफ झलकता है। मिसरा मुलाहजा फरमाएं, कदूरतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर कदूरतें दिलों का मैल, तगाफुल लापरवाही या बेरुखी, कदूरतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। और फिर वो हम सफ़र था, मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। तो आइए सीधे रुख करते हैं आबिदा परवीन जी की इस रूहानी और पुरअसर गायकी की तरफ। आपकी नज़र।

0: दोस्तों, आबिदा परवीन जी की उस बुलंद सुफियानी रवानगी के बाद अल्फाज से एहसास तक के अगले पड़ाव पर आइए रुख करते हैं, एक मखमली एहसास की तरफ जहां यादों के पुराने झोंके दिल के दरवाजे पर बड़े अदब से दस्तक देते हैं। हमारी अगली पेशकश हमें सीधे लेकर चलती है साल 1985-86 के उस सुनहरे दौर में, जब गज़ल सम्राट की कई एल्बम्स रिलीज हो रही थी, यानी हमारे जगजीत सिंह साहब जी की। ये गज़ल उनकी एल्बम एको से ली गई है। फराज साहब की इस शायरी में बीते हुए वक्त और मोहब्बत के उस पहले मोड़ का जिक्र है, जहाँ वक्त भले ही आगे बढ़ गया हो मगर दिल आज भी वहीं ठहरा हुआ है। शायर फरमाते हैं, जान पहचान से क्या होगा, फिर भी ऐ दोस्त गौर कर, शायद मुंतजर जिनके हम नहीं उनको मिल गए और हम सफर, शायद फिर उसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सकें, मगर शायद। फराज साहब की बेहद खूबसूरत गजल हमारे जगजीत सिंह जी की आवाज में आपकी नजर।
1: जिंदगी में हर चीज के दो पहलू, जैसे सच और झूठ, सुबह और शाम, मिलन और जुदाई, आशा निराशा, जिंदगी के इन्हीं रंगों को लेकर आज की आखिरी गजल पेश कर रहा हूँ। शायर हैं जनाब अहमद फराज़।

दोस्तों अल्फाज से एहसास तक के इस अगले पड़ाव पर आइए, रुख करते हैं एक ऐसे रूहानी और पुरअसर दर्द की तरफ जहाँ जुदाई की तड़प सीधे आसमान को छूती है। हमारी अगली पेशकश संगीत के शहंशाह सूफियाना कलाम के उस्ताद जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में सजी एक अमर बंदिश है, अमीर खुसरो के रंग। और इस रिवायती सूफिया कलाम को जब नुसरत साहब की बुलंद और रूहानी गायकी का साथ मिला तो ये बिरहा की सबसे बड़ी दास्तान बन गया। इस बंदिश में उस बेबसी और अकेलेपन का जिक्र है जहाँ महबूब के दूर चले जाने पर पूरा घर, पूरी दुनिया ही सूनी लगने लगती है। आंखों में हर वक्त सिर्फ इंतजार की नमी होती है। इस खूबसूरत कलाम के बोल हैं, देखूं राहें चढ़ के अटरिया, जाने आ जाएं सावरिया, जाने कब आ जाएं सावरिया, जब से गए मोही लीना खबरिया, छूटा पनघट फूटी गगरिया, सुना लागे सजन बिन देश, मैं ढूंढूं साजन को, मेरे सैया तो हैं परदेश, मैं का करूं सावन को, सुना लागे सजन बिन देश, मैं ढूंढूं साजन को। खान साहब की इस जादुई आवाज़ का नशा आपकी नज़र।

आवाज का ठहराव मिला तो ये कलाम बहुत नफीस हो गया। इस शायरी में इश्क की उस बेबसी और उसके उस रूप को दिखाया गया है जहाँ इंसान मोहब्बत से गुजारिश करता है कि अब और इम्तहान ना ले। अख्तर शीरानी साहब का लिखा एक बेहद खूबसूरत मिसरा कुछ यूं है। बस्ती में हमें बदनाम ना कर, बस्ती में हमें बदनाम ना कर, रुस्वा ना कर, यूं दर्द की राहों में हमें हैरान ना कर। तो चलिए इस हसीन इश्क की फरियाद को सुनते हैं। ऐ इश्क हमें बर्बाद ना कर। नायरा नूर की आवाज में प्रोग्राम की आखिरी नज़्म आपके लिए।

0: दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: घर सूर्य घर।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टंटियाबील 90.8 FM के खेती बाड़ी कार्यक्रम से आप सभी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते हैं। साथ ही हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये खेती बाड़ी कार्यक्रम है उससे न केवल आप लाभ लें, परंतु अपने साथी किसान साथियों को भी अपने नवीनतम कृषि के बारे में बताएं। साथ ही आपकी जो भी समस्याएं हैं उसे भी आप रेडियो टंडिया भील के एप्लीकेशन के माध्यम से और रेडियो टंडिया भील के मोबाइल नंबर पर भी आप समस्याओं को लिख के हमें भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि केविकी के माध्यम से आप तक अच्छी से अच्छी उत्तम फसलों वाले बीजों को आप तक पहुंचाएं। साथ ही आप तक जो नवीनतम कृषि पद्धति है उसको भी आप तक पहुंचाएं। आप और हम सभी किसान साथ भाई यह अच्छे से जानते हैं कि लगातार रासायनिकों का प्रयोग हम जो हमारे खेतों में कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी जो मिट्टी है वो बंजर होती जा रही है। इसीलिए किसान साथियों, हमें हमारा रुख करने की आवश्यकता है प्राकृतिक खेती के ऊपर और जैविक खेती के ऊपर। किसान साथियों, अलग अलग विधियों के माध्यम से हम जीवामृत है, जैविक खाद है, केचुआ खाद है आदि हम बना सकते हैं और इससे न केवल हमारा वातावरण बल्कि हमारी जो मृदा है जो बंजर हो चुकी है उसमें भी पुनर्जीवन आ सकता है। तो किसान साथियों, आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को, कैसे हम हमारी मृदा को बचा सकते हैं, हमें कौन सी फसल करके अधिक से अधिक मुनाफा लिया जा सकता है और हमें किस तरह कृषि को करना चाहिए। साथ ही अगर हमारी कृषि में कौन सी नवीनताएं आई है और हम अगर हमारा जो किसान है वो किस ओर अपना रुख करे तो उसे अच्छे से अच्छी और मुनाफे वाली कृषि मिल सके, इन सभी चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: ना आके उसे कमजोर, ना है वह कमजोर, जब नारी में है शक्ति सारी फिर क्यों कहे उसे बेचारी। किसान साथियों, आप और हम यह बात बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो नारियां हैं वह एक परछाई की तरह हमारे साथ लगी होती है। हमारे खेतों में जो उनका जो योगदान है वह अमूल्य है। वह बोने से लेकर निंदाई गुड़ाई, खेत खेत का कचरा साफ करना, बाकी सारे कामों में जो हमारी नारियां हैं वह हमें बहुत ही हमारा बहुत ही साथ देती है। साथ ही किसान साथियों, आज हम इस खेतीबाड़ी के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कुछ महिलाओं के ऊपर जिन्होंने खेतीबाड़ी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो किसान साथियों, आइए इस चर्चा को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
6: गांव में जीवन यापन का सबसे महत्वपूर्ण घटक कृषि है। 2011 के जनगणना के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या का करीब 70% हिस्सा गांव में बसता है। और इन लोगों की आमदनी और जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। गांव में कृषि कार्य हो या पशुपालन, महिलाओं की भूमिका पुरुषों के मुकाबले अग्रणी है। कृषि क्षेत्र के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूरों के तौर पर और 48% स्वनियोजित किसानों के तौर पर कार्य कर रही हैं। एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। फसल की पैदावार के हर महत्वपूर्ण काम में महिलाओं का अहम योगदान रहता है। इतना ही नहीं, पशु प्रबंधन में भी महिलाएं प्रमुख योगदान दे रही हैं। गाय और भैंसों के पालन में महिलाएं रोजाना 3 से 6 घंटे तक श्रम करती हैं। महिला किसानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। खेतीबाड़ी में महिलाओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 6 वर्षों में सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कुल 30% हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से भी महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। यानी सरकार की ओर से महिला किसानों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पूरे देश में 645 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में किसानों को खेतीबाड़ी

0: मेन एग्रीकल्चर दिल्ली में आयोजित हुए,
1: जी
0: तो वहाँ पे जो हमारे माननीय अयप्पन साहब थे उस समय भूतपूर्व डीजी साहब, तो उन्होंने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पूछा 117 देशों के लोग उसमें पार्टिसिपेट कि आप लोगों के यहाँ सारे देशों में क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, जो कोई संस्थान ऐसा है जो पार्टिकुलरली कृषि में महिलाओं के लिए काम कर रहा हो।
1: जी
0: तो वहाँ पे जवाब मिला कि नहीं, ऐसा कोई संस्थान हमारे यहाँ नहीं है, जनरली जेंडर पे वार हम लोग काम करते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करने के लिए किसी देश में कोई इस तरह के संस्थान नहीं है। तो उस टाइम से फिर हम लोग पहले बोलते थे ये इंस्टीट्यूट साउथ ईस्ट एशिया में है, और उस टाइम से हम लोग इसको बोलने लगे कि ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूनिक अकेला है, और अभी हमारे संस्थान को इसी 2020 में बेस्ट इंस्टीट्यूट इन एशिया फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर अवार्ड भी मिला है।
1: जी
0: तो ये हमारे संस्थान के लिए बड़ी गौरव की बात है, और हम सबसे बड़ी जो खास विशेषता है इस संस्थान की कि हमारा संस्थान एक सिंगल विंडो के रूप में काम करता है। हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, अगर धान के लिए कोई समस्या किसान बहनों की है तो वो यहाँ पे आएंगे तो उनको धान की बात या समस्या का समाधान मिलेगा, मछली की समस्या का कुछ समस्या है वो इस संस्थान में आएंगे तो मछली के बारे में भी हम उनको बता पाएंगे, उनको खेती किसानी के बारे में है, पशुपालन के बारे में है, बकरी के बारे में है, मुर्गी के बारे में है, तो अगर उनकी कोई भी समस्या है तो इस संस्थान में आने से उनकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पे हो जाएगा।
1: जी तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपका जो संस्थान है पूर्ण रूप से हमारी महिला किसानों को समर्पित है, और उनकी किसी भी तरह की समस्या हो खेती बाड़ी को लेकर आप उनका समाधान उन तक पहुँचाते हैं, और जब हमारी महिला किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर सहूलियत हो जाएगी और आसानी से वो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम जरूर बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, हमारी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सके इसके लिए हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है, सरकार भी कई तरह के हम योजनाएं कहें वो भी ला रही है ताकि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। इसके बारे में आज के कार्यक्रम में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर मैं डॉक्टर रश्मि का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रश्मि, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से हैं, आपके संस्थान के जरिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी महिलाएं, महिला किसानों की ही नहीं साथ ही साथ मैं ग्रामीण क्षेत्रों की हर महिला की बारे में यहां पर बात करना चाहूंगी कि उन्हें और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
2: हमारे संस्थान में महिलाओं का योगदान जो है वो पहले से डॉक्यूमेंट किया गया है, उस पर शोध किया गया है, उसके लिए हम अलग तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो हमारे जो विभिन्न संभाग हैं उनकी अपनी अपनी तकनीकें हैं, उनको अपना के हम महिलाओं को ट्रेनिंग दे के उनके द्वारा कुछ उद्यम भी हमने शुरू कराए हैं। दिल्ली के आसपास के काफी गांवों में हमने ये कार्यक्रम लागू किया है और काफी महिलाएं इसके लिए बहुत उनकी अपेक्षाएं थी और वो इसमें आगे भी आई हैं। उन्होंने बहुत सारे स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं, फेडरेशन बनाए हैं, कुछ ने तो अपनी कंपनियां भी लॉन्च करी हैं। और क्योंकि ट्रेडिशनली जो पहले से महिलाएं करती रही हैं वो कटाई उपरांत जो क्रियाएं हैं वो करके उनको मूल्य संवर्धित उत्पाद बना के वो बेचती रही हैं। अगर आप देखें तो इम्फाल में जैसे महिलाओं द्वारा एक मार्केट ही है, महिलाओं द्वारा संचालित आयोजित, सिर्फ महिलाएं उसको ऑपरेट करती हैं इम्फाल में, उसी तरह से ट्रेडिशनली चलता आया है, लेकिन इसको एक आज के परिपेक्ष में उद्यम की तरह से, कंपनी की तरह से, किसान महिलाओं द्वारा संचालित कंपनी या सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालित करके, तो उससे बड़ी उनकी आत्मनिर्भर पर भरता बड़ी है, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो पाई हैं।
1: जी
2: अचार है, मुरब्बे हैं, पापड़ हैं, बड़ियां हैं, सोयाबीन से निर्मित उत्पाद हैं और मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं, जिस तरह से हमारे साथ में पूजा शर्मा है ये भी बताएंगे आपको डिटेल में, ये हमारे संस्थान से जुड़ी रही हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस तरह के स्वयं सहायता समूह। और हमारा जो केवीके है शिकोपुर में, वहां के तो तीन, जैसे एक तो क्षितिज है जिसको ये पूजा शर्मा संचालित करती हैं, एक प्रयास ग्रुप है, एक आरजू ग्रुप है, जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने उत्पाद रखे हैं।

0: जी बिल्कुल। तो महिलाओं को आप लोग प्रशिक्षित करते हैं हर स्तर में, केवल खेती किसानी के कार्यों तक ही नहीं बल्कि उसके पश्चात क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, उद्यम शुरू किए जा सकते हैं, इन तमाम जरियों के जरिए हमारी जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो एक अहम भूमिका उसकी भी रही है हमारी महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचाने में। और एक ऐसी ही सफल किसान, महिला किसान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूजा शर्मा जी, उनसे ही जान लेते हैं किस तरह से उनकी इस सफर की शुरुआत हुई। पूजा जी क्या कहेंगे आप?
1: मैं 2013 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी और वहां से मैंने प्रशिक्षण लिया। बचपन से ही खेतीबाड़ी और पशुपालन किया था तो सोचा क्यों ना मतलब कुछ ना कुछ किया जाए, अपने लिए तो हर कोई करता है। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को साथ लेके और उनके साथ मिलके कुछ काम करूं। और 2013 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में जाके 7 दिवसीय प्रशिक्षण लिया और सोया नट्स का हमने प्रशिक्षण लिया। फिर हमने काम शुरू किया, हमने स्वयं सहायता समूह बनाया। समूह बनाने के बाद जैसे ही हमने काम की शुरुआत की तो काफी सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन शुरुआत में जो दिक्कतें आती हैं उनके बाद तो आगे बहुत अच्छा मतलब काम हो जाता है। समूह में मिलके हमने जैसे ही सोयाबीन का प्रशिक्षण तो लिया, मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे जैसे बचपन से किसान भाई हैं, खेतीबाड़ी हमने भी की थी भाइयों ने के साथ मिलकर, तो क्यों ना हम उन्हीं चीजों को बना के मार्केट में दें ताकि हमारे किसानों का भी फायदा हो। जैसे कि आज हमारे मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय डबल होनी चाहिए। मेरा मानना है कि 2022 से पहले हम किसानों की आय डबल कर सकते हैं। जैसे बाजरे से हमने खिचड़ी बनाई, फिर बाजरे से हमने लड्डू बनाए और आज मतलब एक एनजीओ की हेल्प से बेकरी ऑन लगने की वजह से आज हम बाजरे के बिस्किट बनाते हैं, ज्वार के बिस्किट हम बनाते हैं, रागी चना मतलब कोई भी मोटा अनाज हमने ऐसा नहीं छोड़ा जिसके हमने बिस्किट नहीं बनाए।
0: जी बिल्कुल। तो फसल उत्पादन तक ही सीमित ना रहकर आप प्रसंस्करण करती हैं, मूल्य संवर्धन करती हैं जिसके चलते आय काफी अच्छी अर्जित होती है। और अगर ऐसी ही कदम हमारी अन्य महिला किसान भी उठाएंगी तो निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, उससे पहले ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। बस जरूरत है सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो विभिन्न संस्थान हैं उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको जानने की, उनको समझने की। जब जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, आप मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर इस लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द हो पाएगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर सुनेजा के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर सुनेजा, हमारी सरकार जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमारी महिला किसानों के लिए खास तौर पर कई तरह की योजनाएं भी चलाए हुए हैं और उससे उन्हें काफी फायदा भी मिल रहा है, तो किस तरह की योजनाएं हैं ये आप इस पर प्रकाश डालिए।
2: अदिति, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का ये लक्ष्य रहा है कि उत्पादन और उत्पादकता के साथ हम लोग ये सुनिश्चित करें कि मंत्रालय द्वारा लाभार्थी उन्मुखी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा महिलाओं तक तो अवश्य पहुंचना चाहिए। यद्यपि 80 के दशक में शुरुआत की गई थी महिला विशेष कार्यक्रमों से जिसमें कि केवल महिलाओं को फोकस करके वो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, लेकिन अब मंत्रालय का की ये धारणा है कि महिलाओं को कृषि की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इस तरह से महिलाओं को कृषि की मुख्य धारा में लाने के लिए सबसे पहले मंत्रालय ने नीतिगत निर्णय लिए। जो राष्ट्रीय किसान नीति बनाई गई उसमें 4 चीजों पर बल दिया गया। एक कि घरेलू और कृषि भूमि जो है उस पर महिलाओं के संयुक्त पट्टे जारी किए जाएं, किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएं, फसल और पशुधन की जो उन्नत पद्धतियां हैं वो महिला अनुरूप और महिला अनुकूल बनाई जाए और साथ ही कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं हैं उसको वो आजीविका के रूप में किस तरह से ले सकती हैं। इन 4 स्तंभों पर कृषि नीति में ये जिक्र किया गया है और उसी के आधार पर सरकार ने एक चहुमुखी रणनीति तैयार की है जिसमें सबसे पहला जो विशेष निर्णय है और रणनीति है वो ये है कि जितनी भी मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो मिशन हैं, जो योजनाएं हैं, उनमें कम से कम 30% धनराशि का आवंटन महिलाओं के लिए किया जाए। दूसरा स्तंभ और रणनीति ये है कि महिला समर्थित कदम उठाए जाए, प्रो वुमेन इनिशिएटिव दिए जाए, ताकि इन स्कीमों का फायदा अधिक से अधिक महिलाओं तक
0: पहुंच सके। जी बिल्कुल, बताएं।
2: तीसरा स्तंभ उन्होंने, मंत्रालय ने अपनी रणनीति में ये रखा कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाकर महिलाओं के, उन्हें उनका क्षमता निर्माण किया जाए, उनके कौशल ज्ञान में वृद्धि की जाए। और चौथा स्तंभ ये है कि जितने भी निर्णय लेने वाले निकाय हैं, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिसके आधार पर प्लानिंग की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, ब्लॉक एक्शन प्लान बनाए जाते हैं, उनमें महिलाओं का नामांकन और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो इन चार स्तंभों के अराउंड मंत्रालय ने अपनी रणनीति तैयार करके आज ये अचीव कर लिया है कि जितने हमारे कार्यक्रम हैं, लगभग एक दर्जन मंत्रालय के मिशन कार्यक्रम और किसान कल्याण के कार्यक्रम हैं, उनमें महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
3: जी हाँ, तो हमारी महिला किसान बहनों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाओं, अलग अलग प्रकार की रणनीतियों के द्वारा हमारी जो कोशिश की जा रही है कि हमारी जो महिला किसान है वह कैसे आगे आ सके, और इनका भी जैसे हमारे पुरुष किसान है वैसे उसी तरह के से हमारी महिलाओं को भी उतना सम्मान मिले, उतना उनको भी उन योजनाओं का जो है फायदा मिल सके। साथ ही किसान साथियों, कैसे हमारी जो महिला किसान है वह कैसे अपना विकास कर सकती है, इन्हीं सारी चीजों को आगे हम जानेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम के साथ।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, हम महिला किसान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: तो जैसा आपको विदित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहुंच मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है। हम हर गांव तक, हर हमारे जो कार्यक्रम है उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जितने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम है, राज्य सरकारों के सहयोग के साथ में इनका क्रियान्वयन बखूबी किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग महिलाओं को सीधी बहुत ज्यादा ताकत देने का प्रयास कर रहे हैं या उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्यों ना हो, जिसमें कि करीब 67% हमारी महिलाएं जो हैं आज ग्रामीण विकास विभाग के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको लाभ मिला है, लाभान्वित हुई है। उसी प्रकार से मनरेगा में भी आज हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी महिलाएं आज इस समय में, स्पेशली कोरोना के टाइम में, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मेजर इश्यू हो गया, तो हमारी महिलाओं को मनरेगा के माध्यम से भी बहुत रिलीफ मिली है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाएं सीधी भागीदारी कर रही हैं। मैं उनमें से कुछ प्रोग्राम्स के बारे में बोलना चाहूंगी मनरेगा में भी, क्योंकि कई हम लोग केवल इसमें ही विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ आज हमने एक काम किया और कल आगे बढ़ गए। हमारा प्रयास ये है कि हम सस्टेनेबल अथवा ऐसे कार्य ले जिनका की परिणाम दूरगामी हो। जैसे न्यूट्री गार्डन का एक प्रोग्राम हम लोग देते हैं, ना केवल जिसमें हम जो न्यूट्री गार्डन है या ऐसे फल पौधे लगाते हैं जिससे कि लोगों को आमदनी मिले, बल्कि एक इसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि हमारी महिलाओं को इसमें अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल सके। दूसरा, हम लोग कुएं बनाने का बहुत सारा काम करते हैं, वो इसलिए जिससे कि सिंचाई के स्रोत हमको उपलब्ध हो पाए। खेतों में काम करने का काम लिया जाता है मनरेगा में, जिससे कि उन्नत खेती हो सके। साथ साथ में बागवानी के अन्य कार्य भी लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम हैं, पशुपालन शेड बन रहे हैं जिससे कि लोग जो एनिमल हस्बेंड्री में या दुग्ध उत्पादन में अपने जो जानवर ले रहे हैं उनको सेफली रख सके। कुक्कुट पालन के लिए भी शेड्स बनाने का कार्यक्रम इन सभी योजनाओं में, इस योजना में रखा गया है।
3: जी बिल्कुल।
2: दूसरी तरफ में हमारा जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हम लोग सीधे सीधे महिलाओं के साथ में ही कार्य करते हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी पहुंच 7 करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ में है। हमारा सीधा सीधा कार्यक्रम उनके माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है। हम लोग स्वयं सहायता समूहों को तैयार करते हैं और स्वयं सहायता समूह एक ही गांव के एक जैसे लोगों के समूह होते हैं, जिसमें कि महिलाएं इकट्ठा होकर अपने दिनचर्या के बारे में बात करती हैं, अपने किस तरह से जीविकापार्जन बढ़ाया जाए उसके बारे में बात करती है। एक तरीके से स्कूल को संगठित करने का कार्यक्रम लिया गया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का ये कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले कई सालों में उनके समूहों को संगठित करने का बहुत अच्छा काम किया और अब हम आजीविका की ओर अपना ध्यान देकर जा रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक महिलाओं को जो हमारी

0: सके, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर भी कार्य कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगी, क्या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
1: मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगी कि पिछले 4-5 सालों से हम लोगों ने महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का प्रारंभ किया
0: जी।
1: और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए, कई राज्यों में इसकी परियोजनाएं ली गई और इस परियोजना के माध्यम से हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज ये कि हम इस बात को समझे या समाज इस बात को समझे कि महिलाओं की भागीदारी कृषि में बराबर की है और उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि 70% महिलाएं जो है वो एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर एज एन ऑक्यूपेशन के साथ में जुड़ी हुई है। तो हम लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग ऐसी प्रकार की खेती जिसमें की लागत कम हो, जिसमें की वातावरण को उतना नुकसान ना हो और इकोलॉजिकली जो साउंड प्रैक्टिसेस हैं हम वो उनको एडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी कृषि सख्या तैयार में हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, ऐसे लोग जो कि समुदाय से ही आते हैं, समुदाय के बीच में रहते हैं और समुदाय में जाकर कुछ ट्रेनिंग हम उनको देते हैं और फिर वो जाकर उस ट्रेनिंग को वहां पर रेप्लिकेट करवाते हैं या दूसरे लोगों को और ट्रेन करते हैं, जिससे कि ज्यादा ज्यादा लोगों को इन एग्रीकल्चर इकोलॉजिकली प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता लग पाए। तो ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का हमारा कार्य चल रहा है, इसमें कई महिलाएं हमारे साथ में, करीब 60 लाख महिलाएं हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई हैं और निरंतर जुड़ती जा रही हैं महिलाएं। जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया तो उसके साथ साथ में अब ये हुआ कि हम लोगों को कृषि विभाग के साथ में मिलकर कुछ और गतिविधियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो अब हम लोग का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है कि हम अपनी कृषि सखियों को और ट्रेन करें और ज्यादा अपनी महिलाओं को ट्रेन करें, दीदियों को ट्रेन करें, कृषि सखी बनाए, जो कि कृषि की जो बातें हैं, जो सूझबूझ की बात है कि किस प्रकार का बीज उपयोग किया जाए, किस प्रकार की खाद उपयोग की जाए, उसके बारे में उनको जानकारी हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात होती है, सॉइल टेस्टिंग की बात होती है, हम उनके साथ में मिलकर ये काम करें। एक इसमें बहुत अच्छा एक हमारा अनुभव रहा है, हम लोगों ने कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए, क्योंकि क्या होता है गाँव में जो हमारी दीदियां हैं उनके पास में इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स होते हैं लेकिन वो उनके पास में नहीं होते। तो कस्टम हायरिंग सेंटर हुआ, यानी कि गांव में एक ऐसा समूह बनाया गया जहां पर कि एग्रीकल्चर औजार या इम्प्लीमेंट्स रहें और लोग अपना इसको थोड़े से फीस के साथ में या किराए के साथ में ले जाएं, गांव में लोग इसका उपयोग करें। सो हमारी सबसे बड़ी भागीदारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पे शुरू हुई, उनकी जो एक आत्मा परियोजना है उसके तहत हम लोग फाइनेंसिंग इन स्वयं सहायता समूह को किया गया। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बहुत अच्छा काम हुआ है और आज जो ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स है वो रेवेन्यू अर्न करने की स्थिति में भी आ गए हैं।
0: लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन्हें इन तमाम नीतियों का या फिर कहें योजनाओं का सीधे तौर पर लाभ मिल सके, इसके लिए उन्हें किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: बहुत, ये तो सबसे बड़ा मूल मुद्दा यही है कि किस तरह से इन महिलाओं को बता सके कि ये योजनाएं हैं और अब आप इनका फायदा उठाए। इसमें दो चीजें, एक तो हम प्रोजेक्ट मोड में कर रहे हैं जिसमें कि हम नीचे जाकर इन महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, हम लोगों ने कुछ प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस भी बनाए, बड़ी कंपनियां बनाई है, करीब 6 कंपनियां हमने पहले आज से 2-3 साल पहले प्रवृत्त की थी जो कि सभी आज रेवेन्यू अर्न करने की स्थिति में आ गई है। 6 प्रोड्यूसर कंपनीज हमने इस साल भी प्रमोट की है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, जिसमें हमारी सब महिलाएं ही भागीदार है और आगे भी इस प्रकार की 40 तो बड़ी कंपनियां हम बनाने वाले हैं और इन कंपनियों में किस प्रकार का काम होगा, क्या प्रोडक्ट होंगे, ये इन महिलाओं के सहभागिता से हम लोग काम करें, मतलब कि ये प्रोजेक्ट मोड पे है। लेकिन जो हमारी आम महिलाएं हैं, आम बहनें हैं जिन तक हमें पहुंचना है, यानी हमारा उद्देश्य तो हर महिला तक पहुंचने का है, उनके लिए हमारे जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं, हमारे फार्मर ट्रेनिंग स्कूल्स जो विलेज लेवल पे, फील्ड फार्मर ट्रेनिंग स्कूल हम इनको बोलते हैं, हमारे कुछ आरसेटी के माध्यम से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हर जिले में है उनके माध्यम से हम प्रशिक्षण के कार्य ले रहे हैं और हमारा जो एक चैनल बना हुआ जैसे स्वयं सहायता समूह

0: होते हैं, 10-15 महिलाएं होती हैं, उसके ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, 10-15-20 के ऊपर एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, और फिर ऐसे ही 15-20 विलेज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, जो कि ज्यादा करके एक ब्लॉक में 2 या 3 होते हैं या कहीं पर एक भी है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये जो फेडरेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो विभिन्न चरण है या विभिन्न स्टेजेस हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस के, इनके माध्यम से ये हमारी एक बड़ी मजबूत कड़ी है। हम इनके तक पहुंचते हैं, हम इनको बातें बताते हैं और फिर वो नीचे कैस्केडिंग इफेक्ट से हमारी महिलाओं को हम लोग प्रशिक्षण देने के लिए प्रयास करते हैं।
1: अंतिम सवाल मैम आपसे करना चाहेंगे कि 15 अक्टूबर को निश्चित किया गया है कि महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाए, तो ऐसे में हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके मनोबल को बढ़ाने में ये कदम कितना कारगर साबित होगा, और इसके जरिए आप हमारी जो महिलाएं कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें किस तरह का संदेश देना चाहेंगी?
0: देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में, आज की स्थिति में, जब हम सभी लोग एक ग्लोबल पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, उस समय में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही ऐसी है जो कि किसी तरीके से खड़ी रही। आपको मालूम है ग्लोबल सप्लाई चेन्स हमारी ब्रेक हुई, लेकिन लोकल सप्लाई चेन्स ने उनको सप्लीमेंट किया। आज हम लोगों के पास में शहरों में जो भी चीजें आ रही है वो लोकल सप्लाई चेन से आना शुरू हुई। इसमें जो हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है, या प्रधानमंत्री जी ने जो एक अवधारणा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, उसमें हमारी सब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारा देश गांव में रहता है, हमारी महिलाएं अधिकांश, हमारे पूरी पॉपुलेशन का करीब करीब 69% 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। हमारी जो महिलाएं हैं जिनके लिए कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं, उनको ये भी देखा गया है कि आज की तारीख में कृषि पर बड़ी तरीके से निर्भर है। यदि कृषि पर हमारी निर्भरता है तो हमें जरूरत है कि आज जो बहुत सारे एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनका फायदा लेते हुए उन्नत कृषि की ओर, उन्नत या डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स लेकर, और दूसरा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, यानी कि जहां पर कि ना केवल गेहूं और चावल हो बल्कि दालें भी हो, वहां पर सब्जी भी हो, वहां कुक्कुट पालन भी हो, तो वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज हो। और सभी को शुभकामनाएं महिलाओं को हमारे 15 अक्टूबर के लिए।
2: किसान साथियों, जैसा कि ये अभी आपने जाना कैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारी जो महिला किसान है उन्हें अग्रणीय करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, साथ ही अलग अलग प्रकार के उन्हें सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है, तो हमें बस मेहनत करने की आवश्यकता है, हमारी महिलाओं का हमें मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है और उन्हें आगे करने की आवश्यकता है। जो भी कार्य वो लोग कर रहे हैं उसमें हमें पूर्णतः उनके सहयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटिया व्हील 90.8 FM के साथ।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टंटिया व्हील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, हम ब्रेक पर जाने से पहले लगातार चर्चा कर रहे थे किस तरीके कैसे हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें अग्रणीय करने के लिए अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, एनजीओस के माध्यम से यह प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी जो महिला का जो सशक्तिकरण है, क्योंकि हमारे ग्रामीण महिलाओं के का जो मूल आय का स्रोत है वह कृषि है, तो इसमें अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता राशि की मदद से उन्हें आगे लाने के प्रयास चल रहे हैं। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: हमारे संस्थान की प्रमुखता रही है, जैसा कि मेरे सुनेजा मैडम ने बताया, कि जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और फार्मर कल्याण मंत्रालय है
3: जी।
2: तो हमारे संस्थान का ये है कि जो नीतियां निर्धारित होती हैं केंद्रीय सरकार से, उसको उन सारी नीतियों को हम लोग मूर्त रूप देते हैं गांवों में जाकर के किसानों के खेत पे उनके साथ भागीदारी करके। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा संस्थान में एक सही विंडो सिस्टम है, हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो हर क्षेत्र के माहिर हैं और वो किसानों के खेतों पे गांवों में जाकर के उनकी समस्याएं को खुद उनसे बातचीत करके लेके आते हैं और समस्याएं प्राप्त होने के बाद फिर अपना वो शोध कार्यक्रम बनाते हैं। उसके बाद शोध कार्यक्रम में हमारी प्राथमिकता ये है कि जो उनकी समस्या है उसको सोल्यूशन मोड में, कि हमको 2 साल में या 3 साल में उनको कोई सोल्यूशन देना, जिससे कि वो कृषि की धारा में मुख्य रूप से जुड़ पाए। और मैं अभी भारत सरकार की बात करना चाहूंगा तो ये ICR की, तो ICR एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी नेशनल लेवल पे कृतज्ञ कृषि तकनीकी ज्ञान की एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये नेशनल लेवल पे है और जिसमें ये संस्थान को भी मौका मिला है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में एज ए मेंबर। तो इसमें पार्टिकुलरली ऐसी चीजों को ध्यान दिया जाएगा जो महिलाएं खेती किसानी में काम करती हैं और उनकी जो ड्रजरी है, कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़े और जो ड्रजरी है उनको काम करने के टाइम में जो उनको दुख तकलीफ होता है वो कैसे कम किया जाए। तो ये 5 जोन पे ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और उसमें फिर नेशनल लेवल पे इसमें अवार्ड की भी व्यवस्था की गई है और इसमें जो प्रथम पुरस्कार है 5 लाख रुपए का है, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का है और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का है और इसका जो घोषणा होगी ये 1st week of December में होगी। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था और उन्होंने अपने किसी संबोधन में आह्वान भी किया है कि हमारी कृषि में प्रमुखता ये होनी चाहिए कि महिलाओं की जो ड्रजरी है उसके लिए कौन कौन से तकनीकी ज्ञान है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो उनके कठिन कठोर साध्य क्रम को कैसे कम किया जाए।
3: तो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें कई तरह की सहूलियतें, यहाँ पर कहें कि आर्थिक रूप से भी सहायताएं मुहैया कराई जा रही है। शुरुआत में आपने जिक्र किया कि यंत्र जो हैं हमारी महिलाओं की आसानी के लिए बनाए गए हैं, उनको दिए जाते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकें। क्या इसके लिए भी किसी तरह की सब्सिडी दी जाती है?
4: हाँ, इसकी भी सब्सिडी है और हमारा एक ICR का एक इंस्टीट्यूट है सिफिट, वहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं जो मतलब लो कॉस्ट भी हैं, उनमें से कई लो कॉस्ट भी हैं और जो जिनकी कीमत अधिक है उसके लिए भी सहायता सरकार से मिल सकती है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के को तो इस तरह की सब्सिडी मिलती है सरकारी संस्थाओं द्वारा।
3: जी बिल्कुल, तो हमारी महिलाओं को यहाँ पर अनुदान राशि भी दी जाती है ताकि हमारी महिलाएं तमाम तरह की जो कृषि संबंधित यंत्र हैं वो आसानी से ले सकें और उनका इस्तेमाल करके कृषि के कार्य और आसानी से कर सकें। इसी के साथ

0: बढ़ते हैं आगे और पूजा जी का रुख करना चाहूंगी। पूजा जी, खेती किसानी का कार्य करें या फिर हम बात करें महिलाओं को कृषि के से संबंधित व्यवसायों में कार्य करने की ही, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं महिलाओं के सामने, इसके बारे में आप जिक्र करें ताकि आपके अनुभव हमारी महिलाएं सुन सकें।
1: जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, परेशानियां तो उनको आएंगी, क्योंकि वो गांव से जब बाहर निकलती हैं, एक तो वो घूंघट पर्दे में होती हैं और पर्दे से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, लेकिन निकल जाती हैं महिलाएं, और निकलना पड़ेगा उनको, क्योंकि आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए यही मतलब एक अच्छा मौका है। वो स्वयं सहायता समूह से जुड़े, और जैसे हमारी महिला किसान हैं, वो खेती बाड़ी में जो भी चीजें पैदा करती हैं उनको मूल्य संवर्धन करके मार्केट में दें, तो किसानों को मेरी हिसाब से मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही उनको मतलब रैली वगैरह में जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से
0: जी।
1: तो क्यों ना महिलाएं समूह में जुड़ें और काम करें।
0: आइए बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सुनेजा का। डॉक्टर सुनेजा, अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, अगर हम खासतौर पर यहाँ पर बात करें या फिर साथी जो संबंधित व्यवसाय होते हैं जैसे पशुपालन वगैरह है, इसमें ज्ञान और कौशल के लिए वित्तीय जो हमारी व्यवस्था है उसके लिए क्या किया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा?
2: महिलाओं को कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सहायक धंधे, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, इन सब विषयों के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए और वो वित्तीय सहायता विभिन्न स्कीमों में दी जा रही है कि उसका फायदा वो उठा सके, उसके लिए सरकार की एक आत्मा नामक एक योजना है जिसको कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है, आत्मा के नाम से बेहतर जाना जाता है। ये सब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक हिस्सा है। इस योजना में चूंकि महिलाओं की हर राज्य में, हर जिले में एक अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग तरह की उनको जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए, इसलिए एक महिलाओं की जो एक समर्पित पद, महिला समन्वयक का पद 2014 में जब मोदी सरकार ने आत्मा स्कीम का संशोधन किया था उसमें ये विजन किया गया था, ताकि उस राज्य में, राज्य के हर जिले में और जिले के हर ब्लॉक में महिला विशेष समस्याओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। इसी के साथ साथ महिलाओं की क्या जरूरतें हैं ब्लॉक स्तर पर, उसको कार्य योजना में शामिल करने के लिए जितनी भी ब्लॉक स्तर पर फार्मर एडवाइजरी कमेटीज बनाई गई हैं, उसमें कम से कम 30% महिलाओं का नामांकन और भागीदारी आवश्यक है। किसी राज्य सरकार को तब तक वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक इस आत्मा स्कीम के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व इन समितियों में नहीं होता। जब महिलाएं कार्य योजना बनाने में शामिल होती हैं, तो वो अपनी प्रशिक्षण संबंधी, अपनी ऋण संबंधी और उनकी जो सूचना संबंधी जितनी भी जरूरतें हैं उनको वो बकायदा बता सकती हैं, उस कार्य योजना में शामिल करा सकती हैं। इसी आत्मा के जरिए सरकार के जितने मिशन और उप मिशन है, जैसे खाद्य सुरक्षा मिशन है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स ऑयल पाम है, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन है, पौध संरक्षण उप मिशन है, एग्रीकल्चर स्कीम ऑन मार्केटिंग है, तो उस स्कीमों में जो विशेष सब्सिडी महिलाओं को दी जा रही है जो पुरुषों से अधिक है, उसका फायदा भी उठाने के लिए आत्मा के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और आत्मा के महिलाओं की जानकारी
0: जी बिल्कुल, तो महिलाओं तक जानकारियां यहां पर पहुंचाई जा रही हैं और हम कहें यहां पर वित्तीय सहायता की तो महिलाओं को ये भी प्रदान की जा रही है ताकि वो स्वावलंबी हो सके। और ऐसे विषय में मैं डॉक्टर श्रीवास्तव से जानना चाहूंगी। डॉक्टर श्रीवास्तव, महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने में राज्य सरकारों के योगदान पर आप प्रकाश डालें।
3: ये मैडम बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि केंद्र सरकार जो काम करती है या केंद्र सरकार के जो संस्थान काम करते हैं, बिना राज्य सरकारों के सहयोग से किसान महिलाओं तक पहुंचना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसको लेकर के आए, जैसे मैं बात कर रहा था कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान, उसमें पूरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन जो है उनको हम अपने संस्थान में लाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देने के लिए हमको ये शेड्यूल कास्ट प्लान के अंतर्गत महिलाएं कहाँ से मिलेंगी, तो हम राज्य सरकारों के साथ संपर्क करते हैं ब्लॉक लेवल पे और उनके पास एक शेड्यूल कास्ट का पूरा लिस्ट बना रहता है, वहां से हम सिलेक्ट कर लिए और उनकी जो समस्या होती है 20-20 के ग्रुप में हम समस्या वाइज उनको अपने संस्थान में बुलाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और उनका जो क्रिटिकल इनपुट है, जो उनको बहुत जरूरत है जिसकी वजह से वो अपने इनकम को दोगुना कर पाएंगे, उसको हम उनको क्रिटिकल इनपुट 100% देते हैं। और जहां तक सब्सिडी की बात है तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी ज्ञान है, इसको हम राज्य सरकार के साथ साझा करते हैं। हमारे यहाँ जो ऑलरेडी एक हर महीने में एक बैठक होती है स्टेट लेवल रिसर्च एंड एक्सटेंशन कमेटी की एक मीटिंग होती है, जिसमें राज्य सरकार के सभी उच्च पदाधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, वाइस चांसलर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होते हैं, प्लस ICR संस्थान के सभी निदेशक होते हैं या वैज्ञानिक होते हैं। तो उसमें यह चर्चा होती है कि आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तकनीकी है, जो स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी कमेटी को हम लोग जिस शोध संस्थान के माध्यम से देते हैं और स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी कमेटी उसमें से सिलेक्शन करके, वैलिडेशन करके, टेस्ट करके अपने यहाँ उसको रिकमेंडेशन में, पॉलिसी एंड प्रोग्राम में डालती है और उसके बाद कितनी सब्सिडी किस चीज पे दी जाएगी वो स्टेट डिसाइड करता है। और इस तरह से सब्सिडी मिलने के बाद वो टेक्नोलॉजी ग्रास रूट लेवल तक महिलाओं तक पहुंच पाती है। तो मैडम, ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है, उसके बिना, योगदान के बिना हम लोग सीधे गांव तक पहुंच नहीं सकते हैं। या टेक्नोलॉजी या तकनीकियां हमारी कुछ हद तक तो पहुंच पाएंगी थोड़ा सा बोलने के लिए, लेकिन जहां तक आत्मनिर्भर भारत की बात है या डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात है, तो हमको केवल 10-20 लोगों का नहीं करना है, पूरे देश के लिए करना है, पूरे देश की 50% महिलाओं के लिए करना है। तो हमें बहुत ही जरूरी है कि हम स्टेट के साथ अपना कोलैबोरेशन बनाएं और उनके माध्यम से ही हम ग्रामीणों तक पहुंचे।
0: जी, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं ताकि जमीनी स्तर पर जो तकनीकों की जानकारी है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके और न केवल हमारे किसान बल्कि हमारी महिला किसान भी यहां पर आत्मनिर्भर बन सके।
4: जी हाँ, न केवल किसान बल्कि हमारी जो महिला किसान है वह कैसे सशक्त बन सके। महिला किसान सशक्तिकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है, साथ ही प्रशिक्षणों के माध्यम से भी हमारी जो महिला किसान है उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण देकर कैसे अपनी कृषि में वह बदलाव ला सके, साथ ही कृषि में जो उन्नत कृषि है उसे कैसे किया जा सके और जो महिला, जो हमारी महिला किसान है उनको आगे करने के लिए हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो भी जोरों शोरों से लगा हुआ है। तो किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडा भील 90.8 FM के साथ छबवा की आवाज पर।

0: ना कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूँ धान का खेती करता हूँ। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेती बाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, हमारा यह हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हमारा जो किसान है उसकी आजीविका सशक्त हो, हमारा किसान खेती में नई से नई तकनीकों को सीखे, साथ ही उन्नत कृषि कैसे कर सके आदि जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी यह पहल कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आजीविका को सशक्त बनाने की एक पहल है। किसान साथियों, हमारे पूर्वज पहले से ही कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कृषि को पुनः एक नवीनतम उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो किसान साथियों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी दिन प्रतिदिन जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वो बदलती जा रही है, प्रकृति में बदलाव आते जा रहे हैं और हमारा जो किसान है उन्होंने रासायनिकों का हमने अंधाधुन प्रयोग के माध्यम से कहीं कहीं पर इसके काफी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर जरूरत है हमें एक बदलाव की और परिवर्तन के साथ प्रकृति के साथ मिलकर हमें कृषि करने की आवश्यकता है। तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी कृषि कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान साथियों, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो आजीविका के स्रोत हैं, जो हमारे आसपास ही हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उन सब बिंदुओं पर हम नज़र डालते हैं और सोच और देखते हैं कैसे मधुमक्खी पालन के माध्यम से, मछली पालन के माध्यम से, फूलों की खेती करके, वनस्पति की खेती करके और अन्य खेती के माध्यम से भी हम कितने अच्छे मुनाफे ले सकते हैं। जो हमारा पूर्वज था वह सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न फसलों की ही खेती करता था, लेकिन आज का किसान औषधीय पौधों की हम खेती करना शुरू कर दिए हैं, साथ ही हमने मत्स्य पालन शुरू किया है, कुक्कुट पालन शुरू किया है और भी अन्य खेती के बहुत सारे ऐसे साधन है जिनके मदद से हमने हमारी खेती में एक नए बदलाव को महसूस किया है। तो किसान साथियों, हमारा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा किसान है वो भिन्न भिन्न और उन्नत कृषि करे और हम अपनी कृषि में नए बदलावों को करे, नए बदलावों को देखे, सीखे और अपने साथी किसान साथियों को भी बताए और हम हमारे एक्सपर्ट की राय से भी हमारी कृषि में एक उन्नति ला सके, एक नवीनता ला सके।
9: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वाते खेती ना बारा मा अने કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો. ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.
8: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन को लेकर और देसी गाय की किस्मों को लेकर. हमें कैसे इनका रखरखाव करना है, क्या इनके लिए कैसा प्रबंधन करना है, साथ ही हमें किन किन बातों में इनका ध्यान रखना है और कैसे हम इसमें इनका ख्याल रख के हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सके. तो आइए शुरू करते हैं.
10: जैसे बात करते हैं अधिराज जी, अब जैसे कि हम देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एक आम किसान, एक पशुपालक की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है?
11: देखिए, यह हम बताएंगे कि देसी नस्ल जो हम बोलते हैं, पहले क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्ल को यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, पर अभी हमने ये देखा है कि देसी नस्ल भी हमारे उतने ही अच्छे दूध दे रहे हैं, उनके गुणवत्ता भी बहुत अच्छा है. तो इसलिए भारत सरकार का ये योजना है कि कैसे देसी नस्ल का संवर्धन किया जाए और उसका कैसे भी डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ये दोनों का किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है. इनको अगर देखेंगे कम लागत में इनसे ज्यादा हमें फायदा मिल सकता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, 2014 से चल रही है, जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताते हैं. उस योजना के तहत देसी नस्ल का संवर्धन किसानों को कैसे पहुंच सके, ये योजना हम चला रहे हैं.
10: जी बिल्कुल. और देखिए, एक समय था जब हम क्रॉस ब्रीड का काफी हमारे जो किसान थे, पशुपालक थे, डेयरी से जुड़े जो हमारे पशुपालक थे, उनमें क्रेज रहता था. लेकिन अब जिस तरीके से सरकार देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रही है, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की ओर हम रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में देसी गायों की भूमिका या फिर कहें उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है.
8: इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है और उनकी मदद से हम कैसे हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं, हमारी कृषि को बेहतर बना सकते हैं. तो आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर.
12: पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है. पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है. इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है. इतना ही नहीं, दूध उत्पादन और मांग में संतुलन के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं. व्यवसायिक फार्म प्रबंधन और बढ़िया पोषाहार के जरिए भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की काफी संभावनाएं हैं. ऐसे में देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी. केंद्र सरकार ने 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी. इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है. इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है. इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है. इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है. योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है.
10: लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और देसी गाय संरक्षण और संवर्धन को और गति दी जा रही है. चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मुर्गी पालन. डॉक्टर पंकज, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मुझे समझ आता है और जैसे एक्सपर्ट से बात हुई मेरी, तो बीते इन दो सालों में कोरोना काल में काफी इससे सेटबैक रहा, मतलब काफी नुकसान हुआ मुर्गी पालकों को. अभी मौजूदा स्थिति क्या है?
13: जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो एक बहुत नाजुक व्यवसाय है और जैसा कि आपने कहा और सत्य भी है कि विगत कोरोना काल में शुरुआती तौर पे इस मुर्गी को ही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण मान लिया गया था, जो तथा कदापि उचित नहीं था और ना तथ्यों से भरा हुआ था. सब तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के कारण जो हमारा मुर्गी का उद्योग था, जो मुर्गी पालन का उद्योग था, उसको काफी बड़ा सेटबैक रहा। और लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 25,000 करोड़ का भारतीय जो हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय था उसको नुकसान हुआ था। धीरे धीरे जब लोगों में समझ बढ़ी और उनको पता चला कि ये एक पौष्टिक और संतुलित प्रोटीन का सोर्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो अगले 3 महीनों में इस उत्पाद की खपत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ी। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले कि लोग तेजी से स्वस्थ होते गए और अपना पुराना जो विगर था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी मुर्गी पालन जो है काफी एडवांस स्टेज पे है। अगर आप पुराने 70 के दशक की बात करें तो हम इस मुर्गी को पिछवाड़े में पाले जाने वाले एक बर्ड के रूप में जानते थे जिससे कुछ अंडों की प्राप्ति होती थी। 80 के दशक में हमने ये जानना प्रारंभ किया कि एक और प्रजाति मुर्गी की विकसित हुई जिसे ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं और ये मांस उत्पादन की दृष्टि से पाली गई। और उसके बाद 90 का दशक आते आते धीरे धीरे इसके प्रसंस्करण और इसके प्रोसेसिंग पर भी विचार किया गया और अब जो हमारा एरा चल रहा है वो एक क्वालिटी एग और मीट को डिलीवर करने का है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो वो 70 के दशक से आज की अगर हम तुलना करते हैं तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है कई सैकड़ों गुना बढ़ा है। वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 3रा स्थान है। जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो दूसरा स्थान है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और भारत में भी अगर आज की तारीख पे हम देखें तो लगभग जो अंडे का उत्पादन है वो 122 बिलियन अंडा है, जो लगभग जो दूसरा स्थान है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बहुत करीब है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लें।
14: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर पंकज कि ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए हमारे जो मुर्गी पालक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर एक मुर्गी में दिखाई दिया तो बहुत जल्दी उसे कदम उठाने की जरूरत होती है। टीकाकरण को कई बार लेकर के हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो उतने संजीदा नहीं रहते, उतना ध्यान नहीं देते, उससे भी बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो जैसा कि हमें डॉक्टर पंकज बता रहे कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही सुखद है और इसमें लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र में। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
12: अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
8: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी को लिया है कैसे हमें मुर्गी पालन के जो मुर्गी पालन करना चाहता है जो किसान उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा खुले में उन्हें रखना चाहिए, साथ ही उनके लिए जो रात में बल्ब की सुविधा होना चाहिए, उनके लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मुर्गी पालन से जुड़ी हुई और गाय से जुड़ी हुई।
14: अधिराज, जैसे कि हम देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझे और इसमें हमारे किसान किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें किस तरीके से लाभ भी होगा ये भी बताएं।
11: देखिए ये बता सकते हैं कि अभी भारत में जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो देसी नस्ल अगर गायों का हम देखेंगे तो लगभग 50 देसी नस्ल गायों के हैं और 17 देसी नस्ल जो भैंसों के हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर दूध की बात करते हैं, अगर गाय जो किसान भाई पालन करना चाहते हैं तो देसी नस्ल जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, इस तरीके के जो नस्ल हैं ये अच्छे दूध देते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस भी ये है जो कि उनके कम मतलब उनके रोग लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे संकर जाति हैं या विदेशी नस्ल के हैं। तो उससे क्योंकि ये हमारे और हीट टॉलरेंट भी हैं जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं और कम लागत में अच्छी तरह इसका दूध भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और गुणवत्ता भी इस दूध का भी बहुत अच्छा है बहुत सारे स्टडीज में।
14: और ये भी इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, पोषक तत्वों से भरपूर है देसी दूध, देसी गाय का दूध। और अब देखिए इसका बाजार भी काफी विस्तार लेता जा रहा है कि उपभोक्ता भी मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार है। तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा बाजार खुल रहा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं।
11: जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम आपको बताना चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो चलाई गई है 2019 से शुरू गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत हर हमने लगभग 600 जिले लिए थे देश के जहां पे ये जो आप बोल रहे हैं देसी नस्ल के गाय का जो सिमन होता है उसको उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रावधान किया गया है जो कि निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि हमारे एआई टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर पहुंचेंगे, कहीं पे भी होता है आप निकटतम
14: जी। लेकिन डॉक्टर अधिराज, इनका सवाल था वो यही कि अच्छा वीर्य मिले कहां से?

0: जो देसी बछड़े का हो तो इसके लिए कहाँ संपर्क करें? कई बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पशुपालकों को भी कैसे पता चले कि हाँ वो जो चाहते हैं जो करना चाह रहे हैं वही है?
1: देखिए सारे राज्यों में ये हमारे जो सीमेन स्टेशंस हैं, सीमेन स्टेशन से अच्छी देसी नस्ल के जो सीमेन बनते हैं तो वो सीमेन सारे राज्यों को सप्लाई किया जाता है और सारे राज्यों का निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहाँ से संपर्क कीजिए और जो एआई टेक्नीशियन है जो आपके घर में आके कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उनसे संपर्क कीजिए और जो नस्ल के आपको चाहिए वहाँ पे अवेलेबल किया गया है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि रीजन वाइज भी हमने कुछ किया है जो कि अपने स्टेट का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई कोई स्टेट अपने जो देसी नस्ल चाहिए उनके राज्यों के लिए जो उनके राज्यों के लिए सही हो सकता है उस हिसाब से किया गया है।
2: जी हाँ किसान भाइयों, अगर हम आप में से कोई किसान साथी देसी गायों का पालन करना चाहता है कि वो गर्भाशय कराए तो अपने पास के केवी की केंद्र में हम संपर्क कर सकते हैं और ये भी अभी हमें मिल सकता है। अभी इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका शुभारंभ कर चुके हैं। हमारे देसी गाय का जो दूध हो सकता है कि थोड़ा कम जरूर देती है लेकिन उसमें जो गुण है वो काफी उच्च गुण है उनमें। तो किसान साथियों, हमारे में से काफी किसान साथी देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, उसकी महत्वता को जानते हैं, समझते हैं और इसे पालते भी है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी देसी गाय का घी तुलनात्मक बाकी घीयों की तुलना में काफी महंगा मिलता है और अधिकतर तो ये मिलना अभी दुर्लभ हो चुका है क्योंकि अधिकतर लोग जर्सी गाय ही रखते हैं, लेकिन देसी गाय का घी जो होता है काफी गुणकारी होता है, ये बात हमारा किसान अच्छे से जानता है और ये काफी दुर्लभ है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे देसी मुर्गियों की तो देसी मुर्गी का अंडा भी काफी गुणकारी माना जाता है और यह भी काफी दुर्लभ होता जा रहा है। किसान साथियों, यहाँ पर हम आइए लेते हैं एक्सपर्ट से राय कि अगर कोई देसी मुर्गी का पालन करना चाहता है कोई किसान साथी तो कैसे कर सकता है। हाँ, हमें हमारे पास के किसान साथियों से ये मिल जाता है लेकिन क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या अन्य संस्थाओं पर क्या इसकी उपलब्धता है या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
3: मुर्गी पालन की लगभग सारे ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें तो मुर्गी पालन दो प्रकार का होता है, एक वो जो हम घर के पिछवाड़े पे पालते हैं जिसको हम कहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री, और दूसरा जो बहुत एडवांस स्टेज पे हम मुर्गी को पालते हैं और आजकल वो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग लेते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप कम संख्या में मुर्गी को पहले पालने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संसाधन आपको कितने आवश्यक हैं उन संसाधनों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। अगर मीडियम स्तर पर या बीच वाले स्तर पर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आपको खासकर धन के क्या स्रोत होंगे और आपके पास क्या संसाधन हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए और फिर नस्ल का चयन करना चाहिए कि आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं या मांस उत्पादन वाली मुर्गी पालना चाहते हैं या मुर्गियों की अन्य नस्लें जो इस देश में उपलब्ध हैं उनको पालना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जापानी बटेर भी है, हमारे पास चीनी मुर्गा या गिनी फाउल भी है, हमारे पास टर्की भी है, तो आप किस प्रकार की मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना होगा और संसाधनों के जो आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास धन की उपलब्धता है उनके आधार पर सामान्यतया विशेषज्ञों की यह सलाह होती है कि आप पहले छोटे स्तर से इस कार्य को प्रारंभ करें और जैसे जैसे इस कार्य में आप निपुण होते जाएं आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं, तो ये पूर्णतः आपका चयन होगा। जहां तक आप थोड़ा बैकयार्ड से और मीडियम स्केल से प्रारंभ करेंगे तो उचित होगा। अंडा देने वाली अगर मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं, और जो मांस उत्पादन वाली मुर्गी है ब्रॉयलर उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं, पर ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो विचार है वो क्या है, आपके संसाधन क्या हैं और आपके जो धन का या पूंजी का स्रोत है वो क्या है, और उसके साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये भी होता है कि आपका जब उत्पाद बाजार में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके विपणन की व्यवस्था क्या है, ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें कि कम से कम लागत से ज्यादा मुनाफा उठा सकें और उसके अनुरूप कार्रवाई करें।
0: जी।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही हमारी देसी गायों की नस्ल है उसके गुणों को। तो किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
1: कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हमारे कोई कुछ सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो सूरतगढ़ में है, जहां पे थारपारकर ब्रीड आपको अवेलेबल हो सकता है, वहां से आप संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप निकटतम जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, जहां पे अच्छे किसान होते हैं जो ये फार्म अच्छा खोलते हैं, वहां से भी आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत और एक योजना भी चल रहा है जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अभी ये प्रावधान किया गया है कि जो 200 गाय या भैंस रख के, मिनिमम 200 रख के अपना फार्म खोलना चाहते हैं, उधर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ की सब्सिडी है, वो भी फार्म्स जहां पे एस्टेब्लिश हो गए हैं वहां से आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, तो अभी आप समझ चुके हैं कि कहां से आप देसी नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: कि कौन सी नस्ल अच्छी देती है, तो अगर हम दूध की बात करें तो गिर जो कि बहुत अच्छी है उसको हम रख सकते हैं, साहिवाल एक ब्रीड है जिसको भी हम पाल सकते हैं, और इसके अलावा रेड सिंधी भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं जो कि दूध देने वाले नस्ल हैं, ये अच्छे दूध देते हैं। और इसका भी अगर आपके पास कोई भी अपने घर में गाय है तो उसको भी, उससे भी आप अपना यही ब्रीड निकाल सकते हैं। अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, इस जो सीमेन अवेलेबल होता है इससे करवाइए और आपके घर में भी ये अच्छी पैदा हो सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: के गर्भधारण नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी हम आपको कुछ साधारण उपाय बताते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो एक है उसका बॉडी वेट कितना हुआ, अगर सफिशिएंट बॉडी वेट बन गया है तो गर्भधारण कर सकता है। उसके अलावा ये भी देखना है सफिशिएंट अगर प्रोटीन का मात्रा अगर सही है उसके जो आहार में प्रोटीन का मात्रा सही है उसको आप देख सकते हैं। कुल्थी भी दे सकते हैं उसके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर देखेंगे कोई इन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये पहली बार आपको इसके लिए कर रहे हैं तो इसके एक इन्फेक्शन का चांसेस नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कुछ कमियां रहते हैं जैसे ओवरी का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ होगा, उसको दिखाने के लिए एक बार आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिए, वो एक बार आपके पशु का जांच करवा लें और जांच करने के बाद वो कुछ उपाय बता सकते हैं जो कि मेडिसिन मिलते हैं जो कि प्रॉपर उसका गर्भधारण करवा सकते हैं। इसके अलावा छोटे से कुछ भी चीजें होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, अगर कीड़े भी हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो भी आप एक बार उसका फीकल सैंपल जांच करवा लें और कीड़े अगर हैं या नहीं तो प्रॉपर जांच करवा के एक बार देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये सही हो जाएगा क्योंकि गिर नस्ल बहुत अच्छा है तो कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: सामान्यतः हमारे यहाँ जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन है फी वृहद स्तर पर देखा गया है और लोग कर भी रहे हैं, तो क्या ग्रोथ ज्यादा होगी या उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी? तो शांत जी, मेरा एक आपको मशविरा है कि जो ये पक्षी है, जो ब्रॉयलर है, वो ब्रॉयलर पहले जो 2 महीने में बाजार जाने के लिए तैयार होता था, अब उस वृद्धि को वो 28 दिन में प्राप्त कर लेता है, 1 किलो से 1.5 किलो हो जाता है। सो प्रतिदिन उसकी आहार व्यवस्था बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसमें उसको बहुत ही संतुलित आहार देना होता है। और खासकर जब उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उस समय पे हमको उसको स्टार्टर राशन देना होता है। जब वो बड़ा हो चुका होता है तो और बाजार में जाने के लिए तैयार होता है तो फिनिशर राशन देना होता है। सामान्यतया इसका जो हम लोग चयन करते हैं वो पहले 4 हफ्ते स्टार्टर राशन और उसके बाद फिर हम लोग फिनिशर राशन देते हैं। इसको कई जगह पे खासकर जो नए नीति बन रही है, जो लोगों के नए फीडिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं, उसके अनुसार 3-3 हफ्ते में इसको बांट दिया गया है। पहले प्रथम 2 सप्ताह हम उनको स्टार्टर राशन देते हैं और उसके बाद फिनिशर राशन प्रारंभ कर देते हैं ताकि मुर्गी में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि दर हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मांस का उत्पादन हो और बाजार में जाते समय उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। रही बात ग्रोथ प्रोमोटर की, तो आजकल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीके के होते हैं। इस स्तर पर इसको समझना बूझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमारे देश में 2-3 समस्याएं इस समय चल रही हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यू की प्रॉब्लम है और कई ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु संतुलित भोजन के सबसे ज्यादा आवश्यक है और उसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन को संतुलित रखते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर की आपको आवश्यकता होती ही नहीं है।
2: जी जी।
4: और दूसरा, अगर आप पक्षी को एक सामान्यतया स्वस्थ वातावरण में रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सामान्य तरीके से आप पाल सकते हैं। किंतु हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, आपका आहार पक्षी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा तो आपको पक्षी में वृद्धि दर नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी का चुनाव जो उसका जर्म प्लाज्म है वो बहुत अच्छा हो और दूसरा उसको जो आप फीड देते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और संतुलित हो।
2: जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अजय की, माफ कीजिएगा डॉक्टर पंकज की, जो अगर आप संतुलित आहार देते हैं तो वैसे ही आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मुर्गियों को संतुलित आहार दें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: जरूर उपयुक्त रहेगा। देसी नस्ल की बात, हम गाय की नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हमारे एरिया के ही हैं, तो इसको हम पालन कर सकते हैं। और जरूर आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप मतलब दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो गिर रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं, उसमें कुछ दुविधा नहीं होगी। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और भी योजनाएं शुरू की गए हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो कि IVF भी आप करवा सकते हैं अपने जो भी घर में पशु है, जो गाय है, उसका IVF आप करवा के गिर या एक साहिवाल हो या जो भी आप भैंस का भी चाहते हैं, मुर्रा चाहते हैं, जहां भैंस रखते हैं लोग, तो वो भी आप उसका फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की एक सब्सिडी भी रखी गई है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप देसी गाय अगर आप पालना चाहते हैं या फिर डेयरी लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल ही होती है तो बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर पंकज आफिस बचना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए लेकिन जो मुख्य सवाल थे उन पर अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। तो जो नए हमारे मुर्गी पालक हैं अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं तो आपने ज्यादातर हमारे किसानों को ये बताया कि कम से शुरुआत करें, मुख्य बातें कौन कौन सी होती जिसका ध्यान रखना चाहिए?
4: देखिए, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आप अपनाना चाहें तो मुख्य मुख्य बातें हमने कर ली कि हमें सबसे पहले अपने जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद अपने संसाधनों को तलाशना चाहिए और अपने पूंजीगत व्यय जो आप करने की स्थिति में हैं उसका एक असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी और मुर्गी से पाए जो प्राप्त होते हैं उत्पाद वो सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, उनको लंबा समय तक आप स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उनको तुरंत मार्केट में भेजने के लिए विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एक बहुत चुस्त तंदुरुस्त होनी चाहिए। तो शुरुआती तौर पर हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटे स्तर से इस व्यवसाय को प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ आगे पीछे या नफा नुकसान भी होता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, आप दोबारा से उस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। और जो मात्रा प्रोडक्ट की आपके पास होती है

0: की कमी को दूर कर सके। ऐसी तमाम गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से एक बार फिर उनकी कार्य प्रणाली को पटरी पर लाया जा सकता है। लगभग 2 वर्षों की इस दूरी को पाटने के लिए हमें गंभीर होने की सख्त आवश्यकता है, अन्यथा हम एक ऐसी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ को अंजाम दे देंगे जो हमारे देश का भविष्य है।
1: हंसो मत, बोलो।

आइए किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी। वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफें किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की बीमार पड़ गई। उसको स्किन प्रॉब्लम हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह से देखकर उसके मन में बहुत डर समाने लगा कि यदि वो बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और उसकी नफरत वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म करके जब वो घर लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी दोनों आंखें चली गईं। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता गया और चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी पूरी खूबसूरती गंवा दी और वो बेहद बदसूरत हो गई। लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उसे वैसे ही प्यार करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी की मौत हो गई और वो अकेला रह गया। वो बहुत दुखी था और शहर छोड़कर चले जाने का विचार बना रहा था। उसने पत्नी की अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधियां पूरी की और शहर छोड़कर जाने लगा तो तभी एक आदमी ने उसे पीछे से पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तक तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त मैं अंधा नहीं हूं, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूं तो वो परेशान हो जाती और ये उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द दे देता। इसलिए मैंने इतने सालों तक अंधे होने का नाटक किया। वो बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, क्या सबक मिलता है इससे? खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों की तरफ से आंखें बंद कर लेनी चाहिए, उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, खुश रहना चाहिए और खुश रहने देना चाहिए। ठीक है ना? फिर मिलते हैं दोस्तों।

तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों से और प्यारे प्यारे गीतों के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा इसी तरीके का एक शानदार आपकी सेहत के लिए प्रोग्राम को लेकर। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, भूले नहीं ना, समीर।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ही अनप्लग्ड, कोई तैयारी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बातचीत में हम लोगों ने म्यूजिक का, संगीत का, गायकी का तड़का लगा लिया है। मेरे साथ मेरे आज बहुत ही प्यारे मित्र गगनप्रीत जी मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा बॉस, गगनप्रीत जी, जिनको मेलोडियस मुंडा भी कहा जाता है, हमारे पास पहले भी पधार चुके हैं। उन्होंने हमें मौका दिया था, वी वेर ऑनर्ड टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स, टू लिसन टू हिज म्यूजिक, एंड वी एंजॉयड अ लॉट। उसके बाद बस कुछ व्यस्तता रही, मुलाकात ना हो सकी और गायकी की भी थोड़ा गैप हुआ, लेकिन आज हमें फिर मौका मिला है। तो गगनप्रीत, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। वेलकम टू अवर प्रोग्राम एंड बिलीव मी, दिस इज टोटली अनप्लग्ड। हम लोग मस्त बातें करेंगे, डोंट वरी, कोई नहीं सुन रहा, ये समझ के चलना आज में कोई सुन ही नहीं रहा, बस आप मुझे गाने सुनाओ यार, काम खत्म हुआ। तो पहले तो फिर भी मुझे बता दो यार, मैं थोड़ा थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन चलो हमारे दोस्त लोग, यार लोग भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए बता दो कहां आओ आप।
1: हाय समीर जी, थैंक यू सो मच, इतने समय बाद आपसे आज एक बार फिर से रूबरू होने का मौका मिला। मैं फिलहाल हमेशा की तरह चंडीगढ़ में ही हूँ और आपको बहुत याद करता हूँ। पहले भी आपसे मैंने कई बार कोशिश की आपसे बात करने की, बट कुछ आपकी व्यवस्था जो कुछ आप व्यस्त रहे, कुछ मैं व्यस्त रहा, हमारा दोनों का जो टाइमिंग जो है वो मैच नहीं हो पा रहा था।
0: कोई नहीं।
1: आई एम ऑनर्ड कि आज जो है हम दोबारा आमने सामने बैठे हैं और आज हम फिर से बात कर पा रहे हैं।
0: बहुत
1: आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस।
0: मी टू। बड़ी मजेदार बात है यार, मतलब बल्कि मुझे ठीक से याद पड़ता है गगनप्रीत जी, हम लोग ने ना एक म्यूजिकल ट्रीट भी वो किया था, प्लान किया था, जिसमें आपको इंक्लूड किया था और दो लोग और थे, पर समहाउ उसमें भी आप आ नहीं पाए थे, तो हम लोगों को दो ही लोगों के साथ उसे बनाना पड़ गया था।
1: हाँ जी,
0: पर चलो कोई गाल नहीं, आपके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ही रिजर्व रखा था ऊपर वाले ने, इस वजह से आज फिर से बात हो रही है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो गगनप्रीत मुझे ये बताओ कि ये मेलोडियस मुंडा आपको क्यों कहा जाता है?
1: सर, मेलोडियस मुंडा जो नाम है ये मुझे चंडीगढ़ से ही मिला है बेसिकली। okay. मैं पहले भी गाता था म्यूजिक, आपको भी पता है कि मैं म्यूजिक से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल टाइम से ही मैं म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हूँ, मैंने स्कूल में ही अपने म्यूजिक सीखा, गायकी सीखी, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, और उसके बाद फिर मैं जब जॉब्स में रहा तो म्यूजिक से नाता थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि जॉब्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में व्यस्त हो गया था मैं। चंडीगढ़ आके जब मुझे दोबारा मौका मिला गाने का और जब मैंने गाया तो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार मिला, मैंने फिर इस अपने जो ये सफर है इसको फिर दोबारा से चंडीगढ़ आने के बाद ही दोबारा शुरू किया। तो पंजाब में जो मुंडा जो एक वर्ड है, ये लड़के को पंजाबी में कहा जाता है मुंडा, तो फिर मुझे जो जो ये प्यार करने वाले हैं श्रोता जो मेरे सारे, तो इन्होंने मुझे मेरा नाम रखा कि आप बड़े मेलोडियस हो, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, तो दे कॉल मी मेलोडियस मुंडा। तो वो दो शब्द जो है मिलके ये मेरा नाम पड़ा मेलोडियस मुंडा, और अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, हर जगह आप कहीं भी, इनफैक्ट गूगल पे भी सर्च करेंगे मेलोडियस मुंडा तो आप सीधे मेरे घर तक भी पहुंच सकते हो।
0: बहुत बढ़िया। सो जाहिर सी बात है, पिछली प्रोग्राम में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इस बारे में बात की थी या नहीं की थी, तो इसलिए ये सवाल बस उछल के आ गया।
1: इस बार में हमारी बात नहीं हुई थी।
0: तो दोस्तों, इस वजह से गगनप्रीत को मेलोडियस मुंडा कहा जाता है। चलो ज्यादा बातचीत क्या, अभी पहले गीत सुनते हैं, उसके बाद गगनप्रीत जी से और बातचीत करते हैं। अब की बार बिल्कुल अनप्लग्ड। लीजिए, पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत खूब, अमेजिंग सिंगिंग एज बिफोर, हमेशा की तरह। तो चलो आगे बढ़ते हैं गगनप्रीत भाई। और मुझे ठीक से याद है कि आपने मुझे बताया था कि आपका जन्म जो हुआ था वो रुद्रपुर में हुआ था, एम आई राइट?
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो आपके रुद्रपुर के ही निवासी थे, फिर उसके बाद आप प्रोफेशन के चक्कर में शिफ्ट हो गए, जो भी है। तो चलो थोड़े से आपकी बचपन के बारे में बात करते हैं। यूं तो मुझे मेरे दोस्तों को सुन के लगेगा कि मैं पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, लेकिन उसको जाने दीजिए। मुझे तो ये बताओ, बचपन में सबसे मजेदार शरारत कोई याद है जो आपने की हो?
1: सर ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पर कई ऐसी बातें हैं जो जिंदगी में हमेशा हमारे साथ जुड़ी रह जाती है, हम कभी भी भूल नहीं पाते उन बातों को। तो ऐसे कई सारे किस्से मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, पर अगर आप जान नहीं जाएंगे कि मैं कोई एक किस्सा उनमें से आपके साथ शेयर करूं, तो वो एक है कि मेरे जो मदर है उनको डॉग्स और कैट्स ये पेट्स वगैरह का ज्यादा शौक नहीं है, नहीं था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे को बहुत ज्यादा, अभी भी है, मुझे अभी भी पेट, आई एम अ बिग पेट लवर। तो मैं अपनी गली से एक छोटा पपी उठा के घर ले आया था, और जितना मैं उससे प्यार नहीं कर रहा था उतने उससे ज्यादा मुझे मार पड़ी थी। जब मैं उसे ले आया और मैंने उसे छुपा के रख दिया एक, मैंने उसके लिए एक डब्बे कार्टन का, मेरे को याद है मैंने गत्ते का एक बॉक्स जो था वो रखा, और मैंने उसके अंदर उसका पूरा सेटअप क्रिएट किया सब। और मैंने मार इसलिए पड़ी थी कि मैंने जो मेरा ही जो ब्लैंकेट था, मैंने वही ब्लैंकेट उसके अंदर रख दिया था, उसको उस कपड़ी को उसके ऊपर बिठा दिया था। मुझे बहुत मार पड़ी थी उस वक्त मेरी मम्मी से कि Why I did that? मुझे अच्छी तरह वो किस्सा कभी नहीं भूलता।
0: वाओ, ये छोटी छोटी शरारतें होती हैं दोस्तों जो हम बचपन में करते हैं, और खास करके जो गगन जी ने बताई पेट को घर के एक छोटे से पिल्ले को घर पे ले आने वाली, तो ये हरकत ना बहुत बच्चे करते हैं और बेचारे सबकी बहुत पिटाई होती है। कोई एक आधी बच्चा होता होगा जो शायद उनके पेरेंट्स उसका एक्सेप्ट कर ले,
1: बिल्कुल,
0: और जिसने ये ना किया हो। ये बिल्कुल सही बात है यार, बच्चों का दिल वैसे ही होता है, मतलब वो पप्पी में भी उनको बच्चा ही दिखता है तो उनके साथ वो खेलना चाहते हैं, सिंपल।
1: जी,
0: ब्यूटीफुल। तो चलो दोस्तों, आप अपने बचपन की कोई शरारत याद करो, क्या थी वो, संभव हो इम्पॉसिबल हो तो हमारे साथ शेयर करो, बड़ा मजा आएगा। चलिए तब तक हम लोग गगन जी के ही गाए हुए ये गीत सुने और फिर आगे बढ़े।

0: बहुत खूब। चलो
1: थैंक यू सर।
0: अब क्या हुआ गगन जी, छोटे से शरारती करते करते करते करते हम बड़े हो गए। ओके
1: जी हाँ जी।
0: प्रोफेशन में आ गए, कुछ मैच्योर भी हो गए, जिंदगी को समझने लगे।
1: बिल्कुल।
0: कोई ऐसा मोमेंट
1: जिम्मेदारियों में,
0: जिम्मेदारियों में आ गए, ठीक है ना
1: जी।
0: मे बी EMIs चालू हो गई होंगी, लोन चालू हो गए होंगे बस उलझ गए होंगे उसमें तो
1: हाँ।
0: लेकिन कोई ऐसा पल अभी या कुछ समय पहले कभी भी आया होगा, तो ऐसा कौन सा पल था जब आपको ये लगा कि यार मैं तो बदल गया हूं? कौन सा ऐसा पल था, कुछ याद है आपको, जब आपको रियलाइज हुआ हो रही यार मैं क्या था, क्या हो गया?
1: बिल्कुल होता है सर। जब मैं अपने कॉलेज पास आउट होके और नई नई जॉब में स्टार्ट हुआ, उस वक्त मेरी उम्र शायद 25-26 साल रही होगी जब मैंने जॉब में आया था मैं। और उस अब मैं और जब आज मैं इस मुकाम पर बैठा हुआ हूँ, मैं एक अच्छे बड़े रियल एस्टेट कंपनी में बैठा हुआ हूँ एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर, तो अब और तब के स्वभाव में बहुत ज्यादा फर्क है। जो मैं खुद ये बात अपने लिए ऑब्जर्व करता हूँ कि पहले अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत क्विक डिसीजन मेकर उस उम्र में शायद मैं था, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं बहुत सहजता से और स्वभाव से बहुत ज्यादा विनम्रता से बात करने लगा हूँ और चीजों को बहुत अलग वे में देखने लगा हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्टेन एज के साथ साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके अंदर ये बदलाव आ ही जाता है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि दिस इज एक्चुअल मी, यही होना चाहिए एक व्यक्ति को। आप अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, क्विक डिसीजन, ये हमारी, हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता। उस स्वभाव के चलते हम कई फैसले ऐसे अपनी जिंदगी में बहुत गलत ले लेते हैं, जिसका जो रिजल्ट है हमें बहुत बाद में समझ आता है। तो अपने सारे लिसनर्स को मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि बोलने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर उसे दोबारा विचार कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए।
0: That's right. That's very right. बिल्कुल। Moreover, गगन मैं आपको सच बताऊं, अभी पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, शायद हफ्ता भर हुआ हुआ या 10 दिन हुआ होगा मे बी, आई हैव रियलाइज्ड एट दिस एज नाउ कि यार कोई मैसेज आता है या कोई फोन कॉल आती है कि जी ऐसा हो गया। मतलब जैसे मैं कॉलेज में जाता हूं तो वहां पर यह हुआ कि साहब बच्चों की जॉब नहीं लगी है, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक सेकेंड में बहुत तेज गुस्सा आता है कि अरे यार ये क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ठेका लिया हुआ है क्या यार, एक बात कह रहा हूं। लेकिन फिर पिछले 10 दिनों में समझो 15 दिन हो गए होंगे, ये रियलाइज किया कि ऐसी कोई भी बात आ जाए ना, चुप हो जाओ, रिएक्ट ही मत।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वेट फॉर सम टाइम, जस्ट लाई लो, स्लीप ऑन इट।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। मानता हूं बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, पिछले 10-12 दिनों का एक्सपीरियंस है मेरा, जस्ट लीव इट अलोन। किसी मैसेज का जवाब भी मत दो, कोई फोन का कॉल भी मत जवाब दो, भाई उन्होंने बोल दिया चुप करके, आपने सुन लिया, काम खत्म, ओके आलसी, खत्म।
1: बिल्कुल।
0: कुछ समय बाद ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा।
1: कई बार सर चुप रहना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, हर बात का जवाब देना सोल्यूशन नहीं है।
0: कोई जरूरी
1: प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, मेरा अब ये मानना है कि चुप रहने से भी बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि बात को बढ़ाया ही जाए।
0: दैट्स वेरी राइट। तो थोड़ी सी फिलोसफिकल जरूर लगती है बॉस ये बातें दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी इसको फील कर रहे होंगे और हम भी फील कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट लेट्स एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लेते हैं ना कि यार ये सच्चाई है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए इन्हीं विचारों को जरा सा और गहरा सोचते रहिए, लेकिन रुकिए गगन जी के इन गीतों का आनंद भी उठाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: बखूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल।
1: थैंक यू सर।
0: गगन जी, चलो आपने कहा कि कई बार चीजों पर शांत रह जाना, चुप रह जाना ही ठीक है, चाहे फिर वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो जाता
1: जी।
0: आपने
1: जी
0: भी सीख लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सभी लोगों ने सीख लिया, हमने भी सीख लिया। लेकिन यार फिर भी कभी कभी तो पांव फिसल ही जाता है ना, तो आप बताओ किस बात पर आपको बहुत जल्दी सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है?
1: सर ये शो बहुत लोगों ने सुनना है अब उन्हें मैं ये जाहिर कर दूं कि मुझे इस बात पे गुस्सा, ये तो मेरी कमजोरी पकड़ने वाली बात है।
0: नहीं तो हम केयरफुल रहेंगे ना यार कि हम ऐसी हरकत ना करें।
1: सबसे अहम बात जो है सर, जो मुझे बहुत बुरी लगती है, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, वो दो ऐसी बातें हैं। एक ये कि जहां मुझे लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मेरा नाम जोड़ा गया या मुझे उसमें इन्वॉल्व किया गया, तो मैं चुप रहना फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और दूसरा ये कि अगर मैं आपके साथ सच्चा हूं, तो अगर आप आगे से मुझे झूठ बोलते हैं, तब भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी, अपने चाहने वालों को भी, सबको यही बोलता हूँ कि यार आप कुछ भी करना, बस मुझसे झूठ नहीं बोलना।
0: ओके, ऑलराइट।
1: क्योंकि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कई लोग कहते हैं, मेरे रोज के जो मुझसे मिलने वाले लोग हैं, कई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो दे ऑल्सो से कि गगन तेरा जो मूलांक है ना, वो 8 है। यू आर रियली मतलब ब्लेस्ड विद दैट ऑरा एंड दैट एनर्जी। जो मूलांक 8 जो है वो शनि देव से प्रभावित रहते हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि यू आर एग्जैक्टली दैट व्हाट नंबर 8 इज। तुम बिल्कुल वही हो। तो अपने काम को इतनी ज्यादा अहमियत देते हो कि फैमिली, दोस्त, यार, सबसे पहले अपने काम को प्रेफरेंस देते हो, उसके बाद तुम्हारे लिए सब लोग आते हैं। तो मूलांक 8 जो है तो वो इसी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और यू आर एग्जैक्टली दैट। मैं सुबह अपने टाइम से पहले ऑफिस पहुंचता हूँ, टाइम कंप्लीट करने के बाद ही ऑफिस से जाता हूँ। और मेरे लिए आज भी मुझे पता है कि मेरा काम सबसे पहले है, काम के बाद ही मैं आगे, उसके बाद सबको रखता हूँ।
0: आई अंडरस्टैंड, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। और ये एक पर्सनल ट्रेट होता है दोस्तों, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पर्सनालिटी है जो हर व्यक्ति अपने साथ कैरी करता है, वो अलग अलग होती है। तो आज हमें मौका मिल गया गगन जी की पर्सनालिटी को और गहरे समझने के लिए, सो दैट्स वेरी वेरी नाइस। आइए दोस्तों फिर हो जाएं ये गीत गगन जी के, और फिर इसके बाद विल टॉक मोर अबाउट गगन जी।

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चलो गगन जी, अब आपकी थोड़ी संगीत, आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ले ली हमने कि आपका बचपन में शरारते हैं, देन आपने कब रियलाइज किया दैट, या रियलाइज किया कि आप बदल गए, फिर आपने रियलाइज किया कि चुप रहना क्यों इंपॉर्टेंट है या मजेदार है या बेनिफिशियल है, एंड देन आपका जो पर्सनल ट्रेट है कि आपको गुस्सा किस बात पे आता है, हमें वो भी पता चल गया। ऑलराइट, अब अगर आपके म्यूजिक की बात करें तो दो ऑफ कोर्स ये सवाल मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे सर्टनली पूछ चुका हूं, लेकिन फिर भी हमारे नए जो सुनने वाले लोग हैं जो आज आपको सुन रहे हैं वापस से, दे वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट इट कि किस तरीके का म्यूजिक पर्सनली अगर आपको गाना ना हो, फर्ज कीजिए, क्योंकि गाना तो मैं मानता हूं आप अपने आप को खुश करने के लिए और अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए गाते होंगे, लेकिन सुनने में आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू लिसन?
1: समीर जी, मैंने पिछली बार, जैसे आपने पिछली बार भी मुझसे सवाल किया था, और मैं आज फिर अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं आई एम 87 बॉर्न, और मैं मुझे कह सकते हैं ओल्ड स्कूल बॉय, जो जो वर्ड बना है ना वो एग्जैक्टली मेरे लिए बना है। मैं आज की इस जनरेशन में 80s और 90s के गाने ही सुनता हूँ, वही पसंद करता हूँ और वही गाता हूँ। मुझे देख के कई लोग कहते हैं कि आप पंजाबी गाने नहीं गाते,
0: अच्छा,
1: बट मेरा रिप्लाई यही होता है कि नहीं जनाब, मैं पंजाबी गाने नहीं गाता हूँ। मैं आई एम अ सिख जेंटलमैन, बट मैं पंजाबी गाने नहीं गाता हूँ। मेरे को वही, मेरे उसी ऑरा में ही रहना पसंद है जो मेरे डैड के टाइम से मेरे चलता हुआ आ रहा है। मेरे डैड भी बहुत म्यूजिक लिसनर थे, गाते भी थे, शौक से गाते थे, बट उनके शौक हम में आगे आए और हम उस शौक को आगे ले आए कि मैं गाने लग गया। वो गाते नहीं थे, मैं पैशनेटली प्रोफेशनली भी गाने लगा, मैंने लाइव शोज किए, इंटरनेशनल शोज भी किए हैं।
0: सो दिस चॉइस ऑफ म्यूजिक गगन जी हैज, हम लोगों को ये भी पता चला आज, बहुत बढ़िया। चलिए फिर हो जाए फिर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत मेलोडियस मुंडा जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत खूब गगन भाई,
1: थैंक यू सर।
0: चलो फिर हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, पुराने नए, वैसे तो नए बहुत ज्यादा है, लेकिन सब लोगों को एक बार फिर से क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बात करना चाहोगे, कुछ बात कर लो दिल से दिल की।
1: अगर ये समय अब जाते जाते बात करने का ही है तो कुछ आपको भी, तो आपके लिए भी मैंने कुछ लिखा था जो मुझे, हाँ जो मैंने लिखा था वो मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ आपको भी। ये मेरे दिल से ये मैंने लिखा था आपके लिए भी कि हम जो मिले हैं तुमसे, जब से आपसे मिला हूं मैं, हम जो मिले हैं तुमसे ये कोई इत्तेफाक थोड़ी है।
0: अच्छा,
1: मिलके तुम्हें छोड़ने ये कोई मजाक थोड़ी है।
0: ओके,
1: अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी मोहब्बत है किसी का हिसाब थोड़ी है।
0: किसी का हिसाब, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये कोई डेबिट क्रेडिट थोड़ी है।
1: हाँ, अब आप ढूंढोगे मेरी इस बात का जवाब। बीइंग एन आज समीर जी, आप जवाब देने में आपसे ज्यादा माहिर कोई भी नहीं।
0: अरे नहीं साहब,
1: लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि अब आप ढूंढोगे मेरी इस बात का जवाब, पर ये मेरे दिल की आवाज है, कोई किताब थोड़ी है।
0: हाय, क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया। तो साहब ऐसा है ना कि जवाब तो हम नहीं दे सकते इस बात का, क्योंकि लाजवाब हो चुके हैं, कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी ने एक और एहसान कर दिया हम पर, आपसे मिला के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये आई एम ऑनर्ड जो आपसे मुलाकात हुई, आपके थ्रू कितने ही श्रोताओं से, लिसनर्स से मेरी मुलाकात हुई, कईयों के मेरे को मैसेजेस भी आते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जो शो सुनते हैं उनके मेरे को मैसेजेस आते हैं, कई ऐसे लिसनर्स हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि आपने कितने ही टाइम से कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है वो मैसेजेस देख के।